0: मरुत इयम् गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषा यासीष्ट तन्वे वयाम् विद्यामेषम् व्रजनम् जीरदानुम्। हे शूरवीर मरुद्गण, महान कवि द्वारा रचित यह आनंदप्रद काव्य रचना आपकी प्रशंसा के निमित्त है। ये स्तुतियां आपकी कामनाओं की पूर्ति एवं शरीर बल बढ़ाने के निमित्त प्राप्त हों। इसी तरह आप भी हमें अन्न बल और विजयश्री शीघ्रता पूर्वक प्रदान करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 166 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

वो गदर की लहर थी जिसने अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों के मन में देश पर मरमिटने की भावना पैदा की। क्रांतिकारी जवंत सिंह एक शेरदिल नौजवान थे जो आजादी के युद्ध में कूद पड़े। वे भी अपनी मातृभूमि को दासता से मुक्त कराने के लिए अपना सिर देकर कीमत अदा करना चाहते थे और वे धीरे धीरे गदर आंदोलन के एक दृढ़ स्तंभ बन गए। गदर क्रांतिकारियों के लिए देशद्रोही कृपाल सिंह राह का रोड़ा बन गया। उसकी गद्दारी की वजह से देशभक्तों की गिरफ्तारियां होने लगीं और फांसी के फंदे उनकी गर्दनों में डाले जाने लगे। कई क्रांतिकारी पुलिस के हाथ आए पर जवंत सिंह बहुत समय तक पुलिस को छकाते रहे। आखिरकार मई 1917 में वे पुलिस के हाथों पड़े और उन पर अभियोग चलाने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया।

लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो अभियोग अन्य क्रांतिकारियों पर लगाए गए थे वे जवंद सिंह पर भी लगाए गए कि किस तरह उन्होंने अमेरिका की गदर पार्टी में सक्रिय भाग लिया और किस तरह वे विद्रोह की आग उगलते हुए भारत जा पहुंचे। गदर पार्टी के लोगों ने जो डाके डाले थे उनमें भी जवंद सिंह की उपस्थिति सिद्ध की गई और इसके अलावा उन पर सबसे ज्यादा हत्याएं करने का आरोप लगाया गया।

आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया में जवंत सिंह ने कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि अपना परिणाम वे जानते थे और वे उस पुरस्कार को पाने के लिए लालायित थे जो सरकार उन्हें देने वाली थी। पुलिस द्वारा लगाए गए 7 अभियोगों में से उनके विरुद्ध 5 अभियोग सिद्ध हुए और अदालत ने 30 मई 1917 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी। इस निर्णय को सुनकर जवंत सिंह इस तरह खुश हुए जैसे उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। 1917 को लाहौर सेंट्रल जेल में वीर जवंत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: एक शाही दहेज, सात द्वीपों और चाय की प्याली से बना साम्राज्य। साल 1662 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह किया। ये एक ऐसा मिलन था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस समय के दरबारियों के लिए राजकुमारी का दहेज वस्तुओं का एक अजीब संग्रह था। चाय का एक संदूक और सात चट्टानी मच्छरों से भरे द्वीपों का एक समूह जिसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। लंदन के सबसे प्रसिद्ध डायरी लेखक और गपशप के शौकीन सैमुअल पेपिस इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने बम्बई को एक बेचारा छोटा सा द्वीप कहकर खारिज कर दिया और कड़वाहट के साथ भविष्यवाणी की कि यह राजा के लिए दुख के सिवा कुछ नहीं लाएगा। उस समय इन द्वीपों की कीमत इतनी कम आंकी गई थी कि क्राउन ने अंततः इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के मामूली किराए पर पट्टे पर दे दिया। हालांकि यही बेचारा छोटा सा द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक केंद्र बना। इसने डच और पुर्तगाली प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए एक आदर्श आधार प्रदान किया और अंततः अफीम और चाय के व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया, जिसने औद्योगिक क्रांति को गति दी। इस बीच चाय के उस एक संदूक ने एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कर दी। कैथरीन से पहले चाय एक रहस्यमयी चीनी पेय थी जो केवल विशेष कॉफी हाउसों में बेची जाती थी। उनके आने के बाद यह एक राष्ट्रीय जुनून बन गई। 1666 तक 1 पाउंड चाय की कीमत बम्बई के पूरे वार्षिक किराए के बराबर हो गई थी। इतिहास ने साबित किया कि पेप्स गलत थे, जिसे उन्होंने एक बोझ समझा था। वे वास्तव में एक वैश्विक महाशक्ति का जन्म था। इस शाही दहेज के बिना लंदन में शायद कभी चाय का स्वाद विकसित नहीं होता और बम्बई के वे मछली पकड़ने वाले गांव कभी ब्रिटिश राज के मुकुट का रत्न नहीं बन पाते।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।

0: आज इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं दो कलाकारों को। जी हाँ, ये कलाकार हैं शास्त्रीय गायिका आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार।
1: तुम एक गाएंगे फिर वही जो वर्षा में कजरी गाएंगे, झूला गाएंगे, सावन के गीत, इस प्रकार से हम लोग
2: जब से संगीत रिसर्च एकेडमी में 2003 से हम लोग साथ में हैं, तब से हमारी बहुत गहरी दोस्ती है और इसी वजह से ये जुगलबंदी हो पाती है। हम लोग सोलो सोलो तो अपना अपना कर ही रहे हैं, पर इस ये कार्यक्रम करने के पीछे विचार है कि जो हमारी दोस्ती है, हमारा प्रेम अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, वो इस कार्यक्रम में जाहिर हो सके। और जुगलबंदी में यही है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के म्यूज़िक को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ही ये हो पाता है। इसमें कोई हमारी कॉम्पिटिशन की भावना नहीं होती, एक दूसरे का म्यूज़िक हम लोग एन्जॉय करते हैं।

जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके करियर की शुरुआत हुई और क्या कुछ करना चाहिए उन लोगों को जो गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम दो भागों में है। पहले आप सुनेंगे आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार से हमारी बातचीत, और फिर प्रस्तुति होगी इनके गायन जुगलबंदी की।

0: ये प्रस्तुति इन्होंने दी भारत भवन में आयोजित गायन पर्व में। तो आइए अब आपसे मुखातिब हैं आस्था गोस्वामी।
1: सबसे पहले कुछ क्लासिकल पे हम बात करेंगे, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपके गुरु कौन रहे।
2: सबसे पहले मैंने पंडित सीतासरण सिंह चौहान जी से तालीम प्राप्त की और उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए मैं डॉक्टर एस एस अवस्थी जी के पास गई और फिर संगीत रिसर्च अकादमी में मैंने पद्म भूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी और पंडित अरुण भादुड़ी जी उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये किन दिनों की बात है और क्या संगीत की दुनिया में ये महज इत्तेफाक है क्या आप आ गई, या बचपन ही से आपको कुछ ऐसा लगता था कि संगीत की दुनिया में आपको जाना चाहिए?
2: देखिए, मेरे जो पिताजी हैं वो कलाकार हैं, वो ग्राफिक प्रिंट मेकर हैं, तो संगीत का प्रेम तो हमारे घर में सभी को था। मेरी माँ ने भी सितार सीखा, गायन सीखा और मेरी पहली गुरु मेरी मौसी रही हैं, तो संगीत तो हमारे घर में था और सुनने का बहुत शौक़ था माता पिता को, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत। तो बचपन की बात बताती हूँ आपको कि हमारे घर में फिल्म संगीत बहुत ज़्यादा नहीं बजता था और हमारे बचपन में चित्रहार आया करता था टीवी पे, वो भी देखने की हमको इजाज़त नहीं थी। तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर मैंने कोई संगीत सुना होगा तो वो शास्त्रीय संगीत ही था, तो वो भी कारण हो सकता है कि फिल्म के गीत थोड़ा कम जानती हूँ मैं। तो शुरुआत वहाँ से हुई और मैं छोटी थी और माता पिता ने, मैं लखनऊ की बेटी हूँ जी, तो मुझे उन्होंने बचपन में ही सुना, मैं 4 वर्ष की रही होंगी और उन्होंने देखा कि इसके गले में सुर है, तो मेरी मौसी क्योंकि गाती थी तो उनसे ही मैंने घर में ही सीखना शुरू किया और फिर 10 वर्ष की आयु में मैं पंडित सीतासरण सिंह जी के पास चली गई थी, वहाँ पे मैंने थोड़ा कायदे से जिसको तालीम, मेरी विधिवत तालीम जी, मेरा सफ़र वहीं से शुरू हुआ।
1: आपके पास समय की कमी है, एक दो सवाल छोटे से पूछ रहा हूँ। जब आपने शुरुआत की और आज इतने साल हो गए, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है और वो होता ना एक कि लोग साधना जिसे कहते हैं कि लोग जल्दी से चाहते हैं कि तरक्की मिल जाए, नाम हो जाए, उस पर आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस और विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत में आपको घंटों के रियाज करना ही पड़ेगा, बिना रियाज करे आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आज के बच्चों की सोच में और हमारे बचपन में हम लोगों की जो सोच है उसमें ये अंतर है कि जब हम साधना करते थे तो हम ऐसा नहीं सोचते थे कि हमको इससे रिटर्न्स मिलेंगे, हम बस साधना करते रहते थे। आज के बच्चों का जो माइंडसेट है वो उनको तुरंत रिटर्न्स चाहिए, इसलिए वो ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट स्टार्स बनना चाहते हैं, इसलिए वो शायद वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं।
1: आखिर में जो नए लोग आना चाहते हैं म्यूज़िक की फील्ड में, मैं तो ये कहूँगा जो लोग किसी भी प्रोफेशन में, उनको आर्ट से जुड़ना ही चाहिए, ख़ास करके जो संगीत में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप क्या कहेंगी, किन बातों का वो ख्याल रखें?
2: मैं उनसे यही कहूँगी कि रियाज तो करना ही है और शास्त्रीय संगीत में भी ऐसा ना सोचें कि सुनने वाले लोग कम हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।

0: और ये हैं रुचिरा केदार।
1: कुछ आपके शुरुआती दिनों के बारे में।
2: जी, मैं रुचिरा केदार, मैं भोपाल की ही बेटी हूँ, मध्य प्रदेश अच्छा। की बेटी हूँ। ग्वालियर का जन्म है मेरा, भोपाल में सब पैदाइश आगे अपब्रिंगिंग हुई
1: जी।
2: और पहले मेरे पिताजी श्री दिलीप काले जी से सीखा मैंने, उसके बाद पुणे

0: सकते हैं। मेरे पिताजी का बहुत उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं आगे करूं गाने में। हमारे घर में थोड़ा संगीत था मेरे बचपन से, तो उनकी बहुत इच्छा थी। उन्होंने ही एक्चुअली मुझ में जो भी पोटेंशियल देखा होगा, उन्होंने ही पुश किया मुझे इसमें आगे ये यात्रा करने के लिए। तो ऐसा सवाल कभी आया नहीं कि म्यूज़िक करें या ना करें या पार्ट टाइम करें या क्या करें। सीखते समय और मतलब यही था कि म्यूज़िक करना है, आगे पता नहीं जो होगा सो होगा भगवान की कृपा से, तो ये नहीं कभी मन में आया।
1: मैम एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि जो 60s के और 50 के दशक के गाने हैं फिल्मी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अक्सर आपने जो अभी बात कही, क्योंकि क्लासिकल तो सभी ने सीखा है, चाहे लता जी हों रफ़ी साहब हों, इसलिए शायद उनको इतनी शोहरत भी मिली। तो वही आपसे सवाल एक और जोड़ता हूँ कि जो नए बच्चे आना चाहते हैं वो किन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि जैसे जो थिएटर होता है रंगकर्म, उसमें भी यही होता है कि लोग कुछ दिन प्लेस करते हैं और फिर मुंबई का रुख कर लेते हैं जैसे, तो इसमें भी क्या कुछ ऐसा एक पूरा प्रोसीजर है?
0: देखिए वैसे मैं ये मानती हूँ कि शास्त्रीय संगीत का भले ही आपको आगे फिल्म म्यूज़िक में करना हो, एक बहुत जानकारी एक विद्या ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आजकल का आप जो कह रहे हैं, आजकल तो AI के ज़माने में ये भी नहीं पता कि किसी व्यक्ति ने वो गाना कंपोज किया है कि नहीं, तो इसलिए बट क्या है कि जब तक उसमें ह्यूमन इमोशंस नहीं आएंगे, ह्यूमन इंटेंसिटी नहीं आएगी, कोई भी गाना या कोई भी मेलोडी अमर नहीं हो सकती। जैसे हम लोग देखते हैं पहले के संगीतकारों के गाने आज तक हम लोग याद करते हैं, तो इसलिए उनको बहुत हमारे संगीत का बहुत ज्ञान था, बहुत उसकी पूजा करते थे, अर्चना करते थे, इस वजह से वो इंटेंसिटी उनके संगीत में भी दिखती थी। तो ये जो हमारे हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ म्यूज़िक है उसको छोड़ के आप हमारे कल्चर में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा मुझे लगता है।
1: नए बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किन बातों का ख्याल रखें?
0: नए बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारे बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत का क्या होगा, यही हमारे गुरुओं ने भी सुना कि शास्त्रीय संगीत का क्या होगा, फिर भी हम लोग यहाँ तक आए ही ना, आगे पहुँचे ही ना। तो आज हम लोग, मैं आस्था दोनों हम लोग पूरे भारत में, भारत के बाहर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये है कि ये लंबी यात्रा है और बहुत कठिन यात्रा है, इससे बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी। पर अगर आप लोग लगे रहेंगे, जैसे एक मैंने फ्रेज सुनी थी कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी टाइम, तो उसी में अगर आप लगे रहेंगे तो भले ही आपको गॉड गिवन टैलेंट कम भी हो पर फिर भी सक्सेस मिलेगी। तो यही मेरा कहना है, नॉट जस्ट म्यूज़िक में, किसी भी फील्ड में।

0: जोड़ी में आप लोग परफॉर्मेंस देते हैं, उस पर से थोड़ा आप दोनों बताइए।
1: तो मेघ गाएंगे, फिर वही जो वर्षा में कजरी गाएंगे, झूला गाएंगे, सावन के गीत, इस प्रकार से हम लोग।
0: तो आप ही बता दीजिए
2: जी। हम लोग ने एक्चुअली, आपने कहा कि जैसे आप लोग जोड़ी,
0: एक चीज और जोड़ दीजिए जी, कब से आपका साथ हुआ?
2: हम लोग जब से संगीत रिसर्च एकेडमी में 2003 से हम लोग साथ में हैं, तब से हमारी बहुत गहरी दोस्ती है और इसी वजह से ये जुगलबंदी हो पाती है। हम लोग सोलो सोलो तो अपना अपना कर ही रहे हैं, पर इस ये कार्यक्रम करने के पीछे विचार है कि जो हमारी दोस्ती है, हमारा प्रेम अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, वो इस कार्यक्रम में जाहिर हो सके। और जुगलबंदी में यही है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के म्यूज़िक को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ही ये हो पाता है। इसमें कोई हमारी कॉम्पिटिशन की भावना नहीं होती एक दूसरे से, एक दूसरे का म्यूज़िक हम लोग एन्जॉय करते हैं।

ये था आज का कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें पहले आपसे मुखातिब थी सुप्रसिद्ध गायिका रुचिरा केदार और आस्था गोस्वामी, और कार्यक्रम के दूसरे चरण में आपने सुनी गायन जुगलबंदी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कविता पाठ, कहानी पाठ, व्याख्यान और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे रचना पाठ। सबसे पहले सुनिए कविता पाठ अजय विश्वकर्मा का। ये काव्य पाठ उन्होंने किया निराला सृजन पीठ के कार्यक्रम वर्दे में।

गीतों में मैं अपना उद्गार व्यक्त करता हूँ। सीमा पर आपात स्थिति में जब एक सैनिक की छुट्टियाँ निरस्त हो जाती हैं तो नवविवाहिता उसकी पत्नी नवविवाह के क्या भाव रहे होंगे सुनिएगा। कुछ दिनों तो रहो संग मेरे सजन,

क्लांत मन को अभी तो सहारा मिला, भाव की वाटिका में विचरने तो दो, कुछ दिनों तो रहो। बंद सुनिएगा मन।

दो, ये उसके मन के भाव थे जो मन में ही रह जाते हैं, वो उसे व्यक्त नहीं करती। और देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपने आप को संभालती है, और फिर जो वो कहती है वह केवल केवल भारतीय नारी ही कह सकती है। सुनिए, गया

किशोरी का है। तो सार क्या है? तो मीत मन का मिले, मीत मन का मिले ये जरूरी नहीं,

के मर्म को। सुनिएगा कि मैं तुम्हारे लिए, हम शाश्वत प्रेम की बात करेंगे जो हम सभी का लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य है जन्म जन्मांतर से, हम जिसके लिए मैं तुम्हारे लिए जन्म लेता रहा,

समय की कीमत समझो प्यारे, समय बहुत अनमोल। समय की कीमत समझो प्यारे, समय बहुत अनमोल। अरे जो भी कहना खुलकर कहना, दिल की बातें खोल। अरे तुमको क्या लगता है हम सब यूं ही कहते हैं, तुमको क्या लगता है हम सब यूं ही कहते हैं।

कभी वाणी से कुछ भी निकला वापस लेता हूँ। तो अब सारे अब से मेरे प्रियवर साथी कमर कसो जय बोल, अब से मेरे प्रियवर साथी कमर कसो जय बोल। समय की कीमत समझो प्यारे, समय बहुत अनमोल।

और दूसरा बंद, जो कुछ खोया दृष्टि उसी पर प्राप्त हुआ क्या भान नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। जो कुछ

सदा सशंकित मन रखने पर सब कुछ खोगे, सदा सशंकित मन रखने पर सब कुछ खोगे। आंसू कब तक व्यर्थ करोगे, कब तक रोगे?

कितने का मन है। बहुत आभार, बहुत आभार। उज्ज्वल भाग्य रेख संभावित खुद ही धोगे, आंसू कब तक व्यर्थ करोगे, कब तक रोगे। और बहुत शुक्रिया। और एक स्त्री की संवेदनशीलता, समर्पण और समाज का उसके लिए प्रतिदान किस प्रकार का होता है, एक गीत लिखने का प्रयास किया है।

हसी ठिठोली तुम्हें प्रीति कर, मैं पीड़ा की अभ्यासी हूँ। हसी ठिठोली तुम्हें प्रीति कर, मैं पीड़ा की अभ्यासिन हूँ। तुम आतुर नायक बनने को, मैं स्वभावगत वनवासिन हूँ। सभी ताप में सह लूंगी पर अपने नैनो जल मत भरना। खुशियां सारी ले लो लेकिन मेरे सम्मुख रुदन न करना। खुशियां सारी ले लो लेकिन मेरे सम्मुख रुदन न करना। हो वसंत यदि सीमित तो फिर, हो वसंत यदि सीमित तो फिर मुझको पतझड़ ही दे देना। पुष्प सदा ही तुमको रुचते, कंटक में तुम नहीं उलझना। पीत पर्ण फिर निधि मेरी है, पीत पर्ण फिर निधि मेरी है, इन पर कोई गीत न रचना। खुशियां सारी ले लो लेकिन मेरे सम्मुख रुदन न करना। नहीं माननी रुक्मिणी जैसी, नहीं माननी रुक्मिणी जैसी, ना राधा सी सखी तुम्हारी, ना उद्धव संदेशा पाया, ना बंसी धुन सुनी तुम्हारी। मैं मीरा सी सदा प्रतीक्षित, विष पात्र में विष ही रखना। मेरे सम्मुख रुदन न करना। और अंतिम पंक्तियां इसकी, मैं अपशकुनी सदा रही हूँ, चलो मान लेती हूँ ऐसा। मैं अपशकुनी सदा रही हूँ, चलो मान लेती हूँ ऐसा। मेरे बिन सब कुछ शुभ होगा, अर्थ निकलता है कुछ ऐसा। दिशा बदलती हूँ मैं अपनी, मुझ पर अपनी दृष्टि न रखना। मेरे सम्मुख रुदन न करना। और एक स्वाभिमान का, आत्मनिर्माण का गीत है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: कॉक्स बाजार एक मानवीय त्रासदी और नौकरशाही का विश्वासघात। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट स्थलों में से एक कॉक्स बाजार एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसकी मृत्यु अत्यंत पेशेवर दुख और हताशा की स्थिति में हुई थी। वो किसी विदेशी सेना से नहीं बल्कि अपने ही सहयोगियों की निरंतर टालमटोल की नीति से हार गया था। वो व्यक्ति था कैप्टन हीराम कॉक्स, और 1799 में उसका दुखद अंत शुरुआती ब्रिटिश राज की उस गलाकाट हकीकत को उजागर करता है जहां नौकरशाही की ईर्ष्या अक्सर किसी भी युद्ध के मैदान से अधिक घातक होती थी। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक मानवीय आपदा का सामना कर रही थी। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी चटगांव के दक्षिणी जंगलों में भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए कलकत्ता की केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार करते हुए कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो पैदल सेना के केवल एक मामूली कैप्टन थे, फिर भी उन्हें प्रो कंसुलर शक्तियां दी गई थीं, जिससे वे भूखों को खाना खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकाल सकते थे। क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने जिले के इस बाहरी के दखल पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का एक ऐसा अभियान चलाया जो जितना प्रभावी था उतना ही क्रूर भी। जब कॉक्स ने आपातकालीन राहत के लिए 80,000 रुपए की मांग की तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। पाउनी स्थापित प्रक्रिया के पीछे छिप गए और जोर देकर कहा कि उन्हें पैसा जारी करने से पहले राजस्व बोर्ड से 3 प्रतियों में प्राधिकरण चाहिए। जब कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा तो वहां के अधिकारियों ने भी बहाने बनाए। यहां तक कि जब चावल की व्यवस्था हो गई तो स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें शरणार्थियों तक अनाज पहुंचाने के लिए कोई नाव नहीं मिल रही है। जब तक कोई सहायता बस्ती तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों ने आने वाले सामान का अधिकांश हिस्सा हड़प लिया, जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मरते रहे। राजस्व में भारी खर्च और इस अव्यवस्था को देखकर कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर अल्यूड क्लार्क ने इन प्रयोगों को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने केवल 1 महीने के भीतर कॉक्स को वापस बुला लिया, ये कहते हुए कि उनकी उपस्थिति जिले के नियमित और स्थापित अधिकार में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती है। कॉक्स का मनोबल और उनका स्वास्थ्य अपने ही साथियों के इस दैनिक प्रतिरोध के दबाव में टूट गया। ड्यूटी से मुक्त होने के कुछ ही समय बाद वे सीमावर्ती क्षेत्रों की जहरीली जलवायु में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। कॉक्स बाजार शहर उनका एकमात्र स्मारक है, लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज की एक दिलचस्प याद दिलाती है। ये साबित करता है कि शुरुआती कंपनी शासन में गवर्नर जनरल का मानवीय मिशन भी कुछ दृढ़ स्थानीय नौकरशाहों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पेशेवर क्षेत्र की रक्षा के लिए विफल किया जा सकता था। हीराम कॉक्स केवल असफल नहीं हुए, उन्हें उसी मशीनरी ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जिसकी उन्होंने सेवा की थी।
2: रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे? इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया। और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी? उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था। लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था? 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूत का संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।
5: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।

मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें शायरों ने अपने कलाम

0: शुक्रिया।
1: मेरी मुराद जो है वो मोहतरमा पूजा भाटिया से है। मोहतरमा पूजा भाटिया,
0: शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, वो जा चुका है कभी का, यहीं खड़ी हूँ मैं। शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, वो जा चुका है कभी का, यहीं खड़ी हूँ मैं। और मैं दश्त दश्त भटकती हूँ तिश्नगी लेकर, मैं दश्त दश्त भटकती हूँ तिश्नगी लेकर, कभी किसी को बताया नहीं नदी हूँ मैं। कभी किसी को बताया नहीं नदी हूँ मैं, और इस एक मोड़ पर अक्सर सभी बिछड़ते हैं, इस एक मोड़ पर अक्सर सभी बिछड़ते हैं। सुना है जब से इसी मोड़ पर रुकी हूँ मैं, सुना है जब से इसी मोड़ पर रुकी हूँ मैं, और यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, जब उसको मैंने कहा था कि एक परी हूँ मैं।
1: जब वाह वाह वाह,
0: यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, जब उसको मैंने कहा था कि एक परी हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। कुछ अशार देखें कि मुझ तक ही लेके आएंगे तुझको तमाम रास्ते, मुझ तक ही लेके आएंगे, फिर तू किसी सफर पे हो, फिर तू किसी भी सिमट जा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया। फिर तू किसी सफर पे हो, फिर तू किसी भी सिमट जा। शुक्रिया भैया, शुक्रिया।
1: क्या कहने,
0: कभी मौसम नहीं बदला हमारा, कभी मौसम नहीं बदला हमारा, रहे कोहरे के हम कोहरा हमारा। कभी मौसम नहीं बदला हमारा, रहे कोहरे के हम कोहरा हमारा, और कहानी पर थे हम गालिब वगरना, कहानी पर थे हम गालिब वगरना, जरूरी था नहीं मरना हमारा, जरूरी था नहीं मरना हमारा। और ये शेर देखें कि हम अपने दिल की दुनिया में हैं लेकिन, हम अपने दिल की दुनिया में हैं लेकिन, यहां भी जी नहीं लगता हमारा। हम अपने, बहुत शुक्रिया, हम अपने, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
0: हम अपने
1: अच्छा
0: दिल की दुनिया में
1: हैं
0: लेकिन, हम अपने, खामोशी भी दाद होती है, और मैं आपकी दाद को बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
1: क्या कहने,
0: हम अपने दिल की दुनिया में हैं लेकिन, यहाँ भी जी नहीं लगता हमारा। और एक ताजा गजल के चंद अशार, लौट कर मत आ मगर मुड़कर तो देख, लौट कर मत आ मगर मुड़कर तो देख, अब तलक बैठे हैं तेरी आस में, अब तलक बैठे हैं तेरी आस में, और शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, है इश्क एक हादसा गुजरा हुआ मुझे, शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, है इश्क एक हादसा गुजरा हुआ मुझे, और मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, कितने ही जावियों से फिर सोचा गया मुझे, कितने ही, बहुत शुक्रिया, कितने ही जावियों से फिर मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, कितने ही जावियों से फिर सोचा गया मुझे, और तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, मिलने का अपने आप से मौका मिला मुझे।

0: तड़के ताल्लुकात से इतना तो हो गया, मिलने का अपने आप से मौका मिला मुझे, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, वो एक गुमनाम तारा जा रहा है। किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, वो एक गुमनाम तारा जा रहा है। और ये शेर आखिर कि गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, हमारा हक तुम्हारा जा रहा है, हमारा हक, गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, हमारा हक तुम्हारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
1: जनाबे डॉक्टर नदीम शाह।
2: ख्वातीन हजरात, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताज़ा मतला है साहब, ये भी सुन लीजिए कि जैसे झील में उतरे जमी से होते हुए,
1: कि जैसे झील से उतरे,
2: कि जैसे झील में उतरे जमी से होते हुए, मैं उसकी आंख तक आया जबी से होते हुए। मैं उसकी आंख तक आया
1: जबी से होते हुए,
2: जबी से होते हुए, ये माँ के पांव नहीं है, ये माँ के पांव नहीं हैं, ये सीढ़ियां हैं नदीम। अगला मिसरा देखिएगा साहब, ये माँ के पांव नहीं हैं,
1: ये सीढ़ियां हैं नदीम,
2: ये सीढ़ियां हैं नदीम, मैं आसमां पे गया था यहीं से होते हुए।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: ये माँ के पांव नहीं हैं, ये सीढ़ियां हैं नदीम,
1: मैं आसमां पे गया था,
2: मैं आसमां पे गया था
1: यहीं से होते आए
2: हैं, यहीं से होते हुए।
1: बहुत अच्छा शेर।
2: एक मतलब सुन लीजिए, मतलब ये है कि हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, जो ना सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे।
1: वाह,
2: जो ना सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे, हम समंदर हैं हमको ना रास्ते बता, हम समंदर हैं हमको ना रास्ते बता, हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे।
1: वाह,
2: हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। एक शेर आपने सुना होगा, एक पुराना शेर है कि जो भी आए हैं वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। अब एक शेर मैंने कहने की कोशिश की है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे, दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे।
1: वाह वाह,
2: तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे, चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, जंगलों में मुसाफिर भटक जाएंगे।
1: वाह वाह,
2: चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, जंगलों में मुसाफिर भटक जाएंगे। और एक मतला सुनाता हूँ, मतला सुन लीजिए ये भी साहब, के मतला ये है, ये वक्त क्यों तेरी तस्वीर पर गंवाते हैं, ये वक्त क्यों
1: तेरी तस्वीर
2: पर गंवाते हैं, जब इनसे बनती नहीं है तो क्यों बनाते हैं।
1: वाह वाह वाह,
2: जब इनसे बनती नहीं है
1: तो क्यों बनाते
2: तो क्यों बनाते हैं। और चंद शेर सुनिए, मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे सुनाऊं कि आपके हाथ खुले और जरा आप थोड़ा सा मुशायरे के माहौल में आए, इतना तो जोर पड़ा भी नहीं मुशायरे में आज, इतना आप थक गए हैं।
1: क्या क्या,
2: ये भोपाल है और भोपाल में शायरी कैसे सुनी जाती है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक मतला और सुन लीजिए, मतला ये है कि साहब देखिए, मतला कि जरा सा सब्र था जो कर गए हम, जरा सा सब्र था
1: जो कर गए हम
2: उसे लगने लगा था मर गए हम।
1: वाह भाई वाह वाह वाह,
2: उसे लगने लगा था मर गए हम। अब ये शेर सुनिए साहब, बतौर खास ये शेर सुनाता हूँ, उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए
1: हम। वाह वाह भाई, जोरदार तालियों से नवाजे, क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। ऐसे ही बस ऐसे ही सुनिए, तो हाजिर करता हूँ, सुनिए। उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। और अब शेर फिर से सुनाता हूँ, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको बुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, उसको बुलाकर
1: मुझको
2: ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
2: वाह। बहुत शुक्रिया जी, हाजिर करता हूँ, सुनिए। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है।
1: क्या कहने।
2: और सुनिए, एक मतलब ये है कि हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं।
1: वाह।
2: हटाओ हाथ आंखों से,
1: ये तुम हो जानता,
2: ये तुम हो जानता हूं मैं, तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ।
1: वाह वाह।
2: तुम्हें खुशबू नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं, भटकता फिर रहा था गम लिपट कर मुझसे ये बोला, भटकता फिर रहा था गम लिपट कर मुझसे ये बोला, कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं, कहां जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं। मतलब सुनिए, मतलब यह है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। आइए मैं एक गजल के चंद शेर आपको तरन्नुम से सुना दूं, सिर्फ उससे पहले एक मतला एक शेर और सुन लीजिए। मतला सब कुछ आसान हो सकता है ऐसा लगता है, सब कुछ आसान हो सकता है
1: ऐसा लगता है,
2: ऐसा लगता है, कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है।
1: वाह वाह वाह।
2: कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है।
1: वाह वाह।
2: जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है।
1: वाह वाह।
2: वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। एक मतलब आपको सुनाना चाह रहा था, वो सुन लीजिए, उसमें एक शेर अच्छा हो गया तो इसलिए सुना रहा हूं। मतलब थोड़ा सा जरा बारीक है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब ये है कि तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी नहीं समझे। सुनो भाई
1: जी साहब।
2: तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी नहीं समझे, तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी
1: नहीं समझे,
2: नहीं समझे, तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी नहीं समझे। अब ये शेर सुनाना है, तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी नहीं समझे, उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत। भाई शेर
1: सुनिए, उसे कहना पड़ा,
2: उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत, हम उसको देखकर उसकी परेशानी नहीं समझे।
1: क्या कहने।
2: उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत, हम उसको देखकर उसकी परेशानी नहीं समझे। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है, किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है।
1: क्या कहने।
2: किस्मत भी होती है लेकिन
1: मेहनत करनी पड़ती है,
2: मेहनत करनी पड़ती है। और साहब ये देखिए गजल का ये शेर सुनिए और महसूस कीजिएगा उन लोगों के लिए जो अपने वतन से दूर रह रहे हैं रोजी रोटी के लिए या कुछ और मजबूरी है, उनके लिए एक शेर कहा है, शेर सुनिए साहब। घर की कीमत क्या होती है, घर वाले क्या होते हैं।
1: वाह,

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने रेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आपने ट्यून किया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त हो चला है रेडियो रिपोर्ट का।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ मैं हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां 15 जुलाई को रंग मध्यम नाट्य संस्था की ओर से आजाद बुलंदी भगत सिंह नाटक का मंचन किया गया।

इस नाटक का निर्देशन किया अनुराग मिश्रा ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।

0: अगले बुलबुले हैं और न बरमा की भीड़, सिर्फ मिट जाने की कसरत दिले बिस्मिल में।
1: यार भगत सुनना, बिस्मिल जी ने क्या तो गजल लिखी है यार, मुझे तुमसे मिलना है।
2: कानपुर चलेंगे ना, फिक्र मत कर। सन 1915 में भाई परमानंद की फांसी की सजा सुनकर राम प्रसाद बिस्मिल ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने की योजना बना ली थी। तब उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम एक पार्टी का गठन भी किया था।
1: हम दोनों का मकसद था भारत की आजादी,
2: हम दोनों की मंजिल और राह एक ही थी।
1: लेकिन आखिर देश को इन अंग्रेजों से आजादी कैसे दिलाई जाए?
2: हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रास्ता निकलता है।
1: फिर तो इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
2: कॉलेज में सुखदेव से मुलाकात पक्की दोस्ती में बदली, फिर तो मानो हम दोनों एक दूसरे के पूरक ही बन गए। घंटों घंटों कॉलेज की कैंटीनों में साथ बैठा करते, तमाम विषयों पर चर्चा किया करते, और चर्चा का सबसे खास विषय हुआ करता कि भारत को आजादी कैसे मिले। निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
3: मेरा नाम जतिन दास है। वो 1930 का रविवार का दिन था। भगत सिंह की अर्जी पर वो लोग लाहौर सेंट्रल जेल से भगत सिंह को हमसे मिलाने के लिए हॉस्टल जेल लाए गए थे। वो इस स्तर पर सरकार से सुविधा हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने अभियुक्तों से बचाव के तरीकों पर कुछ बातचीत कर ली। तो उस दिन हम किसी राजनीतिक विषय पर बात कर रहे थे कि बातों का रुख फैसले की तरफ, हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हंसी मजाक में हम एक दूसरे के खिलाफ फैसले सुनाने लगे। सिर्फ राजगुरु और भगत सिंह को इससे बरी रखा गया, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी जानते थे कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। यानी कि नाटक यहाँ भी जारी था।
2: जज साहब, क्या आप बता सकते हैं सुखदेव, राजगुरु और हमारा फैसला, हमें बरी किया जा रहा है या फांसी के फंदे से लटकाया जा रहा है? क्या आप लोगों को असलियत को स्वीकार करते डर लगता है? जज साहब, हमें फांसी के फंदे से तब तक लटकाया जाए जब तक कि हम मर नहीं जाते, ये है असलियत। मैं इसे जानता हूं और तुम भी जानते हो, फिर सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ते?
3: भगत सिंह अपने रंग में आ चुके थे। वो बहुत धीमे स्वर में बोल रहे थे। चिल्लाकर बोलना उनकी आदत नहीं थी। एक समय के लिए तो दूसरे को लगता कि उन्हें फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनका तरीका था और यही उनकी शक्ति भी।
2: यही देश का सर्वोच्च पुरस्कार, और मुझे गर्व है कि मैं यह पुरस्कार पाने जा रहा हूं। उन्हें लगता है कि वो मेरे मरे हुए शरीर को नष्ट करके इस देश को गुलाम बनाकर और ज्यादा दिन तक यहां रह पाएंगे। लेकिन यहां वो लोग गलत हैं। वो मुझे तो मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार पाएंगे। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझते खाक है पानी, रहे ना रहे। वो मुझे तो कुचल सकते हैं लेकिन मेरे भावनाओं को नहीं कुचल पाएंगे। हम उनके सर पर तब तक मंडराते रहेंगे जब तक कि वो ये देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर नहीं हो जाते।
3: भगत सिंह पूरे आवेश में बोलते जा रहे थे। एक समय के लिए हम भूल गए थे जो आदमी हमारे सामने बैठा है वो हमारे ही दल के सदस्य। वो बोलते जा रहे थे, ये तस्वीर का सिर्फ एक दूसरा पहलू भी उतना ही उच्च। ब्रिटिश हुकूमत के लिए मरा हुआ भगत सिंह जीवित भगत सिंह से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे फांसी हो जाने के बाद मेरे क्रांतिकारी विचारों की महक देश के आकाश में व्याप्त हो जाएगी। वो नौजवानों को उत्साहित करेगी और वो अपनी और अपनी राष्ट्र की आजादी के लिए पागल होंगे। नौजवानों का यही पागलपन ब्रिटिश हुकूमत को उनके विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।

0: मैं सबसे पीछे था। विदाई लेते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर उसने कहा, भावुक बनने का समय अभी नहीं आया है, तो अभी कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊं। लेकिन तुम लोगों को अभी लंबा सफर पार करना पड़ेगा, और मुझे विश्वास उत्तरदायित्व के इस बोझ के बावजूद तुम इस अभियान में थकोगे नहीं, बस नहीं होगे, हार मानकर जमीन पर गिर नहीं पड़ोगे। ये कहकर उसने सलाखों के अंदर से अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया।
1: मेरे जीवन का अवसान समीप, प्रातःकालीन प्रदीप के प्रकाश के समान टिमटिमाता हुआ मेरा जीवन प्रदीप भार के प्रकाश में विलीन हो जाएगा। हमारे आदर्श, हमारे विचार बिजली के गोंद के समान सारे संसार में जागृति पैदा कर देंगे। अंत में संघर्ष के आरंभ की धुंधुवी बजेगी, जिसका परिणाम निर्णायक होगा। उसके विरुद्ध युद्ध में हमने भाग लिया और उसके लिए हमें गर्व है।

0: छीन ली और अपनी प्रतिहिंसा की प्यास बुझा ली। अन्याय और शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने वाले तीन और लड़की जिंदगी जन्नत के फंदे ने समाप्त कर दी। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भगत सिंह ने एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए कहा था,
1: मजिस्ट्रेट साहब, आप बेहद ही भाग्यशाली हैं कि आपको ये देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि किस तरह भारत के क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं।
0: मेरे हमजोलियों की कतार से निकलकर वो शहीदों में जा मिले, उनके नाम के जय जयकार के बीच जब भी कभी उनके चित्र पर फूल चढ़े देखता हूं या किसी अजनबी को उन पर रचे सैकड़ों गीतों में से कोई एक गीत गुनगुनाते सुनता हूं तो गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाता है। मगर फिर भी हमराहियों के बिछड़ जाने से जिंदगी में एक आभाव सा हो जाता है जिससे थोड़ी तकलीफ तो होती ही है। और जब भी मन बीते दिनों की स्मृतियों को कुरेद देता है तो वो कविवर आलम के शब्दों में कह उठता है, चारसना सौ करी बहु बातें, तारसना सौ चरित्र गुणों करे, नैनन मेजे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुना कर। ये सूरत इलाही किस देश की बस्तियां है।
2: एक बार इस राह में मरना भी सौ जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला, मैं रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मैं रंग दे बसंती।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अभी आपने सुनी रेडियो रिपोर्ट और अब वक्त है परिक्रमा का। आइए सुनते हैं परिक्रमा।

हाय हेलो छूटा अब बस अंगूठा। जी हाँ, बेगर ट्राइब इमोजी से जताइए खुशी, गुस्सा और नखरे। इमोजी एक ऐसा टूल है जो हमारे इमोशंस को सिर्फ एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंचा देता है बिना शब्दों के, मगर ये इमोजी अक्सर यूनिवर्सल ही होते हैं। इसमें कुछ अपनापन, देसी टच आ जाए तो इमोशंस का फ्लो थोड़ा फास्ट और पर्सनलाइज्ड हो जाता है। बस इसीलिए भोपाल के लोगों के लिए मध्य प्रदेश की जनजातियों में से एक बेगा ट्राइब की इमोजी में एनआईडी से डिज़ाइन करवाया। कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट गौरी बिजरोनिया ने 15 दिनों की ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिस्कशन और ट्रायल्स के बाद इसे खास तौर पर डिज़ाइन किया।

वहीं श्यामलाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा में भील संस्कृति के जीवंत रंग देखने को मिले। 75वीं एकल शलाका चित्र प्रदर्शनी का मैं भीली चित्रकारों ने कला का प्रदर्शन किया। संग्रहालय का माहौल बेहद कलात्मक और पारंपरिक उत्साह से सराबोर नजर आया। आयोजन के दौरान पृष्ठभूमि में गूंजते पारंपरिक ट्राइबल म्यूजिक यानी जनजातीय संगीत ने वातावरण को बेहद मनमोहक बना दिया। संगीत की इस मधुर धुन के बीच दर्शकों ने भीली संस्कृति, घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, ग्रामीण परिवेश और पशु पक्षियों की सुंदर चित्रलेख पेंटिंग्स को निहारा। कलाकारों ने अपने पुराने और पारंपरिक आर्ट के जरिए समृद्ध आदिवासी कल्चर को प्रदर्शित किया। जीवंत और चटक रंगों से सजी इन कृतियों ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रदर्शनी 30 जुलाई तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। AI फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का तकनीकी सत्र माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। ये तकनीक सूचनाओं को ज्ञान में बदलकर जटिल समस्याओं का त्वरित समाधान देने में सक्षम है। भारत सहित दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में भी स्वचालित मशीनों की परिकल्पनाएं मिलती हैं, जो आज के युग में AI के रूप में हमारे वर्तमान का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। सूफी गजल गीतों और फिल्मी गीतों से प्रशासन भवन अकादमी में सुरों की संध्या सजी। कलाकारों की दीवानी, तोरे नैना, सांसों की माला पे जैसी प्रस्तुति पर मौजूद प्रशिक्षु अधिकारी और युवा थिरके बिना नहीं रह सके। प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में 125वें आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत म्यूजिकल मोजिक का आयोजन हुआ। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम ने 150 प्रशिक्षु अधिकारियों को सुकून और मनोरंजन के पल प्रदान किए। शुमैन एंड रोहित कलेक्टिव बैंड ने सूफी गजल और लोकप्रिय फिल्मी गीतों का संगम पेश किया। देर शाम तक सांसों की माला पे और तुमाने या नमाने जैसी रचनाएं प्रस्तुत की। तबले पर हर्षित गंधर्व, कीबोर्ड पर आदित्य साहू ने संगत की।

मानसून के बीच शहर में सुरों की महफिलें सजेंगी। इनमें मुकेश दा, रफ़ी और मुकेश के नगमे गूंजेंगे। सदाबहार फिल्मी तरानों की दो बेहद खूबसूरत शामें सजने जा रही हैं। मुकेश दा 103वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संगीत प्रेमी और कलाकार सुरमई श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कायस्थम मध्य प्रदेश द्वारा नेहरू नगर के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे से रिमझिम गिरे सावन का आयोजन किया जाना है। 32 चयनित कलाकार सदाबहार गीतों के जरिए समा बांधेंगे। वहीं किशोर कुमार के सदाबहार गीतों पर म्यूजिकल नाइट का आयोजन 25 जुलाई को होगा। मानसून मौसीकी और मोहब्बत की थीम पर यह आधारित है। पेशेवर और शौकिया कलाकारों को गायकी का मौका मिलेगा। कैदियों में तनाव को म्यूजिक के जरिए कम किया गया। सेंट्रल जेल में राग रंग म्यूजिकल ग्रुप के जरिए संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बुधवार को आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जेल के बंदियों ने हिस्सा लिया, देशभक्ति के गीत भी गाए।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार मध्य प्रदेश के दो होनहारों ने राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का परचम लहराया है। 690 या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले देश के शीर्ष 138 उम्मीदवारों की सूची में मध्य प्रदेश के दो छात्रों ने अपनी जगह पक्की की है।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: अठारह सौ सत्तावन के मुक्ति संग्राम में एक नाम ऐसा है जिसने काल, परिस्थिति और परिवेश को धता बताते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया और समय की शिला पर अपने आप को दर्ज कर लिया। वो नाम है कानपुर की देवी अजीजन का। तात्या टोपे की प्रेरणा और फौजी शमशुद्दीन के मार्गदर्शन में इस नर्तकी ने आजादी की लड़ाई में सशक्त भूमिका निभाई थी। वो सैनिक छावनियों में जाकर नृत्य और संगीत के मार्फत भारतीय सैनिकों में देश प्रेम का जज्बा पैदा किया करती थी। वे खुफिया तौर पर अंग्रेज टुकड़ियों की खबरें भी लाती। इस वीरांगना ने अपनी एक टोली भी बनाई थी जिसका नाम था मस्तानी टोली। इस टोली की सैनिक महिलाओं को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी। बगल में हथियार लटकाए नंगी तलवार से दुश्मनों पर वार करती अजीजन शहर की गलियों और छावनियों में निडरता से घायल क्रांतिकारियों की मदद करती। वे कभी भोजन लेकर तो कभी रसद और हथियार लेकर सैनिक छावनियों में पहुंच जाया करती। कमल और रोटी के प्रतीक से लड़ा गया 1857 का संघर्ष जब हर जगह कुचला जाने लगा तो दमन चक्र के इस सिलसिले में अजीजन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सेनापति हेवलॉक ने अजीजन के रूप और लावण्य पर मुग्ध होकर उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे माफी मांगकर अंग्रेजों की सेवा करें तो मृत्यु दंड से बच सकती हैं। राष्ट्र के लिए समर्पित स्वाभिमानी अजीजन ने हेवलॉक की मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दो टूक उत्तर दिया कि गोरों की पूर्ण पराजय देखने के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं, आप मेरे प्राण ले सकते हैं, मुझे झुका नहीं सकते। इस पर अंग्रेज अधिकारी भड़क उठा और उसने अजीजन को गोली मारने का हुक्म दे दिया। बलिदानी अजीजन ने हंसते हंसते कुर्बानी दी और क्रांति के इतिहास में वरांगना से वीरांगना बनकर अमर हो गई।
2: अरे बेटा सुन तो सुन, ले ये चाय पी ले।
3: आया काका।
2: अरे क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह तेरी जुबान पे मुजरा चढ़ा हुआ है।
3: काका झाड़ू तो साफ लगाई ना।
2: नहीं रे वो बात नहीं है रामदीन, अरे काका के ढाबे को तुझसे अच्छा कौन चमका सकता है, है? फिर मुजरा। अरे ये सवेरे सवेरे तुझे क्या हो गया है, कहीं नाच तो नहीं देखाया तू है?
3: अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, आपन तो राम जनियों की शकल तक नहीं देखे। अरे बीमारी है ये, दुनिया का सत्यानाश कर दिया इन्होंने।
2: नहीं बेटा यहाँ तो तुम गलत हो।
3: अरे ये तुम कह रहे हो काका, वो भी इस उम्र में?
2: हाँ बेटा, एक ऐसी वेश्या भी थी जिसने इस देश की खातिर कुर्बानी दी।
3: हमारी खुशी के लिए कुर्बानी, जरा हम भी तो जाने कौन थी वो।
2: अजीजन बाई,
3: देश के लिए कुर्बानी एक वेश्या ने?
2: हाँ, कानपुर की मशहूर वेश्या।
3: वेश्या और कुर्बानी, हम मान ही नहीं सकते।
2: नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ अजीजन बाई के बारे में। बात तब की है जब हम गुलाम थे।

0: वाह जीतन, वाह वाह वाह वाह वाह जीतन।
1: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
2: बहुत खूब, बहुत खूब। या अल्लाह, आज तो नोटों की बरसात हुई है। हाय हाय, मैं मर जाऊं। झुक झुक जिए मेरी लाड़ो, मेरे आंखों का नूर। चल चल रानी, तेरी नजर तो उतार दूं पहले। अरे कौन है? अरे देख तो गुलाबो, कौन है?
3: कोई वर्दीधारी है अम्मी जान।
2: लो, पहले सरकार आती है, पीछे पीछे उनके रखवाले चले आते हैं। चैन नहीं इस मुई रियासत को भी। अरे गुलाबो, भेज दे मेहमानों को भीतर।
1: ढाई है जुल्म।

0: सूबेदारी नहीं अजीजन, खुददारी, खुददारी मेरी जान।
1: नमक तो अंग्रेजी सरकार का खाते हो?
0: अंग्रेजी सरकार का नहीं, हिंदुस्तान का नमक।
1: और सरकार?
0: हिंदुस्तानी नहीं है
1: तो?
0: यही तो टीस है दिल में अजीजन।
1: क्या? मैं समझी नहीं।
0: मैं समझाता हूँ तुम्हें। नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे ने पिछले एक साल से ही हिंदुस्तान को जगाना शुरू कर दिया है।
1: उससे क्या होगा?
0: पेशावर से कलकत्ता तक क्रांति होगी अजीजन।
1: क्रांति?
0: हाँ क्रांति। और इस मुहिम में हमें तुमसे भी बड़ी उम्मीद है अजीजन।
1: मुझसे उम्मीद?
0: हाँ अजीजन, तुमसे।
1: क्यों मजाक कर रहे? आप जानते हैं ना, मैं एक नाचीज, कनीज, एक कोठे में कैद, जमाने के आगे नाचने को मजबूर, समाज की गंदगी हूँ।
0: पर यहाँ आते तो सभी हैं ना अजीजन।
1: फिर भी वे बेदाग हैं, और हम पर लगे दाग जिस्म को रौंदते हुए हमसे सैकड़ों सवाल पूछते हैं, आखिर कब तक और क्यों? हम क्या जवाब दें?
0: अब जवाब देने का वक्त आ गया है अजीजन। अपनी मोहब्बत को इस बाजार से उठाकर आजादी के सरोकार में बांट कर देखो अजीजन, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा।
1: सवाल का जवाब? मजाक छोड़िए सूबेदार साहब, जिसकी जिंदगी खुद एक मजाक बन गई हो उसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं है।
0: तो तुम भूख से तड़पते हिंदुस्तानियों को देखो, जाकर देखो अजीजन, फिरंगियों के जुल्मों से कितने बेचैन हैं लोग।
1: बेचैन? हमसे ज्यादा बेचैन और कौन हो सकता है? जानना चाहते हो हमारी बेचैनी, तो सुनो, आज हम यहाँ हैं तो इन फिरंगियों की वजह से। हमारे वो जख्म आज तक नहीं भरे हैं।
0: तो अपनी जिंदगी औरों के जख्म भरने के लिए कुर्बान कर दो अजीजन।
1: हम?
0: कुछ मत सोचो अजीजन, कानपुर में बिठूर के नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने पूरी तैयारी कर ली है, और फौजी बैरक में मैंने और सूबेदार टीका सिंह ने सब समझा दिया है। बस एक बार नाना साहब और तात्या टोपे से मिल लो अजीजन।
1: हमें सोचने के लिए वक्त दे दो।
0: अब सोचने का वक्त नहीं है अजीजन।
1: करना क्या होगा हमें?
0: अपने नाच गाने के हुनर से हिंदुस्तानी सिपाहियों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए तैयार करो।
1: हमें मंजूर है।
0: वाह, आज तक तो तुम्हें मोहब्बत करता था, पर अब इबादत करने को जी चाहता है अजीजन। खुदा हाफिज।
2: गुलाबो। ओ गुलाबो।
3: जी कहिए अज्जूबी।
1: अम्मी जान कहाँ है?
3: बाहर गई हैं। पर बात क्या है अज्जूबी, बड़ी बेचैन लग रही हैं आप।
1: एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मेरे सरकार ने।
3: कैसी जिम्मेदारी?
1: आजादी की पहली जंग में शामिल होने की।
3: आजादी की पहली जंग?
1: हाँ गुलाबो, हमारे देश को पिछले 100 सालों से गुलाम करने वाले जालिम अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने जंग छेड़ दी है।
3: तो
1: ये जंग कानपुर में भी होगी, इसमें हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है।
3: आपको यकीन है आप ये कर लेंगी?
1: यकीनन।
3: हथियार चला लेंगी?
1: हथियार भी उठा लूंगी, अब तो सब कुछ मुल्क के लिए कुर्बान।
3: और मुझे क्या करना होगा?
1: तुझे मेरा साथ देना होगा।
3: मैंने आपकी तरह मुल्क की खिदमत की कसम नहीं उठाई है।
1: ये एक ही मौका है इस गंदी काया को पाक करने का। अरे हम तो मिट गए और आगे भी मिटना हमारा मुकद्दर है, पर आने वाले नस्ल के लिए कुछ करके मिटना बेहतर है गुलाबो। आखिर हम भी कितना सहे, कब तक इस नरक में यूं ही?
3: बस अज्जूबी, आगे नहीं सुना जाता, मैं आपके साथ हूँ। बताइए करना क्या है?
1: हम एक टोली बनाएंगे, मस्तानी टोली। एक तरफ हम अंग्रेजी कैंप से खबरें लाएंगे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फौजियों के बीच बगावत के जज्बात पैदा करेंगे। अब तक लोग हम पर फूल फेंकते थे, अब हम फौजियों को कमल का फूल पेश करेंगे।
3: कमल का फूल?
1: कमल का फूल जोश पैदा करेगा और बगावत का पैगाम देगा।
3: वो हमारी बात मानेंगे?
1: जब हमारे लिए दुनिया छोड़कर यहाँ कोठे तक आते हैं तो हमारे कहने पर मैदान जंग में क्यों नहीं जाएंगे?
3: और क्या करना होगा?
1: फौजी टुकड़ियों के अलावा हमें गांव वालों को भी समझाना है। हम गांव और शहर के हर मोहल्ले और गली में जाएंगे रोटी लेकर।
3: रोटी?
1: पहले गीत गाएंगे और प्रसाद में रोटी बांटेंगे, जो आजादी के लिए उठने वाले हर कदम का वादा होगा।
3: कैसा वादा?
1: ये जंग रोटी के लिए है। और हाँ गुलाबो, हमें मैदान जंग में रसद यानी गोला बारूद हथियार पहुंचाना, जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी करने के अलावा जंग के मैदान में अपना जौहर भी दिखाना है, समझी?
3: और वो चुड़ैल अम्मी जान हमें बाहर जाने की इजाजत देगी?
1: वही तो, उसके लिए सुन, हमें एक नौटंकी करनी होगी।

0: अरे गुलाबो, ए गुलाबो, या अल्लाह क्या हुआ मेरी बच्ची को? एक ही तो नूर है इस कोठे पे, अरे इसकी चमक से कानपुर तो क्या दूर दूर के रजवाड़े भी आबाद है। अब तक तो लंदन तक जा पहुंचा है इसका नशा, मेरे चांद के टुकड़े को किसी की नजर न लग जाए। हाँ क्या हुआ इसे?
1: अम्मी जान, हमें सुआ रोग तो नहीं हो जाएगा?
0: हाय अल्लाह, सुआ रोग, सुआ रोग, तौबा तौबा, तेरे दुश्मनों को हो, हट निगोड़ी कहीं।
1: क्यों नहीं होगा अम्मी जान?
0: अरे गुलाबो,
1: देखती नहीं सुबह से आधमकते हैं करम जले, देर रात तक नाचते नाचते पांव टूटते हैं और फिर बदन, न दिन को चैन न रात को आराम।
0: अब करूं भी तो क्या करूं, हर एक की जुबान पर बस एक ही नाम तो है, अजीजन अजीजन। अरे कल ही हकीम को बुलवाकर इसकी दवा दारू करवाती हूँ, और वो मौलवी साहब है ना, उनसे ताबीज भी बनवा के लाती हूँ। हाय मेरी बच्ची,
1: दवा ताबीज से कुछ नहीं होने वाला।
0: तो
1: इसे सुकून की सांसें चाहिए, और वो मिलेगी गंगा घाट पे खुली हवा में।
0: तो घाट लिए चलते हैं लाड़ो को। अरे मेरी लाड़ो की सलामती के लिए तो सब कुछ मंजूर है मुझे।
1: पर अम्मी जान, मैं अकेली गंगा घाट पर?
0: मेरी चांद को अकेले कैसे भेज दूंगी घाट पर? ये मुई है ना गुलाबो, निगोड़ी खा खा के मुटियारी है।
1: मैं ही क्या अम्मी, ये सलमा, रेशमा, लैला, नूरी भी तो खा खा के मोटी हो रही है। घाट पे दौड़ लगाएंगी तो जरा नजर टिकने लायक बने।
0: हाँ ये बात सही है, ऐसा कर तू ले जा सबको।
1: जी अम्मी जान।
0: अरे देख गुलाबो, अरे मुई देख कौन आया है।
1: अम्मी जान, लाट साहब के यहाँ से गाड़ी आई है।
0: लो फिर तेरे मुजरे की मांग करेगा लाड़ो, मुँह पीछे ही पड़ गए हैं। अभी तो मैं टाल के आती हूँ, चलती हूँ। अरे लड़कियों, मेरी अज्जो का ख्याल रखना। हाँ एक ही तो कोहिनूर है मेरे कोठे पे।

0: अजीमुल्लाह खान आए हैं, अजीमुल्लाह खान आए हैं, अजीमुल्लाह खान साहब।
1: क्या हुआ लड़कियों, क्या हुआ?
2: आदाब अर्ज अजीजन।
1: अरे आप, आदाब।
2: तात्या टोपे पूछ रहे थे कि क्या हुआ।
1: भैया से कहिए, मस्तानी टोली बन चुकी है। गंगा घाट पर नन्ने मियां ने हथियार चलाने की तालीम भी शुरू कर दी है। लड़कियों में जोश है, आप खुद ही देख लीजिए हमारी मस्तानी टोली को।
2: कोठे की चौखट से शुरू हुआ ये जज्बा इतिहास में अमर हो जाएगा जीजन।
1: हमारी टोली मैदान जंग में वो जौहर दिखाएगी कि
2: तुम्हारी टोली को बहुत जल्द सेना में जाना होगा। जब से सेना ने चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल से मना किया है, अंग्रेज जोर जबरदस्ती में लगे हैं। ऐसे में उनका हौसला बढ़ाना होगा जीजन।
1: तो यहाँ से हम सीधे बैरक में ही जाते हैं। खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।
1: चलो रे लड़कियों।

0: वाह अजीजन भाई वाह, बाहें फड़क उठी, आपका ये रंग भी खूब है।
1: ये लो भैया कमल का फूल। बस एक ही गुजारिश है, आखिर कब तक सहोगे ये जोर ये जुल्म? अब वक्त आ गया है जागने का। गुलामी की चौकसी की जगह आजादी के लिए हाथ उठाना होगा आप वीरों को।
0: तुम ठीक कहती हो अजीजन, हमने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो इन्होंने नए जुल्म शुरू कर दिए हैं।
1: इन फिरंगियों ने कोड़ों की मार और बेइज्जती के सिवा हमें दिया ही क्या है? जहां सिपाहियों के जौहर पर मराठे और निजाम से जागीर के तोहफे मिलते थे, अरे तोहफे तो दूर, हमसे अपना धर्म भी छीन रहे हैं ये जालिम। मत भूलो कि ये वही फिरंगी सरकार है जिसमें जनरल वेलेसली ने घायल सैनिकों को गोलियों से भूनने का हुक्म दिया था। उन मरे हुए साथियों की आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब आपकी तलवार उठेंगी, बंदूकें चलेंगी। अब हमारी हुंकार फिरंगी राज को देश निकाला करके ही दम लेगी। 31 तारीख को सब कुछ लाल हो जाएगा। आओ कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ। आजादी लोगों को भीख में नहीं मिलती, आजादी दुश्मन से लड़ कर ली जाती है। जिन राहों पर छिड़का जाता है गर्म खून, उन राहों पर चलकर आजादी आती है।

0: कुछ भी हो, ये मौलवी साहब की बात मन में बैठ जाती है भैया।
1: राम राम।
0: राम राम अजीजन, राम राम।
1: राम राम। ये लो भैया रोटी, भारत माँ का प्रसाद, सब मिल बांट कर खा लो, फिर नई बनवा के बगल वाले गांव में भिजवा देना। याद है ना 31 तारीख को मंगल काम होना है, सबको पूजा की सुपारी बनना है, समझ गए ना?
0: अरे लाओ जीजन लाओ, अपनी आजादी की रोटी।
1: रोटी की लड़ाई में जीत अपनी ही होगी भैया।
2: सर हैवलॉक, आई थिंक कानपुर में भी गड़बड़ होने वाला है।
3: नो भारत नो, हैवलॉक के होते ऐसा नहीं हो सकता। इंडियंस आर टू सबमिसिव, वह कुछ नहीं कर सकता। अगर म्यूटनी हुआ तो पहला हमला खजाने पर ही होगा, उसका क्या करें?
2: सर उसका सेफ्टी नाना साहब पेशवा करेगा।
3: नाना?
2: यस सर, नाना। ही इज ए टॉलरेंट हिंदू, और उसके पूछ को हमने अभी ही तो कुचला है।
3: एक्सीलेंट। और बारूद खाना?
2: उसे भी नाना को दे सकते हैं।
3: ब्रिलियंट। हे नाना को बुलाया जाए।
2: सर हमने नाना को पहले ही बुला लिया है। He is about to come.
3: Yeah. Very good, Mr. Baden. I am impressed.
2: Welcome, Nana Sahib. Aiye.
3: How are you?
4: Upar Bale ki daya aur aapki dua se theek hoon.
2: Nana Sahib, hum aapne khazane aur armoron ki safety ka zimma aapko saupna chahte hain.
4: Aap nischint rahein. आपके कहे अनुसार हमारे सिपाही सुरक्षा के लिए आ चुके हैं, और कुछ?
2: बट नाना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर सिक्योरिटी?
4: हमेशा की तरह आपकी महिलाएं और बच्चे हमारे बिठूर के राजमहल में रह सकते हैं, हमारे सिपाही उनकी चौकसी करेंगे।
2: थैंक यू, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा।
4: याद रखने के लिए ही तो किया जा रहा है बर्डन साहब।

0: जिंदाबाद।
1: नाना साहब पेशवा
0: जिंदाबाद।
1: बिठूर के नाना साहब पेशवा को हम अपना राजा चुनते हैं। नाना साहब की
0: जय।
2: नाना साहब की जय हो। हम छावनी के फिरंगियों को नहीं छोड़ेंगे।
3: जनरल व्हीलर बीवी बच्चों सहित गंगा घाट पर अपने बनाए किले में जा बैठा है साहिब।
4: कितने होंगे?
3: लगभग 1000।
4: किले का घेराव किया जाए।
3: वो देखो, शांति का झंडा।
4: युद्ध रोक दिया जाए।
5: आप लोग हमें गोला बारूद हथियार सौंप दें, हम आपको इलाहाबाद पहुंचा देंगे।
6: मजिस्ट्रेट होला सिंह और तात्या टोपे, आप जाकर सत्ती चोरा घाट पर 40 नौकाओं की व्यवस्था करें और इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। अब हम चलते हैं। चलिए तात्या टोपे।
7: इन्हें तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना ही होगा।
3: हाँ जी जन, चलिए नौका तैयार है।
8: कितना टाइम लगेगा इलाहाबाद जाने में?
3: कोई देरी नहीं, चंद मिनटों की बात है, अभी घाट पर उतार देते हैं। पर मौत के घाट।
2: खत्म कर दो इन जालिमों को।
1: रुकिए,
9: नाना साहब और तात्या टोपे आ गए हैं।
4: इंसानियत के नाते स्त्रियों और बच्चों को हाथ न लगाया जाए।
2: इंसानियत का हुक्मनामा आखिर कब तक साहेब? इलाहाबाद में इंसानियत नहीं बरती गई थी, पर पेशवा का हुक्म सराखों पर।
4: कुल कितने लोग बचे हैं?
3: 4 पुरुष, 125 स्त्रियां और बच्चे।
4: इन्हें बीबी गढ़ कोठी में भेज दिया जाए।
3: जो हुक्म।
4: क्यों किया तुमने अजीजन? देखो चीखों से गूंज उठा बीबीगढ़।
2: बीबीगढ़ तो औरतों की चीख से गूंजता ही रहा है साहेब। हिंदुस्तानी औरतें 100 बरस चीखी हैं और ये गोरी सिर्फ एक दिन। हिसाब अभी भी बराबर नहीं हुआ है साहेब।
4: लेकिन ये मानवता के खिलाफ है।
2: आप मानवता की बात कर रहे हैं? फिरंगियों ने इलाहाबाद में जो कयामत ढाई उसका क्या?
4: इसमें बीबीगढ़ की अंग्रेज महिलाओं का क्या दोष?
2: इलाहाबाद में सैकड़ों हिंदुस्तानी औरतों को जिंदा जला डाला था। उनका जुर्म क्या था महाराज? सारे भारत में जितने अंग्रेज मारे गए उतने अकेले इलाहाबाद में नील ने मार डाले। एक अंग्रेज के पीछे हमारा एक गांव जला डाला इन दरिंदों ने। और अब हम इंसानियत की बातें करें? माफ कीजिए, आप ही ने कहा था ना कि जिस दिन फिरंगियों ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखे थे उसी दिन युद्ध होना निश्चित था। समय अब तय हुआ है। ठीक उसी तरह ये कत्ल होना तो उसी दिन तय था जिस दिन इलाहाबाद चीखा था। अंजाम आज दिया गया है। इस पर भी आपकी राय में अगर मैं अपराधी हूं तो बंदी आपके सामने है। आप जो सजा देना चाहे दे।
10: ये वक्त सजा का नहीं है। फिरंगी शहर में घुस आए। अजीजन, तुम्हें आखिरी बार जान फूंकनी होगी।
2: जो आज्ञा भैया।
5: अजीजन, सब कुछ खत्म हो गया। अजीजन,
2: क्या कहते हो नन्हे मियाँ? नहीं, मैं ये नहीं मानती।
5: मानना ही होगा अजीजन।
2: नाना साहब,
5: नाना साहब ने बिटूर छोड़ दिया है।
2: और भैया,
5: तात्या टोपे ग्वालियर की तरफ गए हैं और टीका सिंह को फांसी।
2: हमारी ताकत बिखर गई, हमारा कानपुर जल रहा है।
5: चलता हूँ अजीजन, किसी भी समय फिरंगी आ सकते हैं।
2: आप जाइए जाइए यहाँ से।
11: अच्छो भी फिरंगी फौजी, भागो भागो।
2: नहीं, अजीजन भागने वालों में से नहीं है। अभी बताती हूँ जालिमों।
12: Get her।
13: यही अजीजन है।
12: तुमने मारा सबको?
2: हाँ, मैंने मारा।
12: Oh, I don't believe this, but why?
2: गुनहगार थी वो।
12: अगर तुम माफी मांग लो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे।
2: माफी? अरे माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक तो तुम हमारे देश में घुसे, ऊपर से राज हथिया लिया और फिर जुल्म बिठाए, वो भी इतना कि कांप उठा हमारा हिंदुस्तान। पर अब हम जाग गए हैं, एक को मारोगे तो हजार खड़े हो जाएंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अंग्रेजी राज का नाश नहीं हो जाता।
12: तुम्हारी कोई लास्ट विश?
2: फिरंगियों का देश निकाला,
14: देश निकाला,
2: देश निकाला।
15: Shut up! Hey! Fuck!

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब समय है हमारे कार्यक्रम कला कलोलिनी का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
2: और संदीप के साथ मैं हूं मनीषा।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे नृत्य सम्राट उदय शंकर की। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में ऐसे कुछ विरले व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम विश्व में रोशन किया है, और अपने असाधारण योगदान से अपना और राष्ट्र का नाम अग्रिम पंक्ति में पहुंचाया और दूसरों को अपनी अद्वितीय प्रतिभा से प्रेरणा दी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे एक महान कलाकार की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किसी भी स्वरूप में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, परंतु उनकी प्रस्तुतियां रचनात्मक होती थी। हालांकि ये बात अलग है कि बचपन से ही वे भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के संपर्क में रहे।
2: हाँ श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में आधुनिक नृत्य के निर्माता, सुप्रसिद्ध नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता नृत्य सम्राट उदय शंकर जी की। उन्होंने यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य की संस्कृति से दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। हाँ, उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइन, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध के नाम से नवीन नृत्यों की रचना की। इसमें वेशभूषा, यंत्र संगीत, ताल और लय आदि का आविष्कार भी किया। कला की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो तमाम बंधनों और समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो गए हैं। उदय शंकर उन्हीं महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने नृत्य कला को केवल एक प्रदर्शन कला नहीं बल्कि संस्कृति सेतु बना दिया।
1: इसलिए तो उन्हें भारत के आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। हम इस बात को यहाँ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जिस समय भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर समकालीन रूप देकर नई पहचान दिलाई। जब भारतीय नृत्य विश्व पटल पर अपने लिए एक बड़ा सम्मान अर्जित कर रहे थे, उसी 1930 के दशक में भारत में भी शास्त्रीय नृत्यों के रूपों का पुनरुत्थान हो रहा था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हो रही थी, और उस समय विदेशी शासन के बावजूद भारतीय अपनी स्वदेशी कलाओं पर गर्व कर रहे थे। उस समय उदय शंकर जो की प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य की किसी भी शैली में उनका कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था।
2: ये तो सही है कि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, परंतु उनके नृत्य बहुत रचनात्मक होते थे। अनेक नृत्य परंपराओं को और साथ ही उनकी तकनीकी कुछ चुनी हुई चीजों को लेकर अपने नृत्य नाटकों की रचना करने में उन्हें कमाल की महारत हासिल थी। वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इस विषय में उनका योगदान अपने मन में आई भावनाओं और विषय को विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त शैली और रूप के साथ रचनात्मक तरीके से दर्शकों तक पहुंचा देने का हुनर रखते थे। नृत्य के पारंपरिक तरीके से परिचित होने के बाद भी उन्होंने उन सभी को अलग रखा, एक और अलग एकीकृत रचना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनके इसी तरह के प्रयोग देखकर लोगों के सामने उनकी बहुमुखी प्रतिभा निखर कर सामने आई। उस्ताद अलाउद्दीन खां और विष्णुदास शिराली, जो कि सुविख्यात पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, उनके साथ उदय शंकर ने पेरिस में अपने एकल और युगल बैले नृत्य के लिए रचनात्मक संगीत के साथ प्रयोग किए।
1: जी हाँ, उदय शंकर ने केवल भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जिसने उनकी रचनाओं और नृत्यों के संगीत को एक अनोखा रंग प्रदान किया, और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके कई नवाचारों ने हमारे संगीत के रुझान को और समृद्ध किया है। और इस बात का एक ठोस आधार ये भी है कि उनकी प्रशिक्षण पद्धति में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें नर्तकों को उनके द्वारा प्रस्तुत बैले नृत्यों के लिए तैयार किया गया जो संभागीय रहता था, और इसमें उनकी नृत्य तकनीक, लोक नृत्य, तात्कालिक नृत्य मंच और वेशभूषा डिजाइन, श्रृंगार, प्रारंभिक शारीरिक आयाम, भावपूर्ण गतिविधियां, शरीर की संवेदनशीलता का विकास, एकाग्रता, कल्पनाशीलता, सामूहिक भावना और उसका अवलोकन, चरणों का ज्ञान, गति का मनोविज्ञान, रंग और रेखा की समझ, नृत्य और नाटक का संबंध, ये सब शामिल रहा।
2: श्रोताओं, यहाँ इस बात को भी बताना हम जरूरी समझते हैं कि इनके छोटे भाई रविशंकर वही हैं जिन्हें हम सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के नाम से जानते हैं। उदय शंकर के पिता संस्कृत के माने हुए विद्वान थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए और वहां से वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बने। पिता को अपने काम के सिलसिले में बहुत अधिक घूमना पड़ता था, इसलिए उदय शंकर के परिवार ने अपना ज्यादातर समय अपने मामा के परिवार में अपनी माँ और छोटे भाइयों के साथ नसरतपुर में बिताया।
1: उदय शंकर की शिक्षा भी इसी कारण अलग अलग जगह पर हुई, जिसमें नसरतपुर, गाजीपुर, वाराणसी और झालावाड़ शामिल हैं। नृत्य के अलावा उदय शंकर चित्रकला, संगीत, शिल्पकला और फोटोग्राफी में भी महारत रखते थे। शिक्षा उन्होंने अपने गाजीपुर के स्कूल में अपने शिक्षक अंबिकाचरण मुखोपाध्याय से हासिल की थी। नृत्य कला का सारा श्रेय उन्होंने अपनी माँ को दिया। एक साक्षात्कार में अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी ये कला माँ की बदौलत है। बचपन में उनकी माँ उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनाती थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो उन्हें साड़ी और गहने पहनाती थी और संगीत की धुनों पर थिरकना सिखाती और फिर नाचने के लिए भी कहती थी। तब उन्हें जो भी नृत्य करने का मन करता वो कर लेते, पर उन्हें नृत्य करना नहीं आता था, लेकिन वो कर लेते और उन्होंने किया, और इसके लिए वो सदा अपनी माँ को आभारी मानते रहे। इसकी शुरुआत उनकी माँ ने ही कराई।
2: बचपन में त्योहारों के दौरान होने वाले नृत्यों के अलावा लोक नृत्यों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। हालांकि बचपन में उनकी दिलचस्पी मुख्यतः चित्रकला में थी, ये प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल थी कि झालावाड़ के महाराजा ने उनके पिता को उदय को सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलाने को मना लिया और यहां से डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के बाद 1920 में वे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लेने के लिए लंदन चले गए।
1: हाँ, और इसके अलावा उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और हर नजरिए से पूर्णता मिले, बस इसी पर जोर रहता था। वे जानते थे कि वे अपने दर्शकों में और उत्सुकता कैसे जगा सकते हैं। बहुत कम समय में बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत कराने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। विभिन्न भारतीय देवी देवताओं के बारे में उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण रखा जिसने एक अमिट छाप छोड़ दी।
2: जिन दर्शकों ने उनके इंद्र, कार्तिकेय और शिव के एकल नृत्य देखे हैं, वे उनके द्वारा रचित कलात्मक और मनमोहक छवियों को लंबे समय तक ज्यों की त्यों अपने मन मस्तिष्क में सजाए रहते थे। मंच पर नृत्य प्रस्तुति के समय उनका शारीरिक सौंदर्य अद्भुत नजर आता था, जो दर्शकों के मन में समा जाता था। वे अपने इस विशिष्ट गुण से दर्शकों पर सदा जादू कर देते थे।
1: जी हाँ, बात आपने बिल्कुल ठीक ही की है। उनमें जो ये दुर्लभ गुण था उसे दोहराया नहीं जा सकता है। बस जिन्होंने उन्हें मंच पर प्रस्तुति देते हुए देखा है, उनके मन में उनकी स्मृति बसी हुई है। सुप्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर की प्रतिभा की और विस्तार से चर्चा करने से पहले हम आपको अब उनके जन्म के बारे में जानकारी दे दें। उदय शंकर का जन्म 8 दिसंबर 1920 राजस्थान के उदयपुर शहर में हुआ था। वैसे तो वे मूलतः नरेल, जो बांग्लादेश में आता है, वहां के एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे।
2: उनके पिता का नाम श्याम शंकर चौधरी था, अपने समय के सुप्रसिद्ध वकील थे और राजस्थान में ही झालावाड़ के महाराज के यहाँ काम करते थे। उनके पिता को नवाबों द्वारा हर चौधरी की उपाधि दी गई थी, किंतु उन्होंने हर चौधरी में से हर को हटा दिया। अपने नाम के साथ सिर्फ चौधरी का प्रयोग करना ही पसंद करते थे। उदय शंकर की माँ हेमांगिनी देवी भी एक बंगाली जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनके अन्य बच्चों के नाम राजेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर, भूपेंद्र शंकर और रविशंकर थे।
1: श्रोताओं, चित्रकला की प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल और विलक्षण थी कि उन्होंने 5 साल का कोर्स 3 साल में ही पूरा कर लिया। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही तब उदय को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रमने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में पढ़ते हुए बिताए गए वो असंख्य घंटे ही थे जो उदय शंकर को नृत्य की ओर वापस ले आए।
2: फिर क्या था, उदय शंकर के मन में भारतीय मूर्तियों की विभिन्न नृत्य मुद्राओं में देवी देवताओं के चित्रों के प्रति विशेष रूप से आकर्षण पैदा हो गया और उन्होंने तब उन मुद्राओं का अनुसरण करना आरंभ किया। हालांकि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, फिर भी वे अपने आप को रोक नहीं पाए। बस फिर तो वो चित्र ही उनके लिए प्रेरणा बन गए और फिर उदय शंकर ने उन चित्रों को नृत्य की गति में ढाल दिया।
1: कॉलेज में पढ़ते हुए ही 1922 में उन्होंने अपना पहला नृत्य प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लीग ऑफ मर्सी द्वारा आयोजित किया गया, जो महारानी विक्टोरिया के शाही चार्टर द्वारा स्थापित एक ब्रिटिश संस्था थी, और इस नृत्य प्रस्तुति की किंग जॉर्ज पंचम ने भी सराहना की थी। एक और महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम की ये रही कि इसमें दर्शकों में प्रसिद्ध रूसी बैले नृत्यांगना अन्ना पावलोवा भी मौजूद थी, और उन्होंने उदय शंकर को नृत्य करते देखा तो उन्हें उदय शंकर की नृत्य शैली बहुत पसंद आई, और बाद में अन्ना पावलोवा ने उदय शंकर को कुछ भारतीय नृत्य बनाने की जिम्मेदारी दी। तब उदय शंकर ने अन्ना पावलोवा को राधा कृष्ण और हिंदू विवाह के नृत्य तैयार कर दिए, जो उन्हें बहुत पसंद भी आए।
2: ये दोनों बैले नृत्य जो उदय शंकर ने तैयार किए थे पश्चिम में बहुत पसंद किए गए, क्योंकि तब तक वहां के लोगों ने ऐसा पहले कुछ कभी नहीं देखा था। अन्ना पावलोवा के साथ कई नृत्यों की कोरियोग्राफी करने में उदय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये अन्ना पावलोवा ही थी जिन्होंने उदय शंकर को अपनी भारतीय तकनीक और शैली में सुधार के लिए प्रेरित किया। उदय शंकर ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा कि अन्ना ने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पश्चिमी शैली का अनुकरण ना करूं, क्योंकि पश्चिम के लोग नृत्य में वो सब कुछ देखना पसंद करेंगे जो कि भारतीय कला से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है।
1: इस तरह अन्ना पावलोवा के साथ एक साल बिताने के बाद उदय शंकर ने 1924 में पेरिस में अपनी नृत्य मंडली को शुरू तो किया, लेकिन पावलोवा की कंपनी से दूर जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि अन्ना पावलोवा के साथ उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए मिली सफलता और सार्वजनिक प्रशंसा के साथ पेशेवर और आर्थिक स्थिरता मिली थी, और कंपनी छोड़ने के बाद उदय शंकर बेरोजगार हो गए थे। और जब जीवन में पहली बार बिना किसी संरक्षण के परिस्थितियां बेहद मुश्किल हो गई थी, और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो बहुत छोटे छोटे आयोजनों में भी नृत्य के कार्यक्रम देने लगे। एक दो साल इसी तरह जीवन संघर्ष चलता रहा, और यही वो कार्यक्रम और आयोजन थे जहां उदय शंकर ने दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाकर उनसे एक अटूट रिश्ता बनाया।
2: समय निकला और बदला भी, और इसके साथ ही 1926 के आसपास उदय शंकर के लिए और भी चीजें बदलने लगी। उस समय उनके ट्रिप में उनके भाई रविशंकर, देवेंद्र शंकर और उनकी माँ के साथ उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे। तब दुनिया भर के तमाम देशों में इस ट्रिप ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, और उदय शंकर ने अपनी अलहदा नृत्य शैली के साथ नए नए प्रयोग किए और अपने नृत्य में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक को अपनाने के लिए मशहूर हो गए।
1: अब देखा जाए तो उदय शंकर के संघर्ष और उपलब्धियों की लंबी दास्तान है। उनके इस काम में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार 13-14 घंटे अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और हालात को सहते हुए मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया, पर स्वयं को टूटने नहीं दिया।
2: और फिर अन्ना पावलोवा के ही ट्रुप के दो पूर्व सदस्यों एडिलेड और सोकी नाम की दो बहनों के साथ काम किया, और कुछ समय बाद उन्होंने पेरिस की पियानो वादिका सिमोनो वाडियर के साथ मिलकर काम किया और सिमकी नाम के साथ नृत्य की दुनिया में अपना धमाल मचाया। कहा जाता है कि सिमकी के साथ तो एक नए युग की ही शुरुआत हुई। तब उदय शंकर ने नए नृत्यों की कोरियोग्राफी शुरू की जिसमें एकल और युगल दोनों ही तरह के नृत्य शामिल थे।
1: और फिर तो उदय शंकर और सिमकी नृत्य में साझेदारी जल्दी बेहतर लोकप्रिय हो गई, और उन्हें बहुत सारे शोज करने के लिए जल्दी जल्दी आमंत्रित भी किया जाने लगा। काम, शोहरत, इज्जत सब कुछ सामने आ गया। उन्हीं दिनों यूरोप के दौरे के दौरान उदय शंकर की मुलाकात स्विस चित्रकार और मूर्तिकार एलिस बोनर से हुई। वे उदय शंकर के नृत्य पर मोहित और प्रभावित हो गईं, और उन्होंने उदय शंकर की नृत्य मुद्राओं की मिट्टी से मॉडल और चित्रों के द्वारा एक श्रृंखला तैयार की।
2: तब तक उदय शंकर सुप्रसिद्ध नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता के रूप में जाने जाते थे। तब उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाने लगा था। उदय शंकर के भाव और भंगिमाओं को देखकर वो चकित हो गए। उदय शंकर के नृत्य के पीछे उन्होंने भारत के प्राचीन स्वरूप, संस्कृति और मूर्तिकला के भाव को समझा। तब उन्हें लगा कि भारतीय मंदिरों पर बनी मूर्तियां उदय शंकर के इस नृत्य के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रही हैं। उनकी उत्सुकता इतनी बड़ी थी कि वे इसे जानने के लिए भारत आईं और उदय शंकर के नृत्य को उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं, काशी के घाटों और सांस्कृतिक चित्रों में देखा।
1: उन पर आधारित एलिस की कलाकृतियां BHU के भारत कला भवन म्यूजियम की दर्शक दीर्घा में प्रदर्शित हैं, जहां उदय शंकर के नृत्य को और दूसरी भारतीय कलाओं के तालमेल को बताया गया है। उदय शंकर ने एलिस बोनर के साथ 1930 में भारत भ्रमण कर नृत्यों की भाव भंगिमाओं का चित्रांकन किया। एलिस 1931 में ही उदय शंकर के साथ काशी भी आई और तब यहाँ के 80 घाट ने उन्हें फिर वापस कहीं और जाने नहीं दिया।
2: उस समय भारत या बनारस में नृत्य को अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था। इस कारण उदय शंकर को कहीं से भी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। तब एलिस बोनर ने बनारस से यूरोप, अमेरिका आदि देशों में उनके कार्यक्रम तथा वेशभूषाओं की व्यवस्था देखने का जिम्मा उठाया और इस तरह एलिस बोनर और उदय शंकर ने लगभग 30 साल तक एक साथ काम किया। एलिस बोनर भारतीय कला और संस्कृति से प्रभावित होकर भारत तो आई उन्हें देखने ही थी, लेकिन 80 घाट पर जहां वो रहने लगी उस जगह आज एलिस बोनर इंस्टीट्यूट है।
1: और इधर उदय शंकर के संगीत और नृत्य प्रेम से गाजीपुर स्थित बिरनो ब्लॉक नसरतपुर के लोग आज भी शिद्दत से उन्हें याद करते हैं। उनकी यादें आज भी गाँव के लोगों के मन में बसी हैं, जो उन्हें याद रखे हैं। नसरतपुर के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि गांव में उदय शंकर का परिवार बंगाली बाबू के नाम से मशहूर था और पूरा परिवार शुरू से ही व्यवहार कुशल और व्यक्तित्व का धनी था। उनके परिवार के सदस्य सदा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते थे। गांव वासियों के प्रति उनका उदार रवैया ग्रामवासी कभी भुला नहीं पाएंगे।
2: उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य का प्रणेता माना गया है, क्योंकि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सभी आयामों में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक के साथ अपने नए रंग भरकर 1920 से 1930 तक के दशक में उसे यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया भर के अनेक देशों में प्रतिष्ठित किया। अपने कुछ मित्रों की सलाह पर वर्ष 1938 में उदय शंकर ने भारत लौटकर हिमालय पर्वत की गोद में बसे प्रकृति की खूबसूरत नेमत से भरपूर अल्मोड़ा शहर को अपनी भावी योजनाओं को अंजाम देने के लिए चुना।
1: ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से उन्होंने अपना स्कूल भारत में संचालित करने का मन बनाया था और इसके लिए वर्ष 1939 में अल्मोड़ा शहर में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना की गई। इस काम में उनके साथ कथकली के प्रख्यात गुरु शंकरन नमूदरी, भरतनाट्यम के कंडप्पा पिल्लई, मणिपुरी के अम्बी सिंह और संगीत के मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान शामिल थे।
2: और इसमें उनके इस समूह में गुरुदत्त, मैडम सिमकी, अमला, नरेंद्र शर्मा, जोहरा सैगल, लक्ष्मी शंकर, विष्णु रास, मंगेश राव, प्रभात गांगुली, शिशिन भट्टाचार्य, माधवन नायर, कनकलता तथा उनके अपने भाई रविशंकर भी छात्र रूप में शामिल हो गए। लेकिन इतने गुणी व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने के बावजूद ये केंद्र मात्र 4 वर्ष ही अस्तित्व में रहा। उनके अभिनव प्रयोगों के बावजूद उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर धन की कमी के कारण 1942 में बंद हो गया। बड़े भारी मन से उदय शंकर ने अल्मोड़ा छोड़कर वापस जाने का फैसला कर लिया। तब उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर का सारा सामान लंबे समय तक अल्मोड़ा में ही पड़ा रहा।
1: हम यहाँ सामान का जिक्र श्रोताओं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें उदय शंकर के माने गए कथकली नृत्य गुरु पंडित शंकरन नंबूदरी का दिया हुआ उपहार भी शामिल है, जिसके बारे में उदय शंकर का कहना था कि इससे उनका अंतरंग जुड़ाव है। तो हुआ यूं कि अल्मोड़ा में बाकी पड़े सारे सामान के साथ उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में होने वाले कार्यक्रम से पहले एक विशाल और भव्य धातु निर्मित पानस यानी कि ऊंचा दीपक, जिसे हमारे यहाँ समय कहा जाता है और केरला में इसे पानस कहा जाता है, उसे प्रज्वलित किया जाता है। तो वो पानस अर्थात समय भी था और इस पानस अर्थात समय को भी उसी सामान के साथ रखा गया था जिसकी नीलामी होनी थी। पीतल धातु से बने एक क्विंटल वजन से भी ज्यादा वजनी इस पानस को उदय शंकर को उनके गुरु पंडित नंबूदरी ने उपहार में दिया था।
2: उदय शंकर ने अपने इन गुरु से केरल जाकर उनके गांव में ही रह रह कर नृत्य की भंगिमाओं एवं बारीकियों को सीखा था। ये पानस यानी समय 1 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसमें दीपक जलाने के लिए लगभग 2 लीटर तेल की आवश्यकता होती है और एक साथ 100 बत्तियां जलती हैं और बत्तियां जलाने वाले हिस्से की परिधि भी लगभग 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस पानस को 2 भागों में खोला जा सकता है और इस प्रयोग से पहले जोड़कर इसे पूरा किया जाता है, तब इसका उपयोग हो पाता है।
1: श्रोताओं, किसी विशेष अवसर पर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से पहले इसके सभी हिस्सों को खोलकर अलग कर लिया जा सकता है और दीप प्रज्वलन के लिए उसे पुनः जोड़ा जाता है। ये इतना भारी है कि इसकी ऊपरी चक्कर को खोलने के लिए 3-4 व्यक्ति पकड़कर घुमाते हैं, तब कहीं ये खुल पाता है। इस पानस की नीलामी के समय उदय शंकर मन से बहुत द्रवित थे। वे दुखी मन से बोले थे कि चाहे इस पानस का मूल्य कम भी मिले, लेकिन ये पानस केवल उस व्यक्ति को ही मिले जो कला का पारखी हो और इस अमूल्य धरोहर को संजो कर रख सके, क्योंकि इससे मेरा अंतरंग जुड़ाव है।
2: उदय शंकर की इच्छा के अनुसार ये पानस हरिकिशन लाल शाह गंगोला और उनके पुत्र जगदीश लाल शाह गंगोला ने खरीदा, जो गंगोला परिवार की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। यहाँ श्रोताओं, हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इस पानस को 1943-44 में नीलामी के बाद पहली बार 1954 में अल्मोड़ा में आयोजित शरद उत्सव में प्रज्वलित किया गया था।
1: जी, और तब से अल्मोड़ा नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों में इस पानस अर्थात समय के दीप प्रज्वलित कर अनेक शख्सियतों ने यहाँ आयोजित कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया है, जिनमें प्रमुख है मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान, प्रख्यात सितार वादक और उदय शंकर के छोटे भाई भारत रत्न पंडित रविशंकर, उनकी पत्नी अन्नपूर्ण देवी, जोरा सेगल, नृत्यांगना सोनल मानसिंह और उदय शंकर के पुत्र आनंद शंकर। गंगोला परिवार के सदस्यों का कहना है कि उदय शंकर जैसे कलाकार का ये पानस समय वर्तमान में भी अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उदय शंकर के योगदान का गवाह है और आज भी ये रंगकर्मी और संस्कृति प्रेमियों के लिए नृत्य सम्राट उदय शंकर के महान योगदान का एक प्रेरक स्तंभ बना हुआ है।
2: अब बात करें उदय शंकर के निजी जीवन की, तो उन्होंने अपने मित्र अक्षय नंदी की छोटी बहन और उनके ट्रुप में काम करने वाली 11 वर्ष छोटी खूबसूरत नृत्यांगना अमला नंदी से 1939 8 मार्च को विवाह कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अमला ने 1942 में उनके पुत्र आनंद शंकर को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक गायक और संगीतकार बने। जीवन में चले उतार चढ़ाव, ऊंच नीच को सुलझाते हुए जीवन की डगर पर चलते हुए अमला ने उदय शंकर की दूसरी संतान खूबसूरत पुत्री ममता शंकर को जन्म दिया, जो एक बेहतरीन अभिनेत्री, नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और कोलकाता में उदयन डांस कंपनी भी चलाती हैं।
1: और चलिए अब बात करते हैं भारतीय आधुनिक नृत्य कला के जन्मदाता उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट की। जी हाँ, उनका ये प्रोजेक्ट था नृत्य पर एक फिल्म निर्माण करने का। वो चाहते थे कि उनकी कला का प्रचार प्रसार हो, इसलिए एक संस्थान की स्थापना भी वो करना चाहते थे। इधर उनकी आयु भी बढ़ती जा रही थी, वो सोचते थे कि उनका नृत्य बना रहे, बचा रहे, बसा रहे। और सन 1965 में एक ऐसा संस्थान बनाया गया बंगाल के कोलकाता शहर में। इस संस्थान में अमला शंकर को निर्देशक बनाया गया।
2: अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी उनकी बनाई नृत्य विधा को संजोए रखने के लिए बनाई गई फिल्म कल्पना की। ये काम जोर शोर से चलने लगा। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट तैयार की गई। इस फिल्म का लेखन, निर्देशन, नृत्य निर्देशन स्वयं उदय शंकर ने किया और फिल्म में हीरो की भूमिका उदय शंकर और हीरोइन की भूमिका अमला शंकर ने निभाई। फिल्म की पटकथा अमृतलाल नागर ने लिखी और गीत सुमित्रा नंदन पंत और भील लोकगीत देवीलाल समर के थे और संगीत विष्णुदास शिराली ने रचा था।
1: श्रोता, 1948 में बनी फिल्म कल्पना एक नृत्य प्रधान फिल्म थी, जो एक युवा नर्तक के नृत्य अकादमी स्थापित करने के सपने के इर्द गिर्द घूमती है। ये पहली फिल्म थी जिसमें एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को प्रमुख भूमिका में प्रस्तुत किया गया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक नृत्य बैले और एक फैंटेसी के रूप में फिल्माया गया था। ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन 2008 में गोवा शहर में इसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के खजाने के अनुभाग के एक भाग के रूप में अभिलेखागार में अन्य दुर्लभ रत्नों के साथ दिखाया गया था।
2: उदय शंकर को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। हुआ ये कि फिल्म बनना शुरू हुई तो पैसों की कमी के कारण उदय शंकर को अपना अल्मोड़ा वाला उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर बंद कर देना पड़ा, जिसका उदय शंकर को बहुत गहरा धक्का लगा। और तब उनकी पत्नी अमला शंकर ने ही बड़े धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने पति उदय शंकर को संभाला और किसी तरह इस फिल्म को पूरा करने में सहयोग दिया।
1: लेकिन अमला शंकर और उदय शंकर की सारी मेहनत, हिम्मत और धैर्य सब जवाब दे गए जब रिलीज के बाद फिल्म कल्पना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि अब इस फिल्म की हिफाजत किसी बेशकीमती नगीने की तरह की जाती है और संघ 2010 में मार्टिन स्कॉर्सेसे, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं, उनकी कंपनी वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन ने इस फिल्म के डिजिटल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, उदय शंकर द्वारा बनाई गई कल्पना नामक फिल्म भारतीय सिनेमा की अनोखी अनूठी प्रयोगात्मक कृति मानी जाती है। इस फिल्म में नृत्य कला, दृश्य कला और फिल्मांकन को एक साथ पिरोकर उदय शंकर ने दर्शकों को एक नई राह दिखाई है।
2: बिल्कुल, इसके साथ ही रचनात्मकता और भारतीय नृत्य कला में अमूल योगदान के लिए उदय शंकर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1960 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और उसके बाद सन 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी नवाजा गया। और पुरस्कारों का सिलसिला यहीं नहीं थमा, सन 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण यानी देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और सन 1975 में उन्हें देशी कोतम नामक विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया।
1: हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अशोक वाजपेयी का कहना है कि उदय शंकर का नृत्य कम से कम तीन विश्वासों से प्रेरित नृत्य था। एक, शास्त्रीयता में विश्वास, दो, आधुनिकता में विश्वास और तीसरा, आत्मविश्वास। जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। हम में से वे सभी जो भारतीय नृत्य के इतिहास और उसके आधुनिक काल से परिचित हैं, वो ये भी जानते हैं कि उदय शंकर ने एक तरह की शास्त्रीय आधुनिकता विकसित करने का प्रयास किया था।
2: एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव, सुषमा, ऊर्जा, लालित्य पश्चिम के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे जो तब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था। दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। पश्चिम में उस समय आधुनिकता के अंतर्गत उनकी अपनी परंपरा लगातार प्रश्नांकित की जा रही थी। कई बार उसे हाशिए पर डालकर कई कल्पनाशील और दुस्साहसी सृजनात्मकता का बोलबाला था। कलाओं में आख्यान को अपदस्थ कर अमूर्तन पर आग्रह बढ़ रहा था। उदय शंकर इन वृत्तियों को भी किसी हद तक अपने नृत्य में समाहित और संबोधित करना चाह रहे थे। वे भारतीय नृत्य के पारंपरिक रूपकारों को पुनः संयोजित कर एक नए किस्म के समावेशी और साहसिक शास्त्रीयता विकसित करना चाहते थे।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव सबके सामने रखना चाहते थे जो अब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था, तो दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। श्रोताओं, उस समय जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। उन्हें किसी भी तरह का शासकीय या सार्वजनिक समर्थन भी प्राप्त नहीं था। उस समय उनके वित्तीय साधन अल्प और सीमित थे। ये बात तो है, क्योंकि वो नृत्य के किसी पारंपरिक परिवार से नहीं आते थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का सामूहिक समर्थन भी नहीं मिला था। उनका प्रयत्न सदा एकांतिक रहा।
2: उनका दुस्साहस, उनकी नृत्य परिकल्पना और नृत्य के प्रति उनकी जिजीविषा का ही ये फल था कि इसी काम से उनकी सार्थकता प्रकट होती है। उस समय उनके अपने व्यक्तित्व का बड़ा मोहक आकर्षण था और उनके इसी व्यक्तित्व की सफलता और सार्थकता में बड़ी भूमिका रही। उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के नृत्य से उनके कई तत्वों को जोड़कर अपनी एक विशिष्ट और लगभग अद्वितीय शैली बनाई थी। यदि इन शैलियों की परंपराओं में हमेशा व्यक्तित्व का भी महत्व होता, उसका केंद्र बिंदु भी परंपरा के अंदर ही लेता है, बाहर नहीं।
1: पर उदय शंकर किसी पारंपरिक शैली के नृत्यकार नहीं बने। हालांकि नृत्य की प्रत्येक पारंपरिक शैली से उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिया, फिर चाहे वो कथक हो, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली, कोई भी नृत्य विधा क्यों ना हो, नृत्य की हर शैली का प्रभाव उनके नृत्य में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी किसी एक शैली में समाहित होता नजर नहीं आता। पर यह बात कहना गलत नहीं होगा क्योंकि थोड़ी बहुत परंपरा भी बनी, जिसमें नरेंद्र शर्मा और अमला शंकर, जो उनकी पत्नी भी थी, उन जैसे महत्वपूर्ण नर्तक भी हुए, पर कुल मिलाकर यह शैली बहुत आगे नहीं चल पाई। इसमें वे नृत्य में नवाचार के प्रतीक बने, मान्य और लोकप्रिय भी हुए, और इन्हीं नवाचारों के क्षेत्र में शास्त्रीयता में उदय शंकर से सभी ने प्रेरणा ली है।
2: नवाचार में दुस्साहस क्या और कैसे होता है, ये सब उदय शंकर के नृत्य को देखकर ही हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने अपने नृत्य में जो आत्मविश्वास दिया, अपनी नृत्य बैले शैली में आधुनिक शैली में जो प्रयोग किए, उन्हें भी उदय शंकर के पथ प्रदर्शक अपने नृत्य प्रयोग के विस्तार के रूप में जानते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के बीच लगातार संवाद का जो सिलसिला शुरू किया था, वो भी किसी न किसी रूप में चलता रहा। उदय शंकर को मंच पर नृत्य करते हुए देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। सुप्रसिद्ध रूसी बैले नर्तकी अन्ना पावलोवा ने जब उदय शंकर को पहली बार मंच पर नृत्य करते हुए देखा था, तो बोली थी कि लगा जैसे अजंता में चिन्हित किसी देवता ने मानव शरीर धारण कर लिया है।
1: इसी तरह इटली की मूर्तिकार एलिस बोनर ने ज्यूरिख में उनका नृत्य देखकर कहा कि उदय शंकर के शरीर में चित्र और पत्थर की प्रतिमाओं की थिरकन है। इसी तरह उदय शंकर की उंगलियां, हथेलियां, आंखें और देह की भंगिमाओं का अनूठा मेल देखकर ही उनकी पत्नी अमला ने उदय शंकर पर मोहित होकर उनसे विवाह किया था। वे लिखती हैं, शिव तांडव तथा अग्नि पूजा देखकर मैं पागल हो गई कि कोई इतना सुंदर नृत्य कैसे कर सकता है, ये बात मैंने पहली बार समझी। उदय शंकर के द्वारा बनाई गई फिल्म कल्पना, जो 154 मिनट की थी, दृश्यों की गतिशीलता में इस फिल्म में दृश्य और ध्वनि का अद्भुत मेल दिखाई और सुनाई देता है। इस फिल्म में लगभग 200 वाद्यों का प्रयोग किया गया है। लोगों ने इस फिल्म में प्रयुक्त तबला सुना तो दंग रह गए कि एक ही वाद्य यंत्र से कोई इतनी आवाजें कैसे निकाल सकता है भला।
2: इसी तरह एक बार पेरिस से जब उदय शंकर भारत आए, तो मंदिरों में घूमते हुए वो केरल में कथकली नृत्य को देख के भौचक्के रह गए। उन्होंने लिखा कि बिना जाने बिना देखे मैं अपने नृत्य में ये लाता रहा हूँ। उदय शंकर का नृत्य ऐसा ही था। नृत्य पर प्रयोग की गई भारतीय संस्कृति को समेटे उनकी ये दृष्टि सदा जीवंत रहेगी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक जामा पहनाकर भारतीय संस्कृति को विश्व के हर कोने तक पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया है।
1: जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में राजपूत चित्रकला और मुगल चित्रकला की शैलियों का भी गंभीर अध्ययन किया और भारतीय नृत्य को एक समकालीन रूप देकर विचार न केवल मजबूत हुआ, बल्कि उन्होंने ये कर दिखाया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वे भारतीय आधुनिक नृत्य के शिल्पी थे। यहाँ ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कला की दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमरत्व पा गए हैं। उदय शंकर भी उन्हीं महान हस्तियों में से एक नाम है, जिन्होंने नृत्य को केवल एक प्रदर्शन की कला नहीं बल्कि सांस्कृतिक सेतु का रूप दिया। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। 26 सितंबर 1977 को कोलकाता में वे हमारे बीच से सदा सदा के लिए विदा हो गए। कोलकाता में उदय शंकर सेंटर ऑफ डांस आज भी उनकी समूह नृत्य परंपरा को संरक्षित और जीवित रखे हुए है, जिन्होंने कला को सीमाओं से मुक्त कर दिया।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में अभी आपने सुना प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर जी के बारे में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इजाजत दीजिए मनीषा
1: और संदीप शर्मा। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का। तो फिर मिलेंगे कला कल्लोलिनी में एक और कला मनीषी के साथ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पिछली कुछ कड़ियों में आपने स्वामी जी से राजयोग, कर्मयोग, प्रेम योग तथा वेदांत की व्याख्या सुनी। अब हम फिर बेलूर मठ में लौट आते हैं और शिष्यों के साथ स्वामी जी के विभिन्न विषयों पर वार्तालाप के कुछ अंश सुनते हैं।
1: श्री सुरेंद्रनाथ सेन महाशय स्वामी जी के अनन्य भक्त थे। वे अक्सर स्वामी जी से प्रश्न पूछा करते थे और स्वामी जी भी बिना थके उनके संदेहों को दूर कर देते थे। अब हम सुरेंद्रनाथ के कुछ संस्मरण सुनेंगे।
2: सोमवार 24 फरवरी 1898 की बात है। दोपहर में मैं फिर स्वामी जी के पास आया। उनके चारों ओर काफी लोग बैठे थे। मधुर भाव पर चर्चा हो रही थी। ईश्वर को पतिरूप में भजना, जैसे कि चैतन्य संप्रदाय में प्रचलित है, मधुर भाव कहलाता है। स्वामी जी की उक्तियों से कभी कभी हंसी के फव्वारे छूट जाते। किसी बीच कोई बोला,
3: चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला में हास्यास्पद ऐसा क्या है? क्या आप सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु महात्मा नहीं थे और उनका जीवन सर्वभूत हिताय नहीं था?
4: कौन हो तुम? तो महाशय जी, मैं क्या फिर तुम्हारी हंसी उड़ाऊं? तुम तो केवल इसमें हंसी ही देखते हो। पर महाशय, तुम्हें यह नहीं दिखता कि चैतन्य महाप्रभु के ज्वलंत आदर्श कामिनी कांचन के त्याग के सांचे में अपने को ढालने के लिए मैंने आजीवन संघर्ष किया है और जन साधारण में वही आदर्श की भावना ठूंस ठूंस कर भर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु तो महान त्यागी थे, उनका कामिनी और इंद्रिय भोग से क्या नाता? पर बाद में

0: और निस्पृहता के आदर्शों की ओर दुर्लक्ष्य कर सर्वसाधारण में उनके प्रेम के आदर्श का ही प्रचार किया। परिणाम यह हुआ कि सर्वसाधारण उस स्वर्गीय प्रेम के तत्व को तो समझ नहीं पाए और उस प्रेम को स्त्री पुरुष के निकृष्ट स्वरूप के प्रेम का रूप प्राप्त हो गया।
1: पर महाराज, कृष्ण के नाम के उपदेशों का अधिकार सर्वसाधारण को क्यों नहीं होना चाहिए?
0: मैं उनके उपदेशों को नहीं, उनके प्रेम के महान आदर्श राधा प्रेम की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें वे रात दिन मस्त रहते थे और अपने को राधा का ही स्वरूप समझते रहते थे।
2: ये सर्वसाधारण के लिए क्यों वर्जित है?
0: इस देश पर उसका क्या परिणाम हुआ ये तो देखो। उस प्रेम भाव का सर्वसाधारण में प्रचार किए जाने से सारा राष्ट्र अशक्त हो गया है, जाति का पौरुष नष्ट हो गया है, लोगों को बस रोना और आंसू बहाना मात्र आता है। यही उनका राष्ट्रीय गुण बन गया है। उनके साहित्य को देखो, जो कि राष्ट्र के विचारों और भावों का दर्पण होता है। इन 400 वर्षों के बंगाली साहित्य का ध्रुवपद यही कराहना और आंसू बहाना ही तो है। इन 400 वर्षों में वीर रस का एक काव्य तक तो नहीं रचा गया।
1: तो उस प्रेम के अधिकारी फिर कौन है?
0: जब तक हृदय में वासना के लिए तिल मात्र भी स्थान है, तब वो प्रेम संभव नहीं। केवल महान त्यागी, निस्पृह और संन्यस्त व्यक्ति, केवल जो मानवों में अति मानव है, देव स्वरूप है, केवल उन्हें ही उस स्वर्गीय प्रेम का अधिकार है। यदि वो प्रेम का उच्चतम आदर्श सर्वसाधारण में प्रचलित कर दिया जाए, तो शनै शनै वो मनुष्य के हृदय में प्रबल सांसारिक प्रेम में ही विकृत हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का प्रिया भाव से ध्यान करते करते साधारण मनुष्य अधिकांश समय अपनी ही प्रिया के ध्यान में खोया रहेगा, और इसका परिणाम क्या होगा ये स्पष्ट है।
1: ठीक है महाराज, नाम कीर्तन अत्यंत सहायक है और उसमें बहुत ही आनंद आता है। धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं और महाप्रभु चैतन्य ने भी जनता को यही उपदेश दिया है। जब मृदंग बजने लगता है तो हृदय आनंद से उछलने लगता है और आदमी नाचने लगता है।
0: ये ठीक है, पर ये मत समझना कि कीर्तन का अर्थ केवल नाचना ही है। कीर्तन का अर्थ है जैसे भी संभव हो ईश्वर का गुणगान। वैष्णवों का भावावेश में आकर नाचने लगना और मस्त हो जाना निस्संदेह अत्यंत मनोहारी है, पर उसमें एक धोखा भी है जिससे अपने को बचाना चाहिए। वो धोखा है उसकी प्रतिक्रिया में। एक ओर तो भावनाएं उच्चतम शिखर तक पहुंच जाती हैं, नैनों से अश्रु प्रवाह शुरू हो जाता है और फिर शरीर मस्ती में झूमने लगता है, पर दूसरी ओर जो ही संकीर्तन समाप्त होता है, भावनाओं की इन प्रबल लहरों का उतना ही शीघ्रता से पतन होता है। समुद्र में लहरें जितनी ऊपर उठती हैं उतनी ही नीचे गिरती हैं। उस अवस्था में प्रतिक्रिया का आघात सह लेना सरल नहीं है। जब तक सद्विवेक बुद्धि का विकास नहीं हो जाता, साधारणतया व्यक्ति ऐसी अवस्था में वासना इत्यादि दुर्बलताओं का शिकार बन जाता है। अमेरिका में भी यही बात मेरे देखने में आई। कई लोग गिरजाघर जाते हैं, भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं, तन्मय होकर गाते हैं, धर्मोपदेश सुनते सुनते रोने भी लगते हैं, पर प्रार्थना समाप्त होने पर जो ही गिरजा के बाहर आते हैं इसकी प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है और वे इंद्रिय सुखों के शिकार हो जाते हैं।
2: महाराज, कृपा कर यह बताइए कि चैतन्य महाप्रभु के कौन कौन से विचार योग्य समझकर हम ग्रहण करें जिसमें कोई भूल ना हो।
0: ईश्वर की ज्ञान मिश्रित भक्ति से आराधना करो, भक्ति के साथ विवेक का लोप ना हो। इसके अतिरिक्त महाप्रभु से उनकी सहृदयता, प्राणी मात्र के प्रति उनकी प्रेममय दया, ईश्वर के प्रति उनका उत्कट प्रेम सीखो और उनकी निस्पृहता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ।
3: अब प्रश्नकर्ता ने दोनों हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, अब मैं समझ गया कि आपका कहना ठीक है। वे महाशय तब स्वामी जी को प्रणाम कर चले गए। मैंने ये पहले ही बता दिया है कि स्वामी जी कलकत्ते में आते थे तो इस प्रकार की गोष्ठियां रोज हुआ करती थीं। प्रातः काल से रात्रि के 8-9 बजे तक हर घड़ी दर्शकों और श्रोताओं का तांता ही लगा रहता था। इससे उनका भोजन कभी समय पर नहीं हो पाता। इसीलिए कई लोगों ने स्वामी जी को सलाह दी कि वे आगंतुकों से निश्चित समय पर ही भेंट किया करें, किंतु स्वामी जी का हृदय तो प्रेम का सागर था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था और लोगों में धर्म के लिए जिज्ञासा और पिपासा देखकर तो उनमें करुणा उमड़ पड़ती थी। इसीलिए अस्वस्थ रहने पर भी उन्होंने ऐसी कोई सलाह नहीं मानी। उनका तो बस यही एक जवाब होता था,
0: वे अपने घरों से चलकर यहां तक आने में इतना कष्ट उठाते हैं तो क्या मैं सिर्फ अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाने की थोड़ी सी आशंका से ही उनसे दो शब्द भी नहीं बोलूं? ये कैसे संभव है?
3: करीब 4 बजे चर्चा समाप्त हुई, मंडली विसर्जित हो गई थी। केवल कुछ ही सज्जन बैठे रहे जिनसे स्वामी जी इंग्लैंड और अमेरिका आदि के संबंध में बातचीत करते रहे थे। इसी वार्तालाप के मध्य में उन्होंने कहा,
0: इंग्लैंड से लौटते समय मुझे एक अद्भुत स्वप्न हुआ था। जब हमारा जहाज भूमध्य सागर में चल रहा था, स्वप्नावस्था में मैंने देखा कि ऋषि तुल्य कोई वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम आओ हमारा उद्धार करो। मैं थेरा पुत्तम के प्राचीन पंथ का अनुयायी हूं, जो प्राचीन भारतीय ऋषियों की शिक्षाओं पर आधारित है। जिस सत्य और जिन आदर्शों का हमने प्रचार किया, ईसाई लोग उनका ईसा मसीह द्वारा प्रचलित किया जाना बताते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए यहां खुदाई की जाए तो कई प्रमाण मिल सकेंगे। मैंने पूछा, कौन सी जगह खुदाई करने पर वे अवशेष और प्रमाण मिलेंगे? उस श्वेत केशी वृद्ध ने तुर्की के पास का एक द्वीप बताकर कहा, वहां। इतने में ही मैं जाग गया और डेक पर जाकर मैंने जहाज के कप्तान से पूछा कि जहाज अभी कहां है। जहाज के कप्तान ने हाथ से दिखाते हुए कहा, देखो वो तुर्किस्तान है और वो क्रीट द्वीप है।
3: क्या यह एक स्वप्न मात्र ही था या उस स्वप्न में कोई सत्य छिपा था, कौन जानता है।
4: स्वामी जी के एक और भक्त थे सुरेंद्र नाथ दास गुप्ता महाशय। उनकी डायरी से भी हमें कुछ संस्मरण मिले हैं, लीजिए प्रस्तुत है।
3: एक दिन विभिन्न विद्यालयों के मेरे कुछ मित्रों के साथ मैं स्वामी जी का दर्शन करने बेलुड़ मठ गया। हम उनके पास बैठ गए, कई विषयों पर चर्चा हो रही थी। उनसे कोई भी प्रश्न पूछे जाते ही वे उसका संतोषप्रद उत्तर दे देते थे। मेरा एक मित्र धीमी आवाज में स्वामी जी की प्रशंसा कर रहा था।
0: मेरी प्रशंसा मत करो, हमारी इस दुनिया में प्रशंसा और निंदा का कोई मूल्य नहीं है। ये तो केवल झमले के समान मनुष्य को झोंके दिलाती रहती है। मुझे काफी प्रशंसा मिली, कटु आलोचना की बौछार भी मैंने सही है, पर उनकी याद से क्या लाभ। हर एक व्यक्ति निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य करता रहे, जब अंतिम घड़ी आएगी तो निंदा और प्रशंसा मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सबके लिए समान हो जाएगी। हम सब यहां काम करने आए हैं और जब पुकार होगी तब सब कुछ छोड़कर चल देना होगा।
3: पर हम सब इतने अधिक गरीब हैं स्वामी जी।
0: गरीबी के इन विचारों को छोड़ो, किस दृष्टि से तुम गरीब हो? क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि सोने के मुलायम गद्दे नहीं हैं और बुलाते ही हाजिर होने वाले नौकर चाकर नहीं है? उससे क्या होता है तुम नहीं जानते? यदि तुम रात दिन दूसरों की सेवा में अपना खून पसीना एक कर दो तो जीवन में तुम्हारे लिए असंभव और असाध्य कुछ नहीं रहेगा। और फिर तुम देखोगे तुम्हारी आंखों के सामने जीवन की प्रकाशमान सरिता का दूसरा छोर अनंत असीम फैला है। मृत्यु का आवरण हट गया है और तुम अमरों के रम्य देश के अधिकारी बन गए हो।
3: ओ, आपके समक्ष बैठकर आपकी जीवन दायिनी वाणी सुनने में कितना आनंद है स्वामी जी।
0: देखो, भारत का परिभ्रमण करते करते कई महात्माओं से मेरी भेंट हुई। कई ऐसे हृदय पाए जिनमें दया और प्रेम का सागर लहरें मार रहा है। उनके चरणों में बैठकर मुझे प्रतीत होता था कि मेरे हृदय में शक्ति की अनंत धारा प्रवाहित होने लगी है। आज जो थोड़े शब्द मैं तुम लोगों के सामने बोल रहा हूं, वे उन महात्माओं के सानिध्य से प्राप्त उस प्रबल धारा के किंचित बूंद मात्र हैं। ये मत सोचो कि मुझमें स्वयं में कोई महत्ता है।
3: पर स्वामी जी, हम तो आपको इसी भाव से देखते हैं कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई है। ये शब्द मेरे मुख से निकले ही थे कि उनके वे प्रकाशमान नेत्र अश्रु प्लावित हो गए। उनके हृदय से प्रेम उमड़ा जा रहा था और वे धीरे धीरे कोमल मृदुवाणी में बोले,
0: उन पुण्य चरणों में ही ज्ञानी के ज्ञान की पूर्णता समाई है। उन्हीं पुनी चरणों में ही भक्तों की भक्ति और प्रेमियों के प्यार की पूर्णता समाई है। मुझे बताओ, उन श्री चरणों के सिवाय भवताप से दग्ध जीव और कहां शरण पाएंगे।
3: कुछ क्षण बाद वे फिर बोले,
0: हाय, मनुष्य कितना मूर्ख है जो अपना जीवन कल में बिता देता है, पर कब तक वे ज्ञानी बने रहेंगे। अनंत योनियों में भ्रमण करने के बाद जीवन चक्र के संध्या काल में मां की गोद में सबको आना ही होगा।

0: स्वामी जी के एक और प्यारे शिष्य थे श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती जी। उन्होंने स्वामी जी शिष्य संवाद नामक ग्रंथ में स्वामी जी के साथ उनके कई वार्तालापों का वर्णन किया है। यद्यपि वार्तालाप मुख्यतः आध्यात्मिक विषयों पर ही केंद्रित था, फिर भी इसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, शिल्पकला और राष्ट्र संबंधी अनेकानेक विषयों पर स्वामी जी के विचार व्यक्त हुए हैं।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान कैसे हो सकता है तथा हम अपनी खोई हुई मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी भलीभांति दर्शाया गया है। ये वार्तालाप सन 1898 ईस्वी में बेलूर मठ का है, जब मठ का निर्माण कार्य चल रहा था।
2: स्वामी जी, आजकल हमारे समाज और देश की इतनी बुरी दशा क्यों हो रही है?
3: तुम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हो।
2: महाराज, क्यों, किस प्रकार?
3: बहुत दिनों से देश के नीची जाति वालों से घृणा करते करते अब तुम लोग जगत में घृणा के पात्र बन गए हो।
2: हमने कब उनसे घृणा की?
3: क्यों, पुरोहितों, द्विजों के दलों ने ही तो वेद, वेदांत आदि सार युक्त शास्त्रों को द्विजों के अतिरिक्त अन्य जाति वालों को कभी पढ़ने नहीं दिया, उन्हें स्पर्श भी नहीं करने दिया, उन्हें केवल नीचे दबा कर रखा है। स्वार्थ की दृष्टि से तुम ही लोग तो चिरकाल से ऐसा करते आ रहे।

0: उनके मन विश्वास में जमा दिया था कि वे वास्तव में निम्न हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते सोते उठते बैठते हर समय कोई कहता रहे कि तू निम्न है, तो कुछ समय के पश्चात उसकी यही धारणा हो जाती है कि मैं वास्तव में निम्न हूं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हिप्नोटाइज करना। द्विज जातियों का अब धीरे धीरे यह भ्रम मिट रहा है। द्विजों के तंत्र मंत्र में उनका विश्वास कम हो रहा है। प्रबल जल वेग से नदी का किनारा जिस प्रकार टूट जाता है, उसी प्रकार पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार से द्विजों की करतूतें अब लुप्त हो रही हैं। देख तो रहा है ना?
1: जी हां, छुआछूत आदि का बंधन आजकल धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है।
0: होगा नहीं, द्विजों ने धीरे धीरे घोर अनाचार अत्याचार करना जो प्रारंभ कर दिया था। स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपनी प्रभुता को ही कायम रखने के लिए कितने ही विचित्र ढंग के अवैधिक अनैतिक युक्ति विरुद्ध मतों को चलाया था, उनका फल भी हाथों हाथ पा रहे हैं।
1: क्या फल पा रहे हैं महाराज?
0: क्या फल नहीं देख रहा है? तुम लोगों ने जो भारत के अन्य साधारण जाति वालों से घृणा की थी, इसलिए अब तुम लोगों को हजारों वर्षों से दास्तां सहनी पड़ रही है, और तुम लोग अब विदेशियों की घृणा और स्वदेश निवासियों की उपेक्षा के पात्र बने हुए हो।
1: परंतु महाराज, अभी तो व्यवस्था आदि ब्राह्मणों के मत से ही चल रही है। गर्भाधान से लेकर सभी कर्मकांड की क्रियाएं जैसे द्विज बता रहे हैं वैसे ही लोग कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
0: कहां चल रहा है शास्त्रोक्त दशविध संस्कार? कहां चल रहा है? मैंने तो सारा भारतवर्ष घूमकर देखा है। सभी स्थानों में श्रुति और स्मृतियों द्वारा निंदित देशाचारों से समाज का शासन चल रहा है। लोक प्रथा, देश प्रथा और स्त्री प्रथा ही सर्वत्र स्मृति शास्त्र बन गए हैं। कौन किसकी बात सुनता है? धन दे सको तो पंडितों का दल जैसा चाहो विधि निषेध लिख देने को तैयार है। कितने पुरोहितों ने वैदिक कल्प गुह्य और श्रौत सत्रों को पढ़ा है? उस पर देख, बंगाल में रघुनंदन का शासन है, और जरा आगे जाकर देखेगा मिताक्षरा का शासन, और दूसरी ओर जाकर देख मनुस्मृति का शासन चल रहा है। तुम लोग समझते हो शायद सर्वत्र एक ही मत प्रचलित है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वेद के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े, सब लोग वेदों की चर्चा करें, और इस प्रकार सर्वत्र वेद का शासन फैले।
1: महाराज, क्या अब ऐसा चलना संभव है?
0: वेद के सभी प्राचीन नियम चाहे ना चले, परंतु समय के अनुसार काट छांट कर नियमों को सजाकर नए सांचे में ढालकर समाज के सामने रखने से वे क्यों नहीं चलेंगे?
1: महाराज, मेरा विश्वास था कि कम से कम मनु का शासन भारत में सभी लोग अब मानते हैं।
0: कहां मान रहे हैं? तुम अपने ही देश में देखो ना, तंत्र का वामाचार तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट हो गया है। यहां तक कि आधुनिक वैष्णव धर्म में भी, जो मृत बौद्ध धर्म के कंकाल का शेष है, घोर वामाचार प्रविष्ट हो गया है। उस अवैधिक वामाचार के प्रभाव को घटना होगा।
1: महाराज, क्या अब इस कीचड़ को साफ करना संभव है?
0: तू क्या कह रहा है? डरपोक, कायर पुरुष कहीं का। असंभव कह कहकर तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नहीं हो सकता?
1: परंतु महाराज, देश में मनु याज्ञवल्क्य आदि ऋषिगणों के फिर से पैदा हुए बिना ऐसा होना संभव नहीं जान पड़ता।
0: अरे, अपवित्रता और निस्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु याज्ञवल्क्य बने थे, या और कुछ? चेष्टा करने पर हम भी तो मनु या याज्ञवल्क्य से बड़े बन सकते हैं, उस समय हमारा मत भी क्यों नहीं चलेगा? मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक प्रथाओं को समाज और समय के उपयुक्त बनाकर नए सांचे में गढ़कर नवीन रूप में देश में चलाना होगा, ऐसा नहीं है क्या?
1: जी हाँ।
0: फिर तुम ही लोग तो पूर्व काल में वैदिक ऋषि थे, अब केवल शरीर बदलकर आए हो। मैं दिव्य चक्षु से देख रहा हूं, तुम लोगों में अनंत शक्ति है। उस शक्ति को जगा दे, उठ, उठ लग जा कमर कस, क्या होगा दो दिन का धन मान लेकर। मेरा भाव जानता है मैं मुक्ति आदि नहीं चाहता हूं, मेरा काम है तुम लोगों में इन्हीं भावों को जगा देना। एक मनुष्य तैयार करने में लाख जन्म भी लेने पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।
1: अच्छा महाराज, उस प्रकार काम में लगकर भी होगा, मृत्यु तो पीछे लगी ही है।
0: धत छोकरा, मरना हो तो एक बार मर जा, कायर पुरुष की तरह रात दिन मृत्यु की चिंता करके भी बार बार क्यों मरता है।
1: अच्छा महाराज, मृत्यु की चिंता यदि ना भी की फिर भी इस अनित्य संसार में कर्म करके भी क्या लाभ है।
0: अरे मृत्यु जब अवश्यम भावी है तो कीट पतंगों की तरह मरने के बजाय वीर की तरह मरना अच्छा है। इस अनित्य संसार में दो दिन अधिक जीवित रहकर भी क्या लाभ। जरा जीर्ण होकर थोड़ा क्षीण होते हुए मरने के बजाय दूसरों की तरह वीरों के अल्प कल्याण के लिए लड़कर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नहीं है।
1: जी हाँ, आपको आज मैंने बहुत कष्ट दिया।
0: यथार्थ जिज्ञासु के पास लगातार दो रात बोलते रहने से भी मुझे श्रम का बोध नहीं होता। मैं आहार निद्रा आदि छोड़कर लगातार बोल सकता हूँ, चाहूं तो मैं हिमालय की गुफा में समाधि मग्न होकर बैठा रह सकता हूं। और देख तो रहा है आजकल मां की इच्छा से मुझे खाने की भी कोई चिंता नहीं है, किसी ना किसी प्रकार जुट ही जाता है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करता। इस देश में भी रह रहा हूं, केवल देश की दशा देखकर और परिणाम का चिंतन करके फिर स्थिर नहीं रह सकता। समाधि फमाधि तुच्छ लगती है, तुच्छ ब्रह्म पदम हो जाता है। तुम लोगों के कल्याण की कामना ही मेरे जीवन का व्रत है, जिस दिन वो व्रत पूर्ण हो जाएगा उसी दिन छोड़कर सीधा भाग जाऊंगा।
1: मैं मंत्रमुग्ध की तरह स्वामी जी की इन सब बातों को सुनकर स्तंभित हृदय से चुपचाप उनके मुंह की ओर ताकता हुआ कुछ देर बैठा रहा। इसके पश्चात विदा लेने के उद्देश्य से भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज तो फिर आज आज्ञा दीजिए।
0: जाएगा क्यों रे, मठ में ही रह जाना, गृहस्थों में जाने पर मन फिर मलिन हो जाएगा। यहां देख कैसी सुंदर हवा है, गंगा जी का तट, साधुगण साधन भजन कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और कलकत्ते में जाकर फिर वही व्यर्थ की चिंता में लग जाएगा।
1: मैंने आनंदित होकर बोला, अच्छा महाराज तो आज यही रहूंगा।
0: आज ही क्यों रे, सदैव यही नहीं रह सकता, क्या होगा फिर संसार में जाकर।
1: स्वामी जी की यह बात सुनकर सिर झुका कर रह गया। मन में एक ही साथ अनेक चिंताओं का उदय होने के कारण कोई भी युक्त

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन काजल जोशी का, और उसके बाद प्रस्तुति होगी अजय टिपानिया के गायन की। अंतिम प्रस्तुति दी जाएगी अजय प्रसन्ना के बांसुरी वादन की। तो लीजिए पेश है सबसे पहले सितार वादन काजल जोशी का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया काजल जोशी ने। अब बारी है गायन की अजय टिपानिया द्वारा, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं,

0: गगन में इस तरह की झड़ी लगती है तो फिर उससे प्रीत होती है, इसी बात को साहिब कबीर ने एक भजन में इस तरह से कहा है।
1: ए जी प्रीत

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक एलपीजी का सातवां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में सात अजूबे हैं, धरती पर सात समंदर हैं। शादी के समय सात फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को सात वचन देते हैं, सरगम के सुर भी साथ होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी साथ हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी सात पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या छह क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में छह फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम सात के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, टिफिन। अरे सुन रहे हैं?
2: हाँ?
3: आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटता ही नहीं।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5। यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं। अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती? माय फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है। एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं...
3: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने ना जाऊं ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए, अरे सुनिए तो, टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
5: उफ, साहब नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो है ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
3: अच्छा बनाती हूँ अभी।
5: हाँ हाँ तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता। देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी। तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
5: मालूम है भाई साहब। रो मत रो नको। मालूम है मेरे को सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या कर लूं। सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस। अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना। मैं ही जाती हूँ।
5: रो
3: हो गई ना तेरी चाय। अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ, कर।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया है।
0: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। हाँ। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहन साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर हाँ। आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हाँ। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट मोचक।
0: सोलर कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ है मेरा लंच बॉक्स, है ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अर्थपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तुम उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी लाओ, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रे भाई, चुप रे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये।
2: हाँ,
0: बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का।
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्य कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: आ, आ, आ, सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती हैं।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: है?
2: जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
2: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या?
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा,
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा। आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी जी जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ? और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ। यार मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहां से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह।
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांसू है।
1: हाँ।
0: चल जाए तो सुपर हिट। कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या?
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैये दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं? सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया। ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान। भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर कौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते, उसे पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी।
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो, पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी, अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है, पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: यही है। क्या लिखा है बड़ा?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: वाह, नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की बापरे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए। एक जैसी
3: है? अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े।
3: क्या?
0: संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाते हैं भक्ति पद। आवाजें हैं हेमंत चौहान और साथी कलाकारों की।

मेरी बेटी गीता सौराष्ट्र के बहुत बड़े संत डुगरपुरी महाराज उसकी एक रचना ले रहे हैं।

हमारे सौराष्ट्र के आद्य कवि नरसिंह मेहता, उसकी एक रचना मेरा बेटा मयूर। अमेरे व्यवारिया संतो राम नामना, व्यापारी आवे छे बधा गाम गामना, अमेरे व्यवारिया संतो राम नामना।

गीता एक सौराष्ट्र का लोकगीत है, बाग मा रायणू ना जाड़, वो पेश करी है।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति पद, कलाकार थे हेमंत चौहान और साथी। आज का कार्यक्रम भारत भारती बस यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह का समय है, आप नींद में हैं, कोई सुंदर सा सपना देख रहे हैं और अचानक कोई आए और धड़धड़ा कर आपको उठा दे। अजी उठा क्या दे, साथ में एक गिलास फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी आपके मुंह पर भी डाल दे तो कितना गुस्सा आएगा ना आपको। हाँ, ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ हमारे नाटक के मुख्य पात्र उमेश के साथ भी, क्योंकि उनका बढ़ता वजन और उनकी बढ़ती खुराक के कारण उनकी सेहत उनके लिए मुसीबत बन गई थी। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, इस कश्मकश पर आधारित है हमारा हास्य नाटक सेहत बनी मुसीबत। आइए सुनते हैं।
2: अरे ओ कुंभकर्ण के मामा, पूरी दुनिया जाग गई है और तुम हो कि घर्राटे ही भरे जा रहे हो, जैसे कि सोने के लिए ही दुनिया में आए हो।
3: अच्छा, जैसे सुन ही नहीं रहे हो। मैं भी देखती हूँ आज कैसे नहीं उठते तुम।
4: ये क्या भगवान, तुम हो गए पिछले जन्म के दुश्मन। ये भी कोई तरीका है जगाने का? इतनी ठंड में बर्फ जैसा पानी डाल दिया, हड्डियां तक फ्रीज हो गई हैं।
2: तुमने कोई रास्ता छोड़ा भी था मेरे पास? सुबह से 5 बार आकर उठा चुकी हूँ तुम्हें, आँ करके फिर सो जाते। साउंड प्रूफ रजाई में आवाज भी तो नहीं जाती होगी ठीक से, पर ये वाटर प्रूफ नहीं है जी, भले मानस की तरह। अब उठ जाओ तुम तो। हाँ नहीं।
4: तो किसी की नींद न खुले तो कटार भोंक दोगे उसे? बड़ा ये भी कोई शराफत हुई?
2: शराफत शरीफों के साथ की जाती है। और सुनो ये मिस्टर, मैंने जल डाला है आपके ऊपर, कोई कटार वटार नहीं चलाई है।
4: जल? बर्फ की धार को तुम जल कहती हो? कल को उबलता पानी डाल दो मेरे ऊपर और कहो कि जल डाला है, उफनती नदी में ढकेल दो और कहो जल ही में तो ढकेला है, तेल में तल दो इंसान को और कहो कि ऑयल ही तो है। तुम्हारी परिभाषा चलने लगे ना कोर्टों में तो सबके सब हत्यारे साफ बच निकले। अरे छुरी से सब्जी भी कटती है और बकरी भी और इंसान भी, लेकिन क्या इनमें कोई फर्क नहीं दिखता तुम्हें?
2: ए मिस्टर, अपना ये लॉजिक अपने पास ही रखो, हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से साबित करने पर तुले रहते हो
4: है?
2: और सुनो, जल्दी से फ्रेश होकर जॉगिंग पर निकलो, नहीं तो चाय भी नसीब नहीं होने वाली।
4: क्या?
2: हाँ, 100 आलसी मरे थे ना, तब पैदा हुए थे ये जीव, बस बहस करवा लो इनसे, इसी में फुर्ती दिखती है इनकी, मगर हाथ पाँव हिलाने को मत कहो। अरे कभी ध्यान से अपने आप को शीशे में देखा है? तुम्हारी ये सेहत ही तुम्हारी मुसीबत बनी हुई है।
4: हे भगवान, कैसी हिटलरी बीवी दी है, हाथ में चाबुक लिए घूमती है, ये ना करो वो ना करो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ऐसा लगता है जैसे परेड कमांडर है ये और मैं एक अदना सा सिपाही। अब तो चाय मिलेगी ना श्रीमती जी, सर्द हवाओं से लड़कर आ रहा हूँ। एक कण चाय का तो बनता है अब।
2: इतनी जल्दी?
4: हाय
2: राम, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए तुम्हें गए और चले आए चाय मांगने। तुम क्या कोई घोड़ा वोड़ा हो जो 10 मिनट में 3 मील दौड़ाए? अरे कहा था ना तुमसे कि 3 मील से कम नहीं, और ये पेट देखा है अपना, लगता है 14 महीने का है।
4: अरे श्रीमती जी, इतना तो करेक्टर न लूज कीजिए मेरा, मुझ पर अप्राकृतिक आरोप लगाते हुए कुछ तो लजाइए, किसी ने सुन लिया तो दुनिया में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा।
2: हाँ हाँ, लजाती ही तो हूँ मैं आपके बढ़ते हुए वजन से, ये गालों पर लटकती हुई चर्बी के थैलों से। शरीर देख रहे हो कभी अपना? ऐसा लगता है जैसे बरैया काटने से फूल गया हो, कोई फिटनेस ही नहीं है। चलते हो तो लगता है कोई मांस का पहाड़ मटर गश्ती करने निकला है। पर बाकी सब पति लोग कितने चुस्त दुरुस्त रहते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, और एक आप हैं, केवल ईटिंग करते हैं और हमेशा रेस्टिंग ईटिंग रेस्टिंग। भर पेट खाने के बाद भी अगर चौर गुलाब जामुन खिला दो ना तो सटका लोगे फटाफट। हाथ पांव नहीं हिलाते और बस मुंह ही चलाते रहते।
5: तो क्या चाहती हैं आप? हवा पीऊं, अखाड़े में जाकर कुश्ती लड़ूं और अपने हाथ पांव तोड़वा लूं?
2: अरे नहीं नहीं, हाथ पांव ही टूट जाएंगे तो जॉगिंग कौन करेगा। पर एक बात तो तय है, खाने में आपके कटौती जरूर होगी। अब पानी भी सर से ऊपर गुजर चुका है।
4: एक फुलका तो और दे दो जी, और हाँ थोड़ा सा घी भी डाल देना उस पर, सूखी रोटी अलग से नीचे नहीं उतरती जी।
2: घी? और तुम्हें? अरे इतनी चर्बी है तुम्हारे बदन में, अगर इससे घी निकाला जाए ना तो एक कनस्तर तो जमा हो ही जाएगा कम से कम। ऊपर से घी खाना है तुम्हें? अरे ये कहो मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी नहीं परोस रही हूँ तुम्हें। और अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा तो उस दिन के लिए भी तैयार रहना तुम। और हाँ सुनो, 5 रोटियां हो चुकी है पूरी तुम्हारी। ये जो लिस्ट टंगी है ना दीवार में, इसी के हिसाब से खाना मिलेगा अब तुम्हें। साथ चलते हो तो सब कहते हैं ये देखो बकरी के साथ गेंडा चला जा रहा है।
4: मुझे गेंडा कहा तुमने? मेरी तुलना तुम उस प्राणी से कर रही हो? छी, अरे हाथी भी कहती ना तो बुरा ना लगता मुझे, कम से कम साफ सुथरा तो जानवर है वो, पर गेंडा इतना भद्दा नाम। मेरा खाया पिया शरीर इतना करता है तुम्हें गेंडा?
2: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाथी ही सही, जो तुम्हें पसंद हो वही नाम रख लो, पर खाने के मामले में तो नो कम्प्रोमाइज। तुम्हारी फिगर मुझे अब ठीक करनी ही पड़ेगी, शुरू में चेत गई होती ना तो ये नौबत ही ना आती। पर खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है।
4: कम से कम एक चम्मच चावल तो दे दीजिए श्रीमती जी, पेट का गोडाउन पूरा खाली पड़ा है, भाई भाई चिल्ला रहा है, उसकी करुण पुकार कुछ तो सुनिए अन्नपूर्णा जी।
2: मुझे मस्का लगाने की कोशिश न करो जी, मैं अब बिल्कुल पिघलने वाली नहीं। अन्नपूर्णा कहो या महालक्ष्मी, पर मुझसे वरदान की उम्मीद मत पालो, चावल का एक दाना भी नहीं दे सकती अब मैं तुम्हें। और सुनो, तुम चाहो तो 8-10 गिलास पानी जरूर पी सकते हो, तुम्हारा ये गोडाउन फुल हो जाएगा, भाई भाई नहीं करेगा तब वो, मजे से हिलोरे लेना खुश।
4: हाँ खुश, जल प्रलय करने का इरादा है क्या पेट में? हे प्रभु कहाँ हो तुम? कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, पर ऐसी जोड़ी क्यों बनाई तुमने? इस गाड़ी में एक पहिया बुलडोजर का और दूसरा साइकिल का क्यों लगा दिया? भर पेट खाने को नहीं, नींद भर सोने को नहीं, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा भगवान? कुछ तो पुकार सुनो इस दुखियारे की, अगर दुनिया में हो तुम तो प्रकट हो और मेरी मदद करो भगवान।
6: कहो क्या कष्ट है वत्स?
4: कौन कौन?
6: वही जिसे तुम इतनी देर से पुकार रहे थे। मुझसे तुम्हारा कष्ट नहीं देखा गया पुत्र।
4: भगवान क्या सच मुझा?
6: हाँ बेटा उमेश, जब बच्चे दिल से पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। कहो क्या कष्ट है तुम्हें?
4: अरे भगवान, अरे प्रभु, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे खाने की इच्छा ही ना हो और ना ही जरूरत। ये खाना मेरा दुश्मन बन चुका है प्रभु, बहुत जल्लत उठानी पड़ती है इसके कारण मुझे। ये सेहत मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मुझे इस पापी पेट से छुटकारा दिलाइए प्रभु। न खाऊंगा मैं और ना ही मेरा वजन बढ़ेगा। वो भी खुश और मैं भी खुश।
6: ये प्रकृति के विरुद्ध है वत्स। इस संसार में हर एक प्राणी को भोजन करना ही पड़ता है। ये प्रकृति का विधान है। इसे कोई भी नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं।
4: अरे तो आपके आने से क्या फायदा हुआ भगवान? मेरी समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई है।
6: सोचने दो वत्स, मुझे सोचने दो।
4: हाँ
6: ठीक, एक काम हो सकता है।
4: क्या?
6: इससे तुम्हें भोजन भी मिलता रहेगा और तुम्हारी पत्नी को खबर भी ना होगी।
4: अरे जल्दी बताइए प्रभु, जल्दी बताइए, सस्पेंस ना क्रिएट कीजिए।
6: तुम्हारी ओर से भोजन ग्रहण करने का काम किसी और को दिया जा सकता है।
4: क्या?
6: वो शख्स भोजन ग्रहण करेगा और तृप्ति तुम्हें मिलेगी। समझो मिर्ची के बड़े वो खाएगा और मजा तुम लोगे। उसका स्वाद तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी भारिया सोचेगी तुम तो भूखे ही हो, पर वास्तव में तुम 56 भोग का आनंद ले रहे होगे। ये सिस्टम वैसा ही है जैसे खाना माँ खाती है पर तृप्ति उसके पेट के बच्चे को मिलती है। सिस्टम नया नहीं है हमारे लिए, बस इसका सॉफ्टवेयर नया डाला है। पहले ये इंटरनल होता था, अब एक्सटर्नल हो गया है।
4: वाह प्रभु, ये तो बिना भोजन के रहने से भी ज्यादा धांसू आइडिया है।

0: सकता है, चाहे उसका साइज कुछ भी हो। उसी तरह तुम अपने लिए भी केवल एक ही खाऊ वीर चुन सकते हो, साइज अपनी मर्जी से देख लेना।
1: पर एक समस्या है भगवान, मेरा वजन भी तो बढ़ेगा था।
0: सो तो होगा ही।
1: हाँ।
0: ये तो प्रकृति का नियम है वत्स, अन्न शरीर में जाकर रक्त व मांस तो बनेगा ही, हाँ चर्बी फैट भी।
1: अरे फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भगवान, मेरी बीवी तो दौड़ा दौड़ा कर मेरा दम निकाल देगी। सचमुच वो आदमी से मुझे घोड़ा बना देगी, अश्व योनि में डाल देगी मुझे।
0: एक उपाय है इसके लिए।
1: वो क्या है प्रभु?
0: तुम अपने लिए एक व्यायाम वीर भी रख लो।
1: है?
0: खाओ वीर की तरह।
1: हाँ?
0: व्यायाम वो करेगा।
1: हाँ?
0: फायदा तुम्हें मिलेगा।
1: हाँ?
0: इस तरह तुम्हारे भोजन और फिटनेस दोनों का ही काम दूसरे लोग संभालेंगे, फायदा तुम उठाना।
1: हाँ, विलंब नहीं कीजिए स्वामी, जल्दी से एवमस्तु बोल दीजिए प्रभु।
0: ओके ओके, एवमस्तु एवमस्तु।
1: ये डबल क्लिक क्यों प्रभु? बाकी मामलों में तो आप एक ही बार एवमस्तु का कमांड देते हैं।
0: वत्स वरदान भी तो दो हैं, फिर कमांड भी तो दो बार ही देना पड़ेगा।
2: वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उमेश खुश था, उसने एक बड़े पेट वाला ब्राह्मण अपनी ओर से भोजन ग्रहण करने के लिए और एक हट्टा कट्टा व्यक्ति अपनी ओर से व्यायाम करने के लिए रख लिया। पत्नी को झूठ बोल दिया कि सपने में भगवान आए थे और आदेश देकर गए हैं कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ नियमित रूप से, इससे धन धान्य में और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। व्यायाम पुरुष के बारे में कह दिया कि यह घर का काम करने के लिए नौकर है। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण देवता की सेवा करने का उसे मौका मिलेगा और घर के कामकाज से छुट्टी भी, भला और क्या चाहिए था उसे। और अब सुनिए आगे की कहानी।
3: सुनो तो।
4: क्या है?
3: कुछ नहीं तो कम से कम दूध ही पी लो ना। देख रही हूँ खाना पीना तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है।
1: हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था धर्मपत्नी जी, भगवान ने कहा था कि मुझे 2 माह निर्जला व्रत भी करना है।
3: क्या पागल हो गए हो तुम? 1 दिन के निर्जला व्रत में तो जान निकल जाती है आदमी की, और तुम कहते हो कि 2 महीने?
1: अरे मुझे कुछ नहीं होगा श्रीमती जी, जब भगवान का आशीर्वाद है साथ में तो फिर चिंता क्या। हाँ, ब्राह्मण देव के खाने पीने में जरूर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ लो ब्राह्मण नहीं साक्षात भगवान ही है वो।
3: अरे नहीं होगी जी, नहीं होगी, ब्राह्मण देव तो वैसे भी हमारी संस्कृति में भगवान ही माने जाते हैं।
1: और हाँ, उन्हें सुबह सुबह शुद्ध घी का बेसन का हलवा खिलाना, साथ में मेवे का

0: तो एक सिरा मिल जाए ना किसी भी बात का, बस पकड़ कर हवाई यात्रा पर चल पड़ते हो फुल टैंक के साथ नॉन स्टॉप। बिना कुछ खाए पिए तुम्हें डकार कहाँ से आ रही है जी? और फ्रेश भी रेगुलरली हो रहे हो तुम, ऐसा चंभा न देखा है न कभी सुना।
1: सो भगवान की माया है धर्मपत्नी जी, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अरे वो राय को पहाड़ बना सकता है, वो बर्फ पर घास उगा सकता है। तुमने कबीर का दोहा नहीं सुना है, कमल जो फूले सरह बिन, यानी बिना तालाब के ही कमल खिल रहा है। अरे यहाँ तक कहते हैं कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, यानी वो बिना पैरों के चलता है बिना कान के सुनता है। और फिर
0: बस बस बस बस, मेरे तो कान पक गए। सच ही कह रहे हो तुम, मैं भी देख रही हूँ कि बिनु दिमाग के बकैल लड़े बिनु जुबाना।
1: अरे वाह, अरे वाह श्रीमती जी, विद्वानों की सोबत का असर तो आप पर अब होने लगा है। अच्छा एक बात तो बताइए, आपने रात में सब्जी में इतनी मिर्ची क्यों डाली थी? बुरा हाल हो गया मेरा।
0: तुम तो सरप्राइज पर सरप्राइज दिए चले जा रहे हो जी, और भगवान वाली कहावत मनुष्य योनि में साकार भी कर रहे हो। बिना खाए डकार लेते हो, बिना चखे सब्जी का स्वाद बताते हो। अल्लाहुद्दीन का जिन पाल रखा है क्या तुमने?
1: अरे नहीं, सब भगवान की माया है। तुमने श्लोक नहीं सुना है संस्कृत का, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरम। अरे भाई कि गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो भला क्या नहीं कर सकता।
0: पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मुझे तो तुम भी अब बड़े अजीब लग रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत प्रेत पाल रखा है तुमने।
1: अरे ब्राह्मण देव, जरा तीखी मिर्ची कम खाया करो यार। अरे तुम इंसान हो के तोता, हरी मिर्ची कचर कचर चबाते हो। हालत खराब करके रख दी है मेरी। नहीं यार ये आदत तो छोड़नी होगी तुम्हें।
2: अरे जजमान, अगर इतना ही प्रतिबंध लगाना है तो आप कोई दूसरा ब्राह्मण ढूंढ लीजिए। हाँ बताई देते हैं हम, खाने की कमी नहीं है हमें। खाना तो हम अपनी पसंद का ही खाऊंगा, ना कि आपकी पसंद का। मर्जी हो खिलाइए, नहीं मर्जी हो मत खिलाइए, मैं ये चला।
1: अरे अरे नहीं नहीं नहीं ब्राह्मण देव, आप तो नाराज होने लगे। मैं तो विनती कर रहा हूँ आपसे कि जो कुछ भी आप खाते हैं उसका असर मुझ पर होता है। आखिर माँ भी तो अपने पेट के बच्चे का ख्याल रखती है ना खाने पीने में।
2: अच्छा अब समझ गया मैं, तो जजमान आप मेरे पेट के बच्चे हैं। कल को माई माई करते हुए आ जाना मेरे पास और बोलेंगे तुम जननी मैं तेरा बालक। अरे पलीता लगा देंगे आप तो मुझे, महीने भर खिलाएंगे और जीवन भर खुद खाएंगे। वाह रे वाह।
1: अरे मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं।
2: बाप रे बड़ी खतरनाक मिसाल है आपकी। त्राही माम प्रभु, इस सीधे साधे ब्राह्मण को आपने किस संकट में डाल दिया, बचाइए प्रभु इससे।
1: क्या चल रहा है पहलवान, वर्जिश मर्जिश ठीक से चल रही है कि नहीं?
3: सब ठीक चल रहा है बॉस, बस भाई साहब टाइम पे खाना नहीं देती हैं और मेरी सेहत का ख्याल ही नहीं रखती हैं। जानते हैं आप, सब तर माल उस ब्राह्मण को खिलाती हैं और मेरे सामने यूं ही कुछ रूखा सूखा डाल देती हैं। सोचती हैं घर का नौकर है, आराम से चुपचाप बैठ के खा लेगा।
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है भाई, टेबल के नीचे से मनी सरकाता हूं ना मैं तुझे। हाँ। बाजार जाकर तबियत से खा पी लिया कर, मगर वर्जिश से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सुबह की जॉगिंग सूरज निकलने के पहले ही खत्म हो जानी चाहिए। हाथ की मछली निकलनी चाहिए मेरी,
3: हाँ,
1: समझे?
3: हाँ,
1: पेट की चर्बी छटनी चाहिए मेरी, आखिर मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो चाहिए ना मुझे।
3: अरे जान लगाकर तो मेहनत करता हूँ बॉस मैं। अब तबीयत कभी गरम नरम रहती है तो आराम तो करना ही पड़ेगा। आखिर मशीन भी गरम होने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती
1: बस,
3: है।
1: बस बस कर, बस कर, मुझे लेक्चर नहीं रिजल्ट चाहिए, नहीं तो समझ ले कि नौकरी से बाहर तू।
3: नहीं
4: उमेश के दोनों ही कर्मचारी बेवफा निकले। ब्राह्मण देव दिल खोल करके भोग लगाते और पेट दुखता इस गरीब का। तीखा खाना वे खाते और एसिडिटी होती उमेश को, क्योंकि उनका पेट अब दूसरों के हाथ में था जो उन्हीं की दया पर निर्भर था। दूसरी ओर पहलवान भी अव्वल दर्जे का कामचोर था, केवल बातों की तनख्वाह ले रहा था और ज्यादातर घोड़े बेच करके सोता रहता। उमेश का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये तो वही वाली मिसाल हुई कि काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के। कई बार तो ऐसी हद हो जाती कि उमेश के लिए परेशानी खड़ी हो जाती। सुनिए आगे की कहानी।
1: पेट में जैसे भूचाल आया हुआ है। अरे एक गिलास गरम पानी के साथ आजमाइन दे दो जी।
0: अरे बाप रे बाप, मेरा हार रहने पर तुम्हारा ये हाल है? मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। सुनो, कहीं चोरी छिपे तुम?
1: क्या बात करती है धर्म पत्नी जी। अरे जब कोई बंदिश हो तो चोरी करना समझ में भी आती है, पर मैं तो अपनी मर्जी से व्रत कर रहा हूँ। तुमने कहाँ रोका है मेरा खाना?
0: सब कुछ बड़ा अजीब चल रहा है जी, मेरी तो बुद्धि गुम हो गई है।
1: अरे बुद्धि फिर जगा लेना भाई, अभी मेरे पेट के दर्द से तो मुक्ति दिलाओ मुझे, बम के गोले फूट रहे हैं इसमें।
0: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठहरो बस एक मिनट में लाती हूँ।
1: अरे कोई किसी का नहीं होता दुनिया में, सब मतलब के यार हैं। इतना मनाया साले ब्राह्मण को, मस्का लगाया कि भाई मेरा ख्याल रखना, मगर तरमाल देखकर आपा खो बैठता है। 24 घंटे ठूसने पर तो ये हाल है इसका, ऐसे टूटता है जैसे 7 जन्म का भूखा हो, और भुगतना मुझे पड़ता है।
0: क्या बड़बड़ कर रहे हो जी, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? ये लो गरम पानी और ये पकड़ो अजवाइन, फाक कर पानी पी लो जल्दी से, अभी आराम हो जाएगा ना।
1: गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई है पेट, अभी गल जाएगा सब माल।
0: क्या गल जाएगा?
1: माल।
0: कौन सा माल छुपा रखा है तुमने अपने पेट में? सुनो एक काम करो, डॉक्टर को दिखा दो ना, समझ में तो आए कि रोग क्या है।
1: डॉक्टर? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं।
0: क्या डॉक्टर नहीं की रट लगा रहे हो? तुम तो ऐसे हड़बड़ाए हुए हो जैसे किसी हराम के पेट का मामला हो जो डॉक्टर के पास जाते ही खुल जाएगा।
1: अरे अरे आपको क्या बताएं श्रीमती जी, मुझ पर जो गुजर रही है वो मैं ही जानता हूँ। मेरा पेट अब मेरा पेट न रहा, मेरा शरीर अब मेरा शरीर न रहा, सब गड़बड़ भगवान का किया हुआ है।
0: सुनो सुनो सुनो, एक काम करती हूँ, इन दोनों मुस्टंडों को घर से निकाल बाहर करती हूँ। जब से ये दोनों घर में आए हैं ना, तब से गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। तुम खाते कुछ हो नहीं पर वजन बढ़ता जा रहा है तुम्हारा, जैसे हवा से ही पोषक तत्व खींच रहे हो तुम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, भगवान का मामला है, सरकारी मामला होता तो थोड़ी चीटिंग वीटिंग भी चल जाती, पर तुम तो जानती हो कि
0: तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमारे पल्ले तो नहीं पड़ती तुम्हारी ये सब बातें, मैं तो चली घर के काम के लिए।
5: पहलवान, अपनी ड्यूटी के साथ दगा कर रहे हो तुम, घर से दौड़ने के बहाने निकलते हो और बागीचे में जाकर आंखें सेकने बैठ जाते हो, सारी रिपोर्ट है मुझे।
6: बिल्कुल गलत है बॉस, भरोसा ना हो तो मेरे साथ आप भी निकला करिए सवेरे सवेरे, खुद ही तसल्ली कर लिया करिए ना, मैं जॉगिंग करता हूँ या तो।
5: चुप चुप रह, चुप रह, ऐसा ही दौड़ने वाला होता मैं तो तुझे क्यों ड्यूटी पर रखता, जानता है ना कि बॉस आलसी है, उठ नहीं सकता सुबह सुबह, उंगली तक हिलाने के पहले 100 बार सोचता है ये, इसीलिए ना मुझे फटके दे रहा है तू, पर मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं, पहले भी कहा था मैंने कि रिजल्ट ओरिएंटेड है तेरा अपॉइंटमेंट, पेट देख रहा है मेरा।
6: हाँ,
5: देख
6: देख रहा हूँ।
5: तेरे आने के बाद वजन 90 किलो की सुई छोड़कर 110 टच कर रहा है, अब तो कमजोर कांटे पर खड़ा होने में भी डर लगता है, साली गाड़ी तक का एवरेज डाउन हो गया है अब तो इस बॉडी के कारण।
6: तो मैं क्या कर सकता हूँ बॉस, मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी तो कर रहा हूँ, आपकी बॉडी ही फैट टैंक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
5: ड्यूटी करता है तू, ड्यूटी करता है तू, अरे एक क्लोज सर्किट कैमरा लगा दूं ना तेरे पीछे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब से मैं लगता हूँ तेरे साथ, देखता हूँ कैसे काम चोरी करता है। चलो उठा डंबल, उठा डंबल और भांज तेल लगाकर।
6: हाँ हाँ, मैं भी साबित कर दूंगा मैं ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ, अब देखो मेरा कमाल। ध्यान से देखना बॉस।
5: हाँ, बक बक मत कर, काम कर। और चल चल चल, अरे और
6: देख लेना बॉस।
5: हाँ हाँ ठीक है,
6: ईमानदार बस बॉस, थक गए मैं, अब और नहीं, जान निकल गई मेरी।
5: चालू रे नॉन स्टॉप, बहुत तड़ी मारी है अब तक तूने, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करता होता ना तू तो इतनी जल्दी हवा खराब होती तेरी, 500 के नीचे सांस नहीं लेने दूंगा तुझे।
6: नहीं बॉस, मैं नहीं कर रहा आपकी नौकरी, मैं नहीं कर रहा आपकी नौकरी वोकरी, पेट पालने के लिए आया हूँ यहाँ पर, जान देने के लिए नहीं आया। मेरा हिसाब कर दीजिए आप।
5: हिसाब? कैसा हिसाब? वजन बढ़ाने का हिसाब, चर्बी चढ़ाने का हिसाब, अरे जवान इंसान को बुढ़ा बनाने का हिसाब, अरे अपना काम तो दिखा पहले तू।
6: अच्छा, ये ठीक नहीं कर रहे हैं बॉस आप, गरीब का पैसा मारना ठीक बात नहीं।
5: अच्छा,
6: अरे इतना भागा होता ना मैं तो आर्मी में भर्ती हो गया होता, और ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भाई साहब को सच बताऊंगा, फिर वो ही करेंगे आपका हिसाब।
5: अरे, अरे अरे भाई साहब की धमकी क्यों देता है भाई? देख जब देख मेरी कमजोर नस पकड़ लेता है तू, सारी पोल पा गया है तू मेरी। खर बोल, कितने पैसे निकलते हैं तेरे, बोल।
6: भाई ना लाइन पे
5: बोल,
6: पैसा खाने चले थे मेरा।
5: हाँ
6: आज का लेकर ये हो गया 4600, और ये अभी जो डंबल उठाए और ये भांजी और ये तेल लगाकर,
5: ठीक ठीक ठीक,
6: ये सब
5: ठीक ठीक ठीक। हाँ ये पकड़ 1,000 के 5 नोट, बचे पैसे तेरे मुंह बंद रखने की फीस है, और अब जान छोड़ मेरी।
6: अरे अभी छोड़े देते हैं बॉस, ये लीजिए। बाय बॉस, थैंक यू।
1: अरे भगवान, मैं थक गया आपके वरदान का बोझ उठाते उठाते। अरे ऐसा तो शाप भी ना मिले किसी को। प्रकट हो प्रभु और इस संकट से उबारो, मुझे उबारो भगवान। भगवान
4: वत्स,

ईश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय तरस रहा है, उसका जन्म धन्य है, उसकी माता धन्य है, कारण उसका सर्वस्व तो इस ईश्वर में समाया हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वो गदर की लहर थी जिसने अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों के मन में देश पर मर मिटने की भावना पैदा की। क्रांतिकारी जवन सिंह एक शेर दिल नौजवान थे जो आजादी के युद्ध में कूद पड़े। वे भी अपनी मातृभूमि को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अपना सिर देकर कीमत अदा करना चाहते थे और वे धीरे धीरे गदर आंदोलन के एक दृढ़ स्तंभ बन गए। गदर क्रांतिकारियों के लिए देशद्रोही कृपाल सिंह राह का रोड़ा बन गया। उसकी गद्दारी की वजह से देशभक्तों की गिरफ्तारियां होने लगी और फांसी के फंदे उनकी गर्दनों में डाले जाने लगे। कई क्रांतिकारी पुलिस के हाथ आए पर जवन सिंह बहुत समय तक पुलिस को छकाते रहे। आखिरकार मई 1917 में वे पुलिस के हाथों पड़े और उन पर अभियोग चलाने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया।

लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो अभियोग अन्य क्रांतिकारियों पर लगाए गए थे वे जवंद सिंह पर भी लगाए गए कि किस तरह उन्होंने अमेरिका की गदर पार्टी में सक्रिय भाग लिया और किस तरह वे विद्रोह की आग उगलते हुए भारत जा पहुंचे। गदर पार्टी के लोगों ने जो डाके डाले थे उनमें भी जवंद सिंह की उपस्थिति सिद्ध की गई और इसके अलावा उन पर सबसे ज्यादा हत्याएं करने का आरोप लगाया गया।

आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया में जवंत सिंह ने कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि अपना परिणाम वे जानते थे और वे उस पुरस्कार को पाने के लिए लालायित थे जो सरकार उन्हें देने वाली थी। पुलिस द्वारा लगाए गए 7 अभियोगों में से उनके विरुद्ध 5 अभियोग सिद्ध हुए और अदालत ने 30 मई 1917 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी। इस निर्णय को सुनकर जवंत सिंह इस तरह खुश हुए जैसे उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। 1917 को लाहौर सेंट्रल जेल में वीर जवंत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आज इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं दो कलाकारों को। जी हाँ, ये कलाकार हैं शास्त्रीय गायिका आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार।
1: तुम एक गाएंगे फिर वही जो वर्षा में कजरी गाएंगे, झूला गाएंगे, सावन के गीत, इस प्रकार से हम लोग
2: जब से संगीत रिसर्च एकेडमी में 2003 से हम लोग साथ में हैं, तब से हमारी बहुत गहरी दोस्ती है और इसी वजह से ये जुगलबंदी हो पाती है। हम लोग सोलो तो अपना अपना कर ही रहे हैं, पर इस ये कार्यक्रम करने के पीछे विचार है कि जो हमारी दोस्ती है, हमारा प्रेम अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, वो इस कार्यक्रम में जाहिर हो सके। और जुगलबंदी में यही है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के म्यूज़िक को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ही ये हो पाता है। इसमें कोई हमारी कॉम्पिटिशन की भावना नहीं होती, एक दूसरे से एक दूसरे का म्यूज़िक हम लोग एन्जॉय करते हैं।

जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके करियर की शुरुआत हुई और क्या कुछ करना चाहिए उन लोगों को जो गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम दो भागों में है। पहले आप सुनेंगे आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार से हमारी बातचीत, और फिर प्रस्तुति होगी इनके गायन जुगलबंदी की।

0: ये प्रस्तुति इन्होंने दी भारत भवन में आयोजित गायन पर्व में। तो आइए अब आपसे मुखातिब हैं आस्था गोस्वामी।
1: सबसे पहले कुछ क्लासिकल पे हम बात करेंगे, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपके गुरु कौन रहे।
2: सबसे पहले मैंने पंडित सीतासरण सिंह चौहान जी से तालीम प्राप्त की, और उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए मैं डॉक्टर एस एस अवस्थी जी के पास गई, और फिर संगीत रिसर्च अकादमी में मैंने पद्म भूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी और पंडित अरुण भादुरी जी उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये किन दिनों की बात है और क्या संगीत की दुनिया में ये महज इत्तेफाक है क्या आप आ गई, या बचपन ही से आपको कुछ ऐसा लगता था कि संगीत की दुनिया में आपको जाना चाहिए?
2: देखिए, मेरे जो पिताजी हैं वो कलाकार हैं, वो ग्राफिक प्रिंट मेकर हैं, तो संगीत का प्रेम तो हमारे घर में सभी को था। मेरी माँ ने भी सितार सीखा, गायन सीखा, और मेरी पहली गुरु मेरी मौसी रही हैं, तो संगीत तो हमारे घर में था और सुनने का बहुत शौक था माता पिता को, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत। तो बचपन की बात बताती हूँ आपको कि हमारे घर में फिल्म संगीत बहुत ज़्यादा नहीं बजता था, और हमारे बचपन में चित्रहार आया करता था टीवी पे, वो भी देखने की हमको इजाज़त नहीं थी। तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर मैंने कोई संगीत सुना होगा तो वो शास्त्रीय संगीत ही था, तो वो भी कारण हो सकता है कि फिल्म के गीत थोड़ा कम जानती हूँ मैं। तो शुरुआत वहाँ से हुई, और मैं छोटी थी, माता पिता ने, मैं लखनऊ की बेटी हूँ जी, तो मुझे उन्होंने बचपन में ही सुना, मैं 4 वर्ष की रही होंगी, और उन्होंने देखा कि इसके गले में सुर है, तो मेरी मौसी क्योंकि गाती थी तो उनसे ही मैंने घर में ही सीखना शुरू किया। और फिर 10 वर्ष की आयु में मैं पंडित सीतासरण सिंह जी के पास चली गई थी, वहाँ पे मैंने थोड़ा कायदे से जिसको तालीम, मेरी विधिवत तालीम जी, मेरा सफ़र वहीं से शुरू हुआ।
1: आपके पास समय की कमी है, एक दो सवाल छोटे से पूछ रहा हूँ। जब आपने शुरुआत की और आज इतने साल हो गए, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, और वो होता ना एक कि लोग साधना जैसे कहते हैं कि लोग जल्दी से चाहते हैं कि तरक्की मिल जाए, नाम हो जाए, उस पर आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत में आपको घंटों के रियाज करना ही पड़ेगा, बिना रियाज करे आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आज के बच्चों की सोच में और हमारे बचपन में हम लोगों की जो सोच है उसमें ये अंतर है कि जब हम साधना करते थे तो हम ऐसा नहीं सोचते थे कि हमको इससे रिटर्न्स मिलेंगे, हम बस साधना करते रहते थे। आज के बच्चों का जो माइंडसेट है वो उनको तुरंत रिटर्न्स चाहिए, इसलिए वो ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट स्टार्स बनना चाहते हैं, इसलिए वो शायद वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आप जो नए लोग आना चाहते हैं म्यूज़िक की फील्ड में, मैं तो ये कहूँगा जो लोग किसी भी प्रोफेशन में, उनको आर्ट से जुड़ना ही चाहिए, ख़ास करके जो संगीत में जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप क्या कहेंगी, किन बातों का वो ख्याल रखें?
2: मैं उनसे यही कहूँगी कि रियाज तो करना ही है, और शास्त्रीय संगीत में भी ऐसा ना सोचें कि सुनने वाले लोग कम हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।

0: और ये हैं रुचिरा केदार।
1: कुछ आपके शुरुआती दिनों के बारे में।
2: जी, मैं रुचिरा केदार, मैं भोपाल की ही बेटी हूँ, मध्य प्रदेश अच्छा। की बेटी हूँ, ग्वालियर का जन्म है मेरा भोपाल में, सब पैदाइश आगे अपब्रिंगिंग हुई
1: जी।
2: और पहले मेरे पिताजी श्री दिलीप काले जी से सीखा मैंने, उसके बाद पुणे में जयपुर की ज्येष्ठ गायिका हैं डॉक्टर अलका देव मारुलकर, उनसे सीखा। उसके बाद मैं कलकत्ता में संगीत रिसर्च एकेडमी में मुझे फेलोशिप मिली और वहाँ पे पंडित उल्लास कशालकर जी और विदुषी गिरजा देवी जी से सीखने का मौका मिला।
1: अच्छा, तो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई। जो भी लोग स्टूडेंट होते हैं संगीत के, तो हम जो अक्सर सुनते हैं जैसे पोइट्री है या शायर हैं, या घर वाले ये कह देते हैं कि ठीक है एक पार्ट टाइम कर लीजिए, रोज़ी रोटी के लिए क्या करेंगे, तो क्या आपके सामने भी ऐसा सवाल था?
2: नहीं, मेरे बारे में कुछ उल्टी कथा थी ऐसा कह सकते हैं। मेरे पिताजी का बहुत, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं आगे करूं गाने में। हमारे घर में थोड़ा संगीत था मेरे बचपन से, तो उनकी बहुत इच्छा थी। उन्होंने ही एक्चुअली मुझ में जो भी पोटेंशियल देखा होगा, उन्होंने ही पुश किया मुझे इसमें आगे ये यात्रा करने के लिए। तो ऐसा सवाल कभी आया नहीं कि म्यूज़िक करें या ना करें या पार्ट टाइम करें या क्या करें। सीखते समय और मतलब यही था कि म्यूज़िक करना है, आगे पता नहीं जो होगा सो होगा भगवान की कृपा से, तो ये नहीं कभी मन में आया।
1: मैम, एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि जो 60s के और 50s के दशक के गाने हैं फिल्मी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अक्सर आपने जो अभी बात कही, क्योंकि क्लासिकल तो सभी ने सीखा है, चाहे लता जी हों, रफ़ी साहब हों, इसलिए शायद उनको इतनी शोहरत भी मिली। तो वही आपसे सवाल एक और जोड़ देता हूँ कि जो नए बच्चे आना चाहते हैं वो किन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि जैसे जो थिएटर होता है रंगकर्म, उसमें भी यही होता है कि लोग कुछ दिन प्लेस करते हैं और फिर मुंबई का रुख कर लेते हैं जैसे, तो इसमें भी क्या कुछ ऐसा एक पूरा प्रोसीजर है?
2: देखिए, वैसे मैं ये मानती हूँ कि शास्त्रीय संगीत का भले ही आपको आगे फिल्म म्यूज़िक में करना हो, एक बहुत जानकारी, एक विद्या ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आजकल का आप जो कह रहे हैं, आजकल तो AI के ज़माने में ये भी नहीं पता कि किसी व्यक्ति ने वो गाना कंपोज किया है कि नहीं, तो इसलिए। बट क्या है कि जब तक उसमें ह्यूमन इमोशंस नहीं आएंगे, ह्यूमन इंटेंसिटी नहीं आएगी, कोई भी गाना या कोई भी मेलोडी अमर नहीं हो सकती। जैसे हम लोग देखते हैं पहले के संगीतकारों के गाने आज तक हम लोग याद करते हैं, तो इसलिए उनको बहुत हमारे संगीत का बहुत ज्ञान था, बहुत उसकी पूजा करते थे, अर्चना करते थे, इस वजह से वो इंटेंसिटी उनके संगीत में भी दिखती थी। तो ये जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ म्यूज़िक है, उसको छोड़ के आप हमारे कल्चर में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा मुझे लगता है।
1: नए बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किन बातों का ख्याल रखें?
2: नए बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारे बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत का क्या होगा, यही हमारे गुरुओं ने भी सुना कि शास्त्रीय संगीत का क्या होगा, फिर भी हम लोग यहाँ तक आए ही ना, आगे पहुँचे ही ना। तो आज हम लोग, मैं आस्था दोनों, हम लोग पूरे भारत में, भारत के बाहर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये है कि ये लंबी यात्रा है और बहुत कठिन यात्रा है, इससे बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी, पर अगर आप लोग लगे रहेंगे, जैसे एक मैंने फ्रेज सुनी थी कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी टाइम, तो उसी में अगर आप लगे रहेंगे तो भले ही आपको गॉड गिवन टैलेंट कम भी हो, पर फिर भी सक्सेस मिलेगी। तो यही मेरा कहना है, नॉट जस्ट म्यूज़िक में, किसी भी फील्ड में।

0: जोड़ी में आप लोग परफॉर्मेंस देते हैं, उस पर से थोड़ा आप दोनों बताइए।
1: तो मेघ गाएंगे, फिर वही जो वर्षा में कजरी गाएंगे, झूला गाएंगे, सावन के गीत, इस प्रकार से हम लोग।
0: थोड़ा सा भी बता दीजिए
2: जी। हम लोग ने एक्चुअली, आपने कहा कि जैसे आप लोग जोड़ी,
0: एक चीज और जोड़ दीजिए जी, कब से आपका साथ हुआ?
2: हम लोग जब से संगीत रिसर्च एकेडमी में 2003 से हम लोग साथ में हैं, तब से हमारी बहुत गहरी दोस्ती है और इसी वजह से ये जुगलबंदी हो पाती है। हम लोग सोलो सोलो तो अपना अपना कर ही रहे हैं, पर इस ये कार्यक्रम करने के पीछे विचार है कि जो हमारी दोस्ती है, हमारा प्रेम अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, वो इस कार्यक्रम में जाहिर हो सके। और जुगलबंदी में यही है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के म्यूज़िक को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ही ये हो पाता है। इसमें कोई हमारी कॉम्पिटिशन की भावना नहीं होती एक दूसरे से, एक दूसरे का म्यूज़िक हम लोग एन्जॉय करते हैं।

ये था आज का कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें पहले आपसे मुखातिब थीं सुप्रसिद्ध गायिका रुचिरा केदार और आस्था गोस्वामी, और कार्यक्रम के दूसरे चरण में आपने सुनी गायन जुगलबंदी। अगले कार्यक्रम तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कविता पाठ, कहानी पाठ, व्याख्यान और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे रचना पाठ। सबसे पहले सुनिए कविता पाठ अजय विश्वकर्मा का। ये काव्य पाठ उन्होंने किया निराला सृजन पीठ के कार्यक्रम वर्दे में।

मन के हैं उद्गार हमारे गीतों में। मैं अपना उद्गार व्यक्त करता हूं। सीमा पर आपात स्थिति में जब एक सैनिक की छुट्टियां निरस्त हो जाती हैं, तो नवविवाहिता उसकी पत्नी नवविवाह के क्या भाव रहे होंगे, सुनिएगा। कुछ दिनों तो रहो संग मेरे सजन,

तो दो, ये उसके मन के भाव थे जो मन में ही रह जाते हैं, वो उसे व्यक्त नहीं करती। और देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपने आप को संभालती है, और फिर जो वो कहती है वह केवल भारतीय नारी ही कह सकती है। सुनिए गया,

की बात करता हूं और तीन बातों से समझ पाया हूं। मैं तुम्हारे लिए गीत रचता रहा,

किशोरी का है। तो सार क्या है? तो मीत मन का मिले, मीत मन का मिले ये जरूरी नहीं।

के मर्म को। सुनिएगा कि मैं तुम्हारे लिए, हम शाश्वत प्रेम की बात करेंगे जो हम सभी का लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य है जन्म जन्मांतर से हम जिसके लिए। मैं तुम्हारे लिए जन्म लेता रहा,

बहुत धन्यवाद। समय की कीमत समझो प्यारे, समय बहुत अनमोल। समय की कीमत समझो प्यारे, समय बहुत अनमोल। अरे जो भी कहना खुल कर कहना, दिल की बातें खोल। अरे तुमको क्या लगता है हम सब यूं ही कहते हैं, तुमको क्या लगता है हम सब यूं ही कहते हैं। इस सोने में जिसने खोया दिन रात तरसते हैं, और तुम हो मेरे दिल के टुकड़े एहसास दिलाता हूँ। कभी वाणी से कुछ भी निकला वापस लेता हूँ। तो अब से मेरे प्रियवर साथी कमर कसो जय बोल। अब से मेरे प्रियवर साथी कमर कसो जय बोल। समय की कीमत समझो प्यारे, समय बहुत अनमोल।

और दूसरा बंद, जो कुछ खोया दृष्टि उसी पर प्राप्त हुआ, क्या भान नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। जो कुछ

मन रखने पर सब कुछ खोगे, सदा सशंकित मन रखने पर सब कुछ खोगे, आंसू कब तक व्यर्थ करोगे, कब तक

कितने का मन है। बहुत आभार, बहुत आभार। उज्ज्वल भाग्य रेख संभावित खुद ही धोगे, आंसू कब तक व्यर्थ करोगे, कब तक रोगे। और बहुत शुक्रिया। और एक स्त्री की संवेदनशीलता, समर्पण और समाज का उसके लिए प्रतिदान किस प्रकार का होता है, एक गीत लिखने का प्रयास किया है। मैं

हसीन ठिठोली तुम्हें प्रीतिकर, मैं पीड़ा की अभ्यासिनी हूँ। हसी ठिठोली तुम्हें प्रीतिकर, मैं पीड़ा की अभ्यासिनी हूँ। तुम आतुर नायक बनने को मैं स्वभावगत वनवासिनी हूँ। सभी ताप में सह लूंगी पर, सभी ताप में सह लूंगी पर अपने नैनो जल मत भरना। खुशियां सारी ले लो लेकिन मेरे सम्मुख रुदन न करना। खुशियां सारी ले लो लेकिन मेरे सम्मुख रुदन न करना। हो वसंत यदि सीमित तो फिर, हो वसंत यदि सीमित तो फिर मुझको पतझड़ ही दे देना। पुष्प सदा ही तुमको रुचते, कंटक में तुम नहीं उलझना। पीत पर्ण फिर निधि मेरी है, पीत पर्ण फिर निधि मेरी है, इन पर कोई गीत न रचना। खुशियां सारी ले लो लेकिन मेरे सम्मुख रुदन न करना। नहीं माननी रुक्मिणी जैसी, नहीं माननी रुक्मिणी जैसी, ना राधा सी सखी तुम्हारी, ना उद्धव संदेशा पाया, ना बंसी धुन सुनी तुम्हारी। मैं मीरा सी सदा प्रतीक्षित, मैं मीरा सी सदा प्रतीक्षित, विष पात्र में विष ही रखना। मेरे सम्मुख रुदन न करना, मेरे सम्मुख रुदन न करना। और अंतिम पंक्तियां इसकी, मैं अपशकुनी सदा रही हूँ, चलो मान लेती हूँ ऐसा। मैं अपशकुनी सदा रही हूँ, चलो मान लेती हूँ ऐसा। मेरे बिन सब कुछ शुभ होगा, अर्थ निकलता है कुछ ऐसा। दिशा बदलती हूँ मैं अपनी, दिशा बदलती हूँ मैं अपनी, मुझ पर अपनी दृष्टि न रखना। दिशा बदलती हूँ मैं अपनी, मुझ पर अपनी दृष्टि न रखना। मेरे सम्मुख रुदन न करना, मेरे सम्मुख रुदन न करना। और एक स्वाभिमान का, आत्मनिर्माण का गीत है।

दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन

मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें शायरों ने अपने कलाम

0: मेरी मुराद जो है वो मोहतरमा पूजा भाटिया से है। मोहतरमा पूजा भाटिया,
1: कि शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, वो जा चुका है कभी का यहीं खड़ी हूँ मैं। शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, वो जा चुका है कभी का यहीं खड़ी हूँ मैं, और मैं दश्त दश्त भटकती हूँ तिश्नगी लेकर, मैं दश्त दश्त भटकती हूँ तिश्नगी लेकर, कभी किसी को बताया नहीं नदी हूँ मैं। कभी किसी को बताया नहीं नदी हूँ मैं, और इसे एक मोड़ पर अक्सर सभी बिछड़ते हैं, इसे एक मोड़ पर अक्सर सभी बिछड़ते हैं, सुना है जब से इसी मोड़ पर रुकी हूँ मैं, सुना है जब से इसी मोड़ पर रुकी हूँ मैं, और यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, जब उसको मैंने कहा था कि एक परी हूँ मैं,
0: जब वाह,
1: यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, जब उसको मैंने कहा था कि एक परी हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। कुछ अशार देखें कि मुझ तक ही लेके आएंगे तुझको तमाम रास्ते, मुझ तक ही लेके आएंगे, फिर तू किसी सफर पे हो, फिर तू किसी भी सिम

0: जरूरी था नहीं मरना हमारा। और ये शेर देखें कि हम अपने दिल की दुनिया में हैं, लेकिन हम अपने दिल की दुनिया में हैं, लेकिन यहां भी जी नहीं लगता हमारा। हम अपने बहुत शुक्रिया, हम अपने बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
0: हम अपने
1: अच्छा
0: दिल की दुनिया में
1: हैं,
0: लेकिन हम अपने खामोशी भी दाद होती है और मैं आपकी दाद को बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
1: क्या कहने हैं?
0: हम अपने दिल की दुनिया में हैं, लेकिन यहाँ भी जी नहीं लगता हमारा। और एक ताजा गजल के चंद अशार, लौट कर मत आ मगर मुड़कर तो देख, लौट कर मत आ मगर मुड़कर तो देख, अब तलक बैठे हैं तेरी आस में, अब तलक बैठे हैं तेरी आस में, और शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, है इश्क एक हादसा गुजरा हुआ मुझे, शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, है इश्क एक हादसा गुजरा हुआ मुझे, और मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, कितने ही जावियों से फिर सोचा गया मुझे, कितने ही बहुत शुक्रिया, कितने ही जावियों से फिर मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, कितने ही जावियों से फिर सोचा गया मुझे, और तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, मिलने का अपने आप से मौका मिला मुझे, तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, मिलने का अपने आप से मौका मिला मुझे, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, वो एक गुमनाम तारा जा रहा है, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, वो एक गुमनाम तारा जा रहा है। और ये शेर आखिर कि गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, हमारा हक तुम्हारा जा रहा है, हमारा हक, गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, हमारा हक तुम्हारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
2: जनाबे डॉक्टर नदीम शाह।
3: ख्वातीन हजरात, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताज़ा मतला है साहब, ये भी सुन लीजिए कि जैसे झील में उतरे जमी से होते हुए,
2: कि जैसे झील से उतरे,
3: कि जैसे झील में उतरे जमी से होते हुए, मैं उसकी आंख तक आया जबी से होते हुए, मैं उसकी आंख तक आया
2: जबी से होते हुए,
3: जबी से होते हुए, ये माँ के पांव नहीं है, ये माँ के पांव नहीं हैं, ये सीढ़ियां हैं नदीम। अगला मिसरा देखिएगा साहब, ये माँ के पांव नहीं हैं,
2: ये सीढ़ियां हैं नदीम,
3: ये सीढ़ियां हैं नदीम, मैं आसमां पे गया था यहीं से होते हुए।
2: वाह वाह वाह वाह।
3: ये माँ के पांव नहीं हैं, ये सीढ़ियां हैं नदीम,
2: मैं आसमां पे गया था,
3: मैं आसमां पे गया था
2: यहीं से होते आए हैं,
3: यहीं से होते हुए।
2: बहुत अच्छा शेर।
3: एक मतलब सुन लीजिए, मतलब ये है कि हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, जो ना सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे।
2: वाह।
3: जो ना सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे, हम समंदर हैं हमको ना रास्ते बता, हम समंदर हैं हमको ना रास्ते बता, हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे, हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। एक शेर आपने सुना होगा, एक पुराना शेर है कि जो भी आए हैं वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। अब एक शेर मैंने कहने की कोशिश की है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे, दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे।
2: वाह वाह।
3: तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे, चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, जंगलों में मुसाफिर भटक जाएंगे।
2: वाह वाह,
3: चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, जंगलों में मुसाफिर भटक जाएंगे। और एक मतला सुनाता हूँ, मतला सुन लीजिए ये भी साहब, के मतला ये है, ये वक्त क्यों तेरी तस्वीर पर गंवाते हैं, ये वक्त क्यों
2: तेरी तस्वीर
3: पर गंवाते हैं, जब इनसे बनती नहीं है तो क्यों बनाते हैं।
2: वाह वाह वाह,
3: जब इनसे बनती नहीं है
2: तो क्यों बनाते
3: तो क्यों बनाते हैं। और चंद शेर सुनिए, मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे सुनाऊं कि आपके हाथ खुले और जरा आप थोड़ा सा मुशायरे के माहौल में आए, इतना तो जोर पड़ा भी नहीं मुशायरे में आज, इतना आप थक गए हैं।
2: क्या क्या,
3: ये भोपाल है और भोपाल में शायरी कैसे सुनी जाती है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक मतला और सुन लीजिए, मतला ये है कि साहब देखिए, मतला कि जरा सा सब्र था जो कर गए हम, जरा सा सब्र था
2: जो कर गए हम
3: उसे लगने लगा था मर गए हम।
2: वाह भाई वाह वाह वाह,
3: उसे लगने लगा था मर गए हम। अब ये शेर सुनिए साहब, बतौर खास ये शेर सुनाता हूँ, उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए
2: हम। वाह वाह भाई, जोरदार तालियों से नवाजे, क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वाह,
3: बहुत शुक्रिया, बहुत इनाय। ऐसे ही बस ऐसे ही सुनिए, तो हाजिर करता हूँ, सुनिए, उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। और अब शेर फिर से सुनाता हूँ, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, उसको भुलाकर
2: मुझको ये मालूम हुआ है
3: आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
3: वाह। बहुत शुक्रिया जी, हाजिर करता हूँ, सुनिए, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है।
2: क्या कहने।
3: और सुनिए, एक मतला ये है कि हटाओ हाथ आंखों से ये तुम हो जानता हूं मैं, हटाओ हाथ आंखों से
2: ये तुम हो जानता हूं मैं,
3: तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ।
2: वाह वाह,
3: तुम्हें खुशबू नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं, भटकता फिर रहा था गम लिपट कर मुझसे ये बोला, भटकता फिर रहा था गम लिपट कर मुझसे ये बोला, कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं, कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं। मतला सुनिए, मतला ये है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। आइए मैं एक गजल के चंद शेर आपको तरन्नुम से सुना दूं, सिर्फ उससे पहले एक मतला एक शेर और सुन लीजिए। मतला, सब कुछ आसान हो सकता है ऐसा लगता है, सब कुछ आसान हो सकता है
2: ऐसा लगता है
3: कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है।
2: वाह वाह वाह,
3: कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है।
2: वाह वाह।
3: जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है।
2: वाह वाह।
3: वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। एक मतलब आपको सुनाना चाह रहा था, वो सुन लीजिए। उसमें एक शेर अच्छा हो गया तो इसलिए सुना रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा जरा बारीक है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब ये है कि तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी नहीं समझे। सुनो भाई
2: जी।
3: तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी नहीं समझे। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी
2: नहीं समझे।
3: नहीं समझे। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी नहीं समझे। अब ये शेर सुनाना है। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी नहीं समझे। उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत। भाई शेर
2: सुनो। उसे कहना पड़ा हमसे।
3: उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत। हम उसको देखकर उसकी परेशानी नहीं समझे।
2: क्या कहने।
3: उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत। हम उसको देखकर उसकी परेशानी नहीं समझे। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है।
2: क्या कहने।
3: किस्मत भी होती है लेकिन
2: मेहनत करनी पड़ती है।
3: और साहब ये देखिए, गजल का ये शेर सुनिए और महसूस कीजिएगा उन लोगों के लिए जो अपने वतन से दूर रह रहे हैं रोजी रोटी के लिए या कुछ और मजबूरी है, उनके लिए एक शेर कहा है। शेर सुनिए साहब। घर की कीमत क्या होती है, घर वाले क्या होते हैं।
2: वाह।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ मैं हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां 15 जुलाई को रंग मध्यम नाट्य संस्था की ओर से आजाद बुलंदी भगत सिंह नाटक का मंचन किया गया।

इस नाटक का निर्देशन किया अनुराग मिश्रा ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।

0: अगले बुलबुले हैं और न बरमा की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत दिले बिस्मिल्ला। यारो भगत सुनना, बिस्मिल जी ने क्या तो गजल लिखी है यार, मुझे तुमसे मिलना है।
1: कानपुर चलेंगे ना, फिक्र मत कर। सन 1915 में भाई परमानंद की फांसी की सजा सुनकर राम प्रसाद बिस्मिल ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने की योजना बना ली थी। तब उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम पे एक पार्टी का गठन भी किया था।
0: हम दोनों का मकसद था भारत की आजादी,
1: हम दोनों की मंजिल और राह एक ही थी।
0: लेकिन आखिर देश को इन अंग्रेजों से आजादी कैसे दिलाई जाए?
1: हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रास्ता निकलता है।
0: फिर तो इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
1: कॉलेज में सुखदेव से मुलाकात पक्की दोस्ती में बदली, फिर तो मानो हम दोनों एक दूसरे के पूरक ही बन गए। घंटों घंटों कॉलेज की कैंटीनों में साथ बैठा करते, तमाम विषयों पर चर्चा किया करते, और चर्चा का सबसे खास विषय हुआ करता कि भारत को आजादी कैसे मिले। निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: मेरा नाम जतिन दास है। वो 1930 का रविवार का दिन था। भगत सिंह की अर्जी पर वो लोग लाहौर सेंट्रल जेल से भगत सिंह को हमसे मिलाने के लिए हॉस्टल जेल लाए गए थे। वो इस तर्क पर सरकार से सुविधा हासिल करने में कामयाब हो गए, उन्होंने अपने अभियुक्तों से बचाव के तरीकों पर कुछ बातचीत कर ली। तो उस दिन हम किसी राजनीतिक विषय पर बात कर रहे थे कि बातों का रुख फैसले की तरफ हो गया, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार। हंसी मजाक में हम एक दूसरे के खिलाफ फैसले सुनाने लगे। सिद्धराज गुरु और भगत सिंह को इससे बरी रखा गया, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी जानते थे कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। यानी कि नाटक यहाँ भी जारी था।
1: जज साहब, क्या बता सकते हैं सुखदेव, राजगुरु और हमारा फैसला, हमें बरी किया जा रहा है या फांसी के फंदे से लटकाया जा रहा है? क्या आप लोगों को असलियत को स्वीकार करते डर लगता है? जज साहब, हमें फांसी के फंदे से तब तक लटकाया जाए जब तक कि हम मर नहीं जाते, ये है असलियत। मैं इसे जानता हूं और तुम भी जानते हो, सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ते?
2: भगत सिंह अपने रंग में आ चुके थे। वो बहुत धीमे स्वर में बोल रहे थे, चिल्लाकर बोलना उनकी आदत नहीं थी। एक समय के लिए तो दूसरे को लगता कि उन्हें फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, यही उनका तरीका था और यही उनकी शक्ति भी।
1: यही देश का सर्वोच्च पुरस्कार, और मुझे गर्व है कि मैं यह पुरस्कार पाने जा रहा हूं। उन्हें लगता है कि वो मेरे मरे हुए शरीर को नष्ट करके इस देश को गुलाम बनाकर और ज्यादा दिन तक यहां रह पाएंगे, लेकिन यहां वो लोग गलत हैं। वो मुझे तो मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार पाएंगे। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझते खाक है पानी, रहे ना रहे। वो मुझे तो कुचल सकते हैं लेकिन मेरे भावनाओं को नहीं कुचल पाएंगे। हम उनके सर पर तब तक मंडराते रहेंगे जब तक कि वो ये देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर नहीं हो जाते।
2: भगत सिंह पूरे आवेश में बोलते जा रहे थे। एक समय के लिए हम भूल गए थे जो आदमी हमारे सामने बैठा है वो हमारे ही दल के सदस्य। वो बोलते जा रहे थे, ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू, दूसरा पहलू भी उतना ही उज्जवल। ब्रिटिश हुकूमत के लिए मरा हुआ भगत सिंह जीवित भगत सिंह से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे फांसी हो जाने के बाद मेरे क्रांतिकारी विचारों की महक देश के आकाश में व्याप्त हो जाएगी। वो नौजवानों को उत्साहित करेगी और वो अपनी और अपनी राष्ट्र की आजादी के लिए पागल होंगे। नौजवानों का यही पागलपन ब्रिटिश हुकूमत को उनके विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।

0: मैं सबसे पीछे था। विदाई लेते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर उसने कहा, भावुक बनने का समय अभी नहीं आया है, तो अभी कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊं। लेकिन तुम लोगों को अभी लंबा सफर पार करना पड़ेगा, और मुझे विश्वास उत्तरदायित्व के इस बोझ के बावजूद तुम इस अभियान में थकोगे नहीं, पस्त नहीं होगे, हार मानकर जमीन पर गिर नहीं पड़ोगे। ये कहकर उसने सलाखों के अंदर से अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया।
1: मेरे जीवन का अवसान समीप, प्रातःकालीन प्रदीप के प्रकाश के समान टिमटिमाता हुआ मेरा जीवन प्रदीप भार के प्रकाश में विलीन हो जाएगा। हमारे आदर्श, हमारे विचार बिजली के गोंद के समान सारे संसार में जागृति पैदा कर देंगे। अंत में संघर्ष के आरंभ की धुंधुवी बजेगी, जिसका परिणाम निर्णायक होगा। उसके विरुद्ध युद्ध में हमने भाग लिया और उसके लिए हमें

0: समय सरकार ने इनसे सांस लेने का अधिकार छीन और अपनी प्रतिहिंसा की प्यास बुझा ली। अन्याय और शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने वाले तीन और तरकी जिंदगी जल्लाद के फंदे ने समाप्त कर दी। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भगत सिंह ने एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए कहा था,
1: मजिस्ट्रेट साहब, आप बेहद ही भाग्यशाली हैं कि आपको ये देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि किस तरह भारत के क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं।
0: मेरे हमजोलियों की कतार से निकलकर वो शहीदों में जा मिले, उनके नाम के जय जयकार के बीच जब भी कभी उनके चित्र पर फूल चढ़े देखता हूं या किसी अजनबी को उन पर रचे सैकड़ों गीतों में से कोई एक गीत गुनगुनाते सुनता हूं तो गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाता है। मगर फिर भी हमराहियों के बिछड़ जाने से जिंदगी में एक आभाव सा हो जाता है जिससे थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, और जब भी मन बीते दिनों की स्मृतियों को कुरेद देता है तो वो कविवर आलम के शब्दों में कह उठता है, चारसना सौ करी बहु बातें, तारसना सौ चरित्र गुणों करे, नैनन मेजे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुना कर। ये सूरत इलाही किस देश की बस्तियां है।
2: एक बार इस राह में मरना भी सौ जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती।

0: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक की दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: अठारह सौ सत्तावन के मुक्ति संग्राम में एक नाम ऐसा है जिसने काल, परिस्थिति और परिवेश को धता बताते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया और समय की शिला पर अपने आप को दर्ज कर लिया। वो नाम है कानपुर की देवी अजीजन का। तात्या टोपे की प्रेरणा और फौजी शमशुद्दीन के मार्गदर्शन में इस नर्तकी ने आजादी की लड़ाई में सशक्त भूमिका निभाई थी। वो सैनिक छावनियों में जाकर नृत्य और संगीत के मार्फत भारतीय सैनिकों में देश प्रेम का जज्बा पैदा किया करती थीं। वे खुफिया तौर पर अंग्रेज टुकड़ियों की खबरें भी लातीं। इस वीरांगना ने अपनी एक टोली भी बनाई थी जिसका नाम था मस्तानी टोली। इस टोली की सैनिक महिलाओं को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी। बगल में हथियार लटकाए नंगी तलवार से दुश्मनों पर वार पर वार करती अजीजन शहर की गलियों और छावनियों में निडरता से घायल क्रांतिकारियों की मदद करती। वे कभी भोजन लेकर तो कभी रसद और हथियार लेकर सैनिक छावनियों में पहुंच जाया करती। कमल और रोटी के प्रतीक से लड़ा गया 1857 का संघर्ष जब हर जगह कुचला जाने लगा तो दमन चक्र के इस सिलसिले में अजीजन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सेनापति हेवलॉक ने अजीजन के रूप और लावण्य पर मुग्ध होकर उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे माफी मांगकर अंग्रेजों की सेवा करें तो मृत्यु दंड से बच सकती हैं। राष्ट्र के लिए समर्पित स्वाभिमानी अजीजन ने हेवलॉक की मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दो टूक उत्तर दिया कि गोरों की पूर्ण पराजय देखने के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं, आप मेरे प्राण ले सकते हैं, मुझे झुका नहीं सकते। इस पर अंग्रेज अधिकारी भड़क उठा और उसने अजीजन को गोली मारने का हुक्म दे दिया। बलिदानी अजीजन ने हंसते हंसते कुर्बानी दी और क्रांति के इतिहास में वरांगना से वीरांगना बनकर अमर हो गई।
2: अरे बेटा सुन तो सुन, ले ये चाय पी ले।
3: आया काका।
2: अरे क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह तेरी जुबान पे मुजरा चढ़ा हुआ है।
3: काका झाड़ू तो साफ लगाई ना।
2: नहीं रे वो बात नहीं है रामदीन, अरे काका के ढाबे को तुझसे अच्छा कौन चमका सकता है, है? फिर मुजरा। अरे ये सवेरे सवेरे तुझे क्या हो गया है, कहीं नाच तो नहीं देखाया तू है?
3: अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, आपन तो राम जनियों की शकल तक नहीं देखे। अरे बीमारी है ये, दुनिया का सत्यानाश कर दिया इन्होंने।
2: नहीं बेटा यहाँ तो तुम गलत हो।
3: अरे ये तुम कह रहे हो काका, वो भी इस उम्र में?
2: हाँ बेटा, एक ऐसी वेश्या भी थी जिसने इस देश की खातिर कुर्बानी दी।
3: हमारी खुशी के लिए कुर्बानी, जरा हम भी तो जाने कौन थी वो।
2: अजीजन बाई।
3: देश के लिए कुर्बानी एक वेश्या ने?
2: हाँ, कानपुर की मशहूर वेश्या।
3: वेश्या और कुर्बानी, हम मान ही नहीं सकते।
2: नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ अजीजन बाई के बारे में। बात तब की है जब हम गुलाम थे।

0: वाह जीतन, वाह वाह वाह वाह वाह जीतन।
1: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
2: बहुत खूब, बहुत खूब। या अल्लाह, आज तो नोटों की बरसात हुई है। हाय हाय, मैं मर जाऊं। झुक झुक जिए मेरी लाड़ो, मेरे आंखों का नूर। चल चल रानी, तेरी नजर तो उतार दू पहले। अरे कौन है? अरे देख तो गुलाबो, कौन है?
3: कोई वर्दीधारी है अम्मी जान।
2: लो, पहले सरकार आती है, पीछे पीछे उनके रखवाले चले आते हैं। चैन नहीं इस मुई रियासत को भी। अरे गुलाबो, भेज दे मेहमानों को भीतर।
1: ढाए हैं जुल्म तूने, हाय कितने सितमगर। है दर्द भरे जख्म जिगर पर उभर रहे।
4: हम जख्मों को मरहम लगाने ही तो आए हैं।
1: हम जख्मों तक पहुंचने की इजाजत ही नहीं देते।
4: इजाजत तो आप पहले ही दे चुकी हैं।
1: आज आपके मन में कोई उलझन है?
4: हाँ अजीजन, आज तुमसे मिलने शमसुद्दीन नहीं, अंग्रेजी फौज का एक हिंदुस्तानी सिपाही आया है।
1: ओ, तो हुजूर का सूबेदारी की धौंस जताने का इरादा है?
4: सूबेदारी नहीं अजीजन, खुददारी। खुददारी मेरी जान।
1: नमक तो अंग्रेजी सरकार का खाते हो?
4: अंग्रेजी सरकार का नहीं, हिंदुस्तान का नमक।
1: और सरकार?
4: हिंदुस्तानी नहीं है।
1: तो?
4: यही तो टीस है दिल में अजीजन।
1: क्या? मैं समझी नहीं।
4: मैं समझाता हूँ तुम्हें। नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे ने पिछले एक साल से ही हिंदुस्तान को जगाना शुरू कर दिया है।
1: उससे क्या होगा?
4: पेशावर से कलकत्ता तक क्रांति होगी अजीजन।
1: क्रांति?
4: हाँ क्रांति। और इस मुहिम में हमें तुमसे भी बड़ी उम्मीद है अजीजन।
1: मुझसे उम्मीद?
4: हाँ अजीजन, तुमसे।
1: क्यों मजाक कर रहे? आप जानते हैं ना, मैं एक नाचीज, कनीज, एक कोठे में कैद, जमाने के आगे नाचने को मजबूर, समाज की गंदगी हूँ।
4: पर यहाँ आते तो सभी हैं ना अजीजन।
1: फिर भी वे बेदाग हैं, और हम पर लगे दाग जिस्म को रौंदते हुए हमसे सैकड़ों सवाल पूछते हैं, आखिर कब तक और क्यों? हम क्या जवाब दें?
4: अब जवाब देने का वक्त आ गया है अजीजन। अपनी मोहब्बत को इस बाजार से उठाकर आजादी के सरोकार में बांट कर देखो अजीजन, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा।
1: सवाल का जवाब? मजाक छोड़िए सूबेदार साहब, जिसकी जिंदगी खुद एक मजाक बन गई हो, उसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं है।
4: तो तुम भूख से तड़पते हिंदुस्तानियों को देखो, जाकर देखो अजीजन, फिरंगियों के जुल्मों से कितने बेचैन हैं लोग।
1: बेचैन? हमसे ज्यादा बेचैन और कौन हो सकता है? जानना चाहते हो हमारी बेचैनी, तो सुनो, आज हम यहां हैं तो इन फिरंगियों की वजह से। हमारे वो जख्म आज तक नहीं भरे हैं।
4: तो अपनी जिंदगी औरों के जख्म भरने के लिए कुर्बान कर दो अजीजन।
1: हम?
4: कुछ मत सोचो अजीजन, कानपुर में बिठूर के नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने पूरी तैयारी कर ली है, और फौजी बैरक में मैंने और सूबेदार टीका सिंह ने सब समझा दिया है। बस एक बार नाना साहब और तात्या टोपे से मिल लो अजीजन।
1: हमें सोचने के लिए वक्त दे दो।
4: अब सोचने का वक्त नहीं है अजीजन।
1: करना क्या होगा हमें?
4: अपने नाच गाने के हुनर से हिंदुस्तानी सिपाहियों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए तैयार करो।
1: हमें मंजूर है।
4: वाह, आज तक तो तुम्हें मोहब्बत करता था, पर अब इबादत करने को जी चाहता है अजीजन। खुदा हाफिज।
2: गुलाबो, ओ गुलाबो।
5: जी कहिए अज्जूबी।
1: अम्मी जान कहाँ है?
5: बाहर गई हैं। पर बात क्या है अज्जूबी, बड़ी बेचैन लग रही हैं आप।
1: एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मेरे सरकार ने।
5: कैसी जिम्मेदारी?
1: आजादी की पहली जंग में शामिल होने की।
5: आजादी की पहली जंग?
1: हाँ गुलाबो, हमारे देश को पिछले 100 सालों से गुलाम करने वाले जालिम अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने जंग छेड़ दी है।
5: तो
1: ये जंग कानपुर में भी होगी, इसमें हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है।
5: आपको यकीन है आप ये कर लेंगी?
1: यकीनन।
5: हथियार चला लेंगी?
1: हथियार भी उठा लूंगी, अब तो सब कुछ मुल्क के लिए कुर्बान।
5: और मुझे क्या करना होगा?
1: तुझे मेरा साथ देना होगा।
3: मैंने आपकी तरह मुल्क की खिदमत की कसम नहीं उठाई है।
1: ये एक ही मौका है इस गंदी काया को पाक करने का। अरे हम तो मिट गए और आगे भी मिटना हमारा मुकद्दर है, पर आने वाले नस्ल के लिए कुछ करके मिटना बेहतर है। गुलाबो, आखिर हम भी कितना सहे, कब तक इस नरक में यूं ही।
3: बस अज्जूबी, आगे नहीं सुना जाता, मैं आपके साथ हूं। बताइए करना क्या है।
1: हम एक टोली बनाएंगे, मस्तानी टोली। एक तरफ हम अंग्रेजी कैंप से खबरें लाएंगे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फौजियों के बीच बगावत के जज्बात पैदा करेंगे। अब तक लोग हम पर फूल फेंकते थे, अब हम फौजियों को कमल का फूल पेश करेंगे।
3: कमल का फूल?
1: कमल का फूल जोश पैदा करेगा और बगावत का पैगाम देगा।
3: वो हमारी बात मानेंगे?
1: जब हमारे लिए दुनिया छोड़कर यहाँ कोठे तक आते हैं तो हमारे कहने पर मैदान जंग में क्यों नहीं जाएंगे?
3: और क्या करना होगा?
1: फौजी टुकड़ियों के अलावा हमें गांव वालों को भी समझाना है। हम गांव और शहर के हर मोहल्ले और गली में जाएंगे रोटी लेकर।
3: रोटी?
1: पहले गीत गाएंगे और प्रसाद में रोटी बांटेंगे, जो आजादी के लिए उठने वाले हर कदम का वादा होगा।
3: कैसा वादा?
1: ये जंग रोटी के लिए है। और हाँ गुलाबो, हमें मैदान जंग में रसद यानी गोला बारूद हथियार पहुंचाना, जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी करने के अलावा जंग के मैदान में अपना जौहर भी दिखाना है, समझी?
3: और वो चुड़ैल अम्मी जान हमें बाहर जाने की इजाजत देगी?
1: वही तो, उसके लिए सुन, हमें एक नौटंकी करनी होगी।

0: अरे गुलाबो, ए गुलाबो, या अल्लाह क्या हुआ मेरी बच्ची को? एक ही तो नूर है इस कोठे पे, अरे इसकी चमक से कानपुर तो क्या दूर दूर के रजवाड़े भी आबाद है। अब तक तो लंदन तक जा पहुंचा है इसका नशा, मेरे चांद के टुकड़े को किसी की नजर न लग जाए। हाँ क्या हुआ इसे?
1: अम्मी जान, हमें सुआ रोग तो नहीं हो जाएगा?
0: हाय अल्लाह, सुआ रोग, सुआ रोग, तौबा तौबा, तेरे दुश्मनों को हो, हट निगोड़ी कहीं।
1: क्यों नहीं होगा अम्मी जान?
0: अरे गुलाबो,
1: देखती नहीं सुबह से आधमकते हैं करम जले, देर रात तक नाचते नाचते पांव टूटते हैं और फिर बदन, न दिन को चैन न रात को आराम।
0: अब करूँ भी तो क्या करूँ, हर एक की जुबान पर बस एक ही नाम तो है, अजीजन अजीजन। अरे कल ही हकीम को बुलवा कर इसकी दवा दारू करवाती हूँ, और वो मौलवी साहब है ना, उनसे ताबीज भी बनवा के लाती हूँ। हाय मेरी बच्ची,
1: दवा ताबीज से कुछ नहीं होने वाला।
0: तो
1: इसे सुकून की सांसें चाहिए, और वो मिलेगी गंगा घाट पे खुली हवा में।
0: तो घाट लिए चलते हैं लाड़ो को। अरे मेरी लाड़ो की सलामती के लिए तो सब कुछ मंजूर है मुझे।
1: पर अम्मी जान, मैं अकेली गंगा घाट पर?
0: मेरी चांद को अकेले कैसे भेज दूंगी घाट पर? ये मुई है ना गुलाबो, निगोड़ी खा खा के मुटियारी है।
1: मैं ही क्या अम्मी, ये सलमा, रेशमा, लैला, नूरी भी तो खा खा के मोटी हो रही है। घाट पे दौड़ लगाएंगी तो जरा नजर टिकने लायक बने।
0: हाँ ये बात सही है, ऐसा कर तू ले जा सबको।
1: जी अम्मी जान।
0: अरे देख गुलाबो, अरे मुई देख कौन आया है।
1: अम्मी जान, लाट साहब के यहाँ से गाड़ी आई है।
0: लो फिर तेरे मुजरे की मांग करेगा लाड़ो, मुए पीछे ही पड़ गए हैं। अभी तो मैं टाल के आती हूँ, चलती हूँ। अरे लड़कियों, मेरी अज्जो का ख्याल रखना। हाँ एक ही तो कोहिनूर है मेरे कोठे पे।

0: अजीमुल्लाह खान आए हैं, अजीमुल्लाह खान आए हैं,
1: अजीमुल्लाह खान साहब।
2: क्या हुआ लड़कियों, क्या हुआ?
3: आदाब अर्ज अजीजन।
2: अरे आप, आदाब।
3: तात्या टोपे पूछ रहे थे कि क्या हुआ।
2: भैया से कहिए, मस्तानी टोली बन चुकी है। गंगा घाट पर नन्ने मियां ने हथियार चलाने की तालीम भी शुरू कर दी है। लड़कियों में जोश है, आप खुद ही देख लीजिए हमारी मस्तानी टोली को।
3: कोठे की चौखट से शुरू हुआ ये जज्बा इतिहास में अमर हो जाएगा जीजन।
2: हमारी टोली मैदान जंग में वो जौहर दिखाएगी कि
3: तुम्हारी टोली को बहुत जल्द सेना में जाना होगा। जब से सेना ने चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल से मना किया है, अंग्रेज जोर जबरदस्ती में लगे हैं। ऐसे में उनका हौसला बढ़ाना होगा जीजन।
2: तो यहाँ से हम सीधे बैरक में ही जाते हैं। खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज।
2: चलो रे लड़कियों।

पर मराठे और निजाम से जागीर के तोहफे मिलते थे। अरे तोहफे तो दूर, हमसे अपना धर्म भी छीन रहे हैं ये जालिम। मत भूलो कि ये वही फिरंगी सरकार है जिसमें जनरल वेलेस्ली ने घायल सैनिकों को गोलियों से भूनने का हुक्म दिया था। उन मरे हुए साथियों की आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब आपकी तलवार उठेंगी, बंदूकें चलेंगी। अब हमारी हुंकार फिरंगी राज को देश निकाला करके ही दम लेगी। 31 तारीख को सब कुछ लाल हो जाएगा। आओ, कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ। आजादी लोगों को भीख में नहीं मिलती, आजादी दुश्मन से लड़ कर ली जाती है। जिन राहों पर छिड़का जाता है गर्म खून, उन राहों पर चलकर आजादी आती है।

0: कुछ भी हो, ये मौलवी साहब की बात मन में बैठ जाती है भैया।
1: राम राम।
0: राम राम अजीजन, राम राम।
1: राम राम। ये लो भैया रोटी, भारत माँ का प्रसाद, सब मिल बांट कर खा लो, फिर नई बनवा के बगल वाले गांव में भिजवा देना। याद है ना 31 तारीख को मंगल काम होना है, सबको पूजा की सुपारी बनना है, समझ गए ना?
0: अरे लाओ जीजन लाओ, अपनी आजादी की रोटी।
1: रोटी की लड़ाई में जीत अपनी ही होगी भैया।
2: सर हैवलॉक, आई थिंक कानपुर में भी गड़बड़ होने वाला है।
3: नो भारत नो, हैवलॉक के होते ऐसा नहीं हो सकता। इंडियंस आर टू सबमिसिव, वह कुछ नहीं कर सकता। अगर म्यूट नहीं हुआ तो पहला हमला खजाने पर ही होगा, उसका क्या करें?
2: सर उसका सेफ्टी नाना साहब पेशवा करेगा।
3: नाना?
2: यस सर, नाना। ही इज ए टॉलरेंट हिंदू और उसके पूछ को हमने अभी ही तो कुचला है।
3: एक्सीलेंट। और बारूद खाना?
2: उसे भी नाना को दे सकते हैं।
3: ब्रिलियंट। हे नाना को बुलाया जाए।
2: सर हमने नाना को पहले ही बुला लिया है। He is about to come.
3: Yeah. Very good, Mr. Biden. I am impressed.
2: Welcome, Nana Sahib. Aiye.
3: How are you?
4: Upar baale ki daya aur aapki dua se theek hoon.
2: Nana Sahib, hum aapne khazane aur armoron ki safety ka jimma aapko saupna chahte hain.
4: Aap nischint rahein. आपके कहे अनुसार हमारे सिपाही सुरक्षा के लिए आ चुके हैं, और कुछ?
2: बट नाना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर सिक्योरिटी?
4: हमेशा की तरह आपकी महिलाएं और बच्चे हमारे बिठूर के राजमहल में रह सकते हैं, हमारे सिपाही उनकी चौकसी करेंगे।
2: थैंक यू, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा।
4: याद रखने के लिए ही तो किया जा रहा है बर्डन साहब।

0: पेशवा
1: जिंदाबाद,
0: नाना साहब पेशवा
1: जिंदाबाद।
0: बिठूर के नाना साहब पेशवा को हम अपना राजा चुनते हैं। नाना साहब की
1: जय।
2: नाना साहब की जय हो। हम छावनी के फिरंगियों को नहीं छोड़ेंगे।
3: जनरल व्हीलर बीवी बच्चों सहित गंगा घाट पर अपने बनाए किले में जा बैठा है साहिब।
4: कितने होंगे?
3: लगभग 1,000।
4: किले का घेराव किया जाए।
3: वो देखो, शांति का झंडा।
4: युद्ध रोक दिया जाए।
5: आप लोग हमें गोला बारूद हथियार सौंप दें, हम आपको इलाहाबाद पहुंचा देंगे।
6: मजिस्ट्रेट होला सिंह और तात्या टोपे, आप जाकर सत्ती चोरा घाट पर 40 नौकाओं की व्यवस्था करें और इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। अब हम चलते हैं। चलिए तात्या टोपे।
7: इन्हें तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना ही होगा।
3: हाँ जी जन, चलिए नौका तैयार है।
8: कितना टाइम लगेगा इलाहाबाद जाने में?
3: कोई देरी नहीं, चंद मिनटों की बात है, अभी घाट पर उतार देते हैं। पर मौत के घाट।
2: खत्म कर दो इन जालिमों को।
0: रुकिए,
9: नाना साहब और तात्या टोपे आ गए हैं।
4: इंसानियत के नाते स्त्रियों और बच्चों को हाथ न लगाया जाए।
2: इंसानियत का हुक्मनामा आखिर कब तक साहेब? इलाहाबाद में इंसानियत नहीं बरती गई थी, पर पेशवा का हुक्म सराखों पर।
4: कुल कितने लोग बचे हैं?
3: 4 पुरुष, 125 स्त्रियां और बच्चे।
4: इन्हें बीबी गढ़ कोठी में भेज दिया जाए।
3: जो हुक्म।
4: क्यों किया तुमने अजीजन? देखो चीखों से गूंज उठा बीबीगढ़।
2: बीबीगढ़ तो औरतों की चीख से गूंजता ही रहा है साहेब। हिंदुस्तानी औरतें 100 बरस चीखी हैं और ये गोरी सिर्फ एक दिन। हिसाब अभी भी बराबर नहीं हुआ है साहेब।
4: लेकिन ये मानवता के खिलाफ है।
2: आप मानवता की बात कर रहे हैं? फिरंगियों ने इलाहाबाद में जो कयामत ढाई उसका क्या?
4: इसमें बीबीगढ़ की अंग्रेज महिलाओं का क्या दोष?
2: इलाहाबाद में सैकड़ों हिंदुस्तानी औरतों को जिंदा जला डाला था, उनका जुर्म क्या था महाराज? सारे भारत में जितने अंग्रेज मारे गए उतने अकेले इलाहाबाद में नील ने मार डाले। एक अंग्रेज के पीछे हमारा एक गांव जला डाला इन दरिंदों ने। और अब हम इंसानियत की बातें करें? माफ कीजिए, आप ही ने कहा था ना कि जिस दिन फिरंगियों ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखे थे उसी दिन युद्ध होना निश्चित था। समय अब तय हुआ है। ठीक उसी तरह ये कत्ल होना तो उसी दिन तय था जिस दिन इलाहाबाद चीखा था। अंजाम आज दिया गया है। इस पर भी आपकी राय में अगर मैं अपराधी हूँ तो बंदी आपके सामने है। आप जो सजा देना चाहे दे।
10: ये वक्त सजा का नहीं है। फिरंगी शहर में घुस आए। अजीजन, तुम्हें आखिरी बार जान फूंकनी होगी।
2: जो आज्ञा भैया।
5: अजीजन, अजीजन, अजीजन, सब कुछ खत्म हो गया अजीजन।
2: क्या कहते हो नन्हे मियाँ? नहीं, मैं ये नहीं मानती।
5: मानना ही होगा अजीजन।
2: नाना साहब,
5: नाना साहब ने बिटूर छोड़ दिया है।
2: और भैया,
5: तात्या टोपे ग्वालियर की तरफ गए हैं और टीका सिंह को फांसी।
2: हमारी ताकत बिखर गई, हमारा कानपुर जल रहा है।
5: चलता हूँ अजीजन, किसी भी समय फिरंगी आ सकते।
2: जाइए जाइए यहाँ से।
11: अच्छुबी फिरंगी फौजी, भागो भागो।
2: नहीं, अजीजन भागने वालों में से नहीं है। अभी बताती हूँ जालिमों।
12: Get her।
13: यही अजीजन है।
12: तुमने मारा सबको?
2: हाँ, मैंने मारा।
12: Oh, I don't believe this, but why?
2: गुनहगार थी वो।
12: अगर तुम माफी मांग लो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे।
2: माफी? अरे माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक तो तुम हमारे देश में घुसे, ऊपर से राज हथिया लिया और फिर जुल्म भी ढाए, वो भी इतना कि कांप उठा हमारा हिंदुस्तान। पर अब हम जाग गए हैं, एक को मारोगे तो हजार खड़े हो जाएंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अंग्रेजी राज का नाश नहीं हो जाता।
12: तुम्हारी कोई लास्ट विश?
2: फिरंगियों का देश निकाला,
14: देश निकाला,
2: देश निकाला।
15: Shut up, hey!

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब समय है हमारे कार्यक्रम कला कलोलिनी का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
2: और संदीप के साथ मैं हूं मनीषा।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे नृत्य सम्राट उदय शंकर की। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में ऐसे कुछ विरले व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम विश्व में रोशन किया है, और अपने असाधारण योगदान से अपना और राष्ट्र का नाम अग्रिम पंक्ति में पहुंचाया और दूसरों को अपनी अद्वितीय प्रतिभा से प्रेरणा दी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे एक महान कलाकार की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किसी भी स्वरूप में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, परंतु उनकी प्रस्तुतियां रचनात्मक होती थी। हालांकि ये बात अलग है कि बचपन से ही वे भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के संपर्क में रहे।
2: हाँ श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में आधुनिक नृत्य के निर्माता, सुप्रसिद्ध नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता नृत्य सम्राट उदय शंकर जी की। उन्होंने यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य की संस्कृति से दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। हाँ, उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइन, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध के नाम से नवीन नृत्यों की रचना की। इसमें वेशभूषा, यंत्र संगीत, ताल और लय आदि का आविष्कार भी किया। कला की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो तमाम बंधनों और समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो गए हैं। उदय शंकर उन्हीं महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने नृत्य कला को केवल एक प्रदर्शन कला नहीं बल्कि संस्कृति सेतु बना दिया।
1: इसलिए तो उन्हें भारत के आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। हम इस बात को यहाँ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जिस समय भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर समकालीन रूप देकर नई पहचान दिलाई। जब भारतीय नृत्य विश्व पटल पर अपने लिए एक बड़ा सम्मान अर्जित कर रहे थे, उसी 1930 के दशक में भारत में भी शास्त्रीय नृत्यों के रूपों का पुनरुत्थान हो रहा था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हो रही थी, और उस समय विदेशी शासन के बावजूद भारतीय अपनी स्वदेशी कलाओं पर गर्व कर रहे थे। उस समय उदय शंकर जो कि प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य की किसी भी शैली में उनका कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था।
2: ये तो सही है कि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, परंतु उनके नृत्य बहुत रचनात्मक होते थे। अनेक नृत्य परंपराओं को और साथ ही उनकी तकनीकी कुछ चुनी हुई चीजों को लेकर अपने नृत्य नाटकों की रचना करने में उन्हें कमाल की महारत हासिल थी। वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इस विषय में उनका योगदान अपने मन में आई भावनाओं और विषय को विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त शैली और रूप के साथ रचनात्मक तरीके से दर्शकों तक पहुंचा देने का हुनर रखते थे। नृत्य के पारंपरिक तरीके से परिचित होने के बाद भी उन्होंने उन सभी को अलग रखा, एक और अलग एकीकृत रचना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनके इसी तरह के प्रयोग देखकर लोगों के सामने उनकी बहुमुखी प्रतिभा निखर कर सामने आई। उस्ताद अलाउद्दीन खां और विष्णुदास शिराली, जो कि सुविख्यात पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, उनके साथ उदय शंकर ने पेरिस में अपने एकल और युगल बैले नृत्य के लिए रचनात्मक संगीत के साथ प्रयोग किए।
1: जी हाँ, उदय शंकर ने केवल भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जिसने उनकी रचनाओं और नृत्यों के संगीत को एक अनोखा रंग प्रदान किया, और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके कई नवाचारों ने हमारे संगीत के रुझान को और समृद्ध किया है। और इस बात का एक ठोस आधार ये भी है कि उनकी प्रशिक्षण पद्धति में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें नर्तकों को उनके द्वारा प्रस्तुत बैले नृत्यों के लिए तैयार किया गया जो संभागीय रहता था, और इसमें उनकी नृत्य तकनीक, लोक नृत्य, तात्कालिक नृत्य मंच और वेशभूषा डिजाइन, श्रृंगार, प्रारंभिक शारीरिक आयाम, भावपूर्ण गतिविधियां, शरीर की संवेदनशीलता का विकास, एकाग्रता, कल्पनाशीलता, सामूहिक भावना और उसका अवलोकन, चरणों का ज्ञान, गति का मनोविज्ञान, रंग और रेखा की समझ, नृत्य और नाटक का संबंध, ये सब शामिल रहा।
2: श्रोताओं, यहाँ इस बात को भी बताना हम जरूरी समझते हैं कि इनके छोटे भाई रविशंकर वही हैं जिन्हें हम सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के नाम से जानते हैं। उदय शंकर के पिता संस्कृत के माने हुए विद्वान थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए और वहां से वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बने। पिता को अपने काम के सिलसिले में बहुत अधिक घूमना पड़ता था, इसलिए उदय शंकर के परिवार ने अपना ज्यादातर समय अपने मामा के परिवार में अपनी माँ और छोटे भाइयों के साथ नसरतपुर में बिताया।
1: उदय शंकर की शिक्षा भी इसी कारण अलग अलग जगह पर हुई, जिसमें नसरतपुर, गाजीपुर, वाराणसी और झालावाड़ शामिल हैं। नृत्य के अलावा उदय शंकर चित्रकला, संगीत, शिल्पकला और फोटोग्राफी में भी महारत रखते थे। शिक्षा उन्होंने अपने गाजीपुर के स्कूल में अपने शिक्षक अंबिकाचरण मुखोपाध्याय से हासिल की थी। नृत्य कला का सारा श्रेय उन्होंने अपनी माँ को दिया। एक साक्षात्कार में अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी ये कला माँ की बदौलत है। बचपन में उनकी माँ उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनाती थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो उन्हें साड़ी और गहने पहनाती थी और संगीत की धुनों पर थिरकना सिखाती और फिर नाचने के लिए भी कहती थी। तब उन्हें जो भी नृत्य करने का मन करता वो कर लेते, पर उन्हें नृत्य करना नहीं आता था, लेकिन वो कर लेते और उन्होंने किया, और इसके लिए वो सदा अपनी माँ को आभारी मानते रहे। इसकी शुरुआत उनकी माँ ने ही कराई।
2: बचपन में त्योहारों के दौरान होने वाले नृत्यों के अलावा लोक नृत्यों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। हालांकि बचपन में उनकी दिलचस्पी मुख्यतः चित्रकला में थी, ये प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल थी कि झालावाड़ के महाराजा ने उनके पिता को उदय को सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलाने को मना लिया और यहाँ से डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के बाद 1920 में वे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लेने के लिए लंदन चले गए।
1: हाँ, और इसके अलावा उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और हर नजरिए से पूर्णता मिले, बस इसी पर जोर रहता था। वे जानते थे कि वे अपने दर्शकों में और उत्सुकता कैसे जगा सकते हैं। बहुत कम समय में बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत कराने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। विभिन्न भारतीय देवी देवताओं के बारे में उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण रखा जिसने एक अमिट छाप छोड़ दी।
2: जिन दर्शकों ने उनके इंद्र, कार्तिकेय और शिव के एकल नृत्य देखे हैं, वे उनके द्वारा रचित कलात्मक और मनमोहक छवियों को लंबे समय तक ज्यों की त्यों अपने मन मस्तिष्क में सजाए रहते थे। मंच पर नृत्य प्रस्तुति के समय उनका शारीरिक सौंदर्य अद्भुत नजर आता था, जो दर्शकों के मन में समा जाता था। वे अपने इस विशिष्ट गुण से दर्शकों पर सदा जादू कर देते थे।
1: जी हाँ, बात आपने बिल्कुल ठीक ही की है। उनमें जो ये दुर्लभ गुण था उसे दोहराया नहीं जा सकता है। बस जिन्होंने उन्हें मंच पर प्रस्तुति देते हुए देखा है, उनके मन में उनकी स्मृति बसी हुई है। सुप्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर की प्रतिभा की और विस्तार से चर्चा करने से पहले हम आपको अब उनके जन्म के बारे में जानकारी दे दें। उदय शंकर का जन्म 8 दिसंबर 1920 राजस्थान के उदयपुर शहर में हुआ था। वैसे तो वे मूलतः नरेल, जो बांग्लादेश में आता है, वहां के एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे।
2: उनके पिता का नाम श्याम शंकर चौधरी था, अपने समय के सुप्रसिद्ध वकील थे और राजस्थान में ही झालावाड़ के महाराज के यहाँ काम करते थे। उनके पिता को नवाबों द्वारा हर चौधरी की उपाधि दी गई थी, किंतु उन्होंने हर चौधरी में से हर को हटा दिया। अपने नाम के साथ सिर्फ चौधरी का प्रयोग करना ही पसंद करते थे। उदय शंकर की माँ हेमांगिनी देवी भी एक बंगाली जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनके अन्य बच्चों के नाम राजेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर, भूपेंद्र शंकर और रविशंकर थे।
1: श्रोताओं, चित्रकला की प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल और विलक्षण थी कि उन्होंने 5 साल का कोर्स 3 साल में ही पूरा कर लिया। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही तब उदय को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रमने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में पढ़ते हुए बिताए गए वो असंख्य घंटे ही थे जो उदय शंकर को नृत्य की ओर वापस ले आए।
2: फिर क्या था, उदय शंकर के मन में भारतीय मूर्तियों की विभिन्न नृत्य मुद्राओं में देवी देवताओं के चित्रों के प्रति विशेष रूप से आकर्षण पैदा हो गया और उन्होंने तब उन मुद्राओं का अनुसरण करना आरंभ किया। हालांकि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, फिर भी वे अपने आप को रोक नहीं पाए। बस फिर तो वो चित्र ही उनके लिए प्रेरणा बन गए और फिर उदय शंकर ने उन चित्रों को नृत्य की गति में ढाल दिया।
1: कॉलेज में पढ़ते हुए ही 1922 में उन्होंने अपना पहला नृत्य प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लीग ऑफ मर्सी द्वारा आयोजित किया गया, जो महारानी विक्टोरिया के शाही चार्टर द्वारा स्थापित एक ब्रिटिश संस्था थी, और इस नृत्य प्रस्तुति की किंग जॉर्ज पंचम ने भी सराहना की थी। एक और महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम की ये रही कि इसमें दर्शकों में प्रसिद्ध रूसी बैले नृत्यांगना अन्ना पावलोवा भी मौजूद थी, और उन्होंने उदय शंकर को नृत्य करते देखा तो उन्हें उदय शंकर की नृत्य शैली बहुत पसंद आई, और बाद में अन्ना पावलोवा ने उदय शंकर को कुछ भारतीय नृत्य बनाने की जिम्मेदारी दी। तब उदय शंकर ने अन्ना पावलोवा को राधा कृष्ण और हिंदू विवाह के नृत्य तैयार कर दिए, जो उन्हें बहुत पसंद भी आए।
2: ये दोनों बैले नृत्य जो उदय शंकर ने तैयार किए थे, पश्चिम में बहुत पसंद किए गए, क्योंकि तब तक वहां के लोगों ने ऐसा पहले कुछ कभी नहीं देखा था। अन्ना पावलोवा के साथ कई नृत्यों की कोरियोग्राफी करने में उदय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये अन्ना पावलोवा ही थी जिन्होंने उदय शंकर को अपनी भारतीय तकनीक और शैली में सुधार के लिए प्रेरित किया। उदय शंकर ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा कि अन्ना ने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पश्चिमी शैली का अनुकरण ना करूं, क्योंकि पश्चिम के लोग नृत्य में वो सब कुछ देखना पसंद करेंगे जो कि भारतीय कला से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है।
1: इस तरह अन्ना पावलोवा के साथ एक साल बिताने के बाद उदय शंकर ने 1924 में पेरिस में अपनी नृत्य मंडली को शुरू तो किया, लेकिन पावलोवा की कंपनी से दूर जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि अन्ना पावलोवा के साथ उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए मिली सफलता और सार्वजनिक प्रशंसा के साथ पेशेवर और आर्थिक स्थिरता मिली थी, और कंपनी छोड़ने के बाद उदय शंकर बेरोजगार हो गए थे। और जब जीवन में पहली बार बिना किसी संरक्षण के परिस्थितियां बेहद मुश्किल हो गई थी, और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो बहुत छोटे छोटे आयोजनों में भी नृत्य के कार्यक्रम देने लगे। एक दो साल इसी तरह जीवन संघर्ष चलता रहा, और यही वो कार्यक्रम और आयोजन थे जहां उदय शंकर ने दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाकर उनसे एक अटूट रिश्ता बनाया।
2: समय निकला और बदला भी, और इसके साथ ही 1926 के आसपास उदय शंकर के लिए और भी चीजें बदलने लगी। उस समय उनके ट्रुप में उनके भाई रविशंकर, देवेंद्र शंकर और उनकी माँ के साथ उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे। तब दुनिया भर के तमाम देशों में इस ट्रुप ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, और उदय शंकर ने अपनी अलहदा नृत्य शैली के साथ नए नए प्रयोग किए और अपने नृत्य में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक को अपनाने के लिए मशहूर हो गए।
1: अब देखा जाए तो उदय शंकर के संघर्ष और उपलब्धियों की लंबी दास्तान है। उनके इस काम में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार 13-14 घंटे अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और हालात को सहते हुए मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया, पर स्वयं को टूटने नहीं दिया।
2: और फिर अन्ना पावलोवा के ही ट्रुप के दो पूर्व सदस्यों एडिलेड और सोकी नाम की दो बहनों के साथ काम किया, और कुछ समय बाद उन्होंने पेरिस की पियानो वादिका सिमोनो वाडियर के साथ मिलकर काम किया और सिमकी नाम के साथ नृत्य की दुनिया में अपना धमाल मचाया। कहा जाता है कि सिमकी के साथ तो एक नए युग की ही शुरुआत हुई। तब उदय शंकर ने नए नृत्यों की कोरियोग्राफी शुरू की, जिसमें एकल और युगल दोनों ही तरह के नृत्य शामिल थे।
1: और फिर तो उदय शंकर और सिमकी नृत्य में साझेदारी जल्दी बेहतर लोकप्रिय हो गई, और उन्हें बहुत सारे शोज करने के लिए जल्दी जल्दी आमंत्रित भी किया जाने लगा। काम, शोहरत, इज्जत सब कुछ सामने आ गया। उन्हीं दिनों यूरोप के दौरे के दौरान उदय शंकर की मुलाकात स्विस चित्रकार और मूर्तिकार एलिस बोनर से हुई। वे उदय शंकर के नृत्य पर मोहित और प्रभावित हो गईं, और उन्होंने उदय शंकर की नृत्य मुद्राओं की मिट्टी से मॉडल और चित्रों के द्वारा एक श्रृंखला तैयार की।
2: तब तक उदय शंकर सुप्रसिद्ध नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता के रूप में जाने जाते थे। तब उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाने लगा था। उदय शंकर के भाव और भंगिमाओं को देखकर वो चकित हो गए। उदय शंकर के नृत्य के पीछे उन्होंने भारत के प्राचीन स्वरूप, संस्कृति और मूर्तिकला के भाव को समझा। तब उन्हें लगा कि भारतीय मंदिरों पर बनी मूर्तियां उदय शंकर के इस नृत्य के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रही हैं। उनकी उत्सुकता इतनी बड़ी थी कि वे इसे जानने के लिए भारत आईं और उदय शंकर के नृत्य को उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं, काशी के घाटों और सांस्कृतिक चित्रों में देखा।
1: उन पर आधारित एलिस की कलाकृतियां BHU के भारत कला भवन म्यूजियम की दर्शक दीर्घा में प्रदर्शित हैं, जहां उदय शंकर के नृत्य को और दूसरी भारतीय कलाओं के तालमेल को बताया गया है। उदय शंकर ने एलिस बोनर के साथ 1930 में भारत भ्रमण कर नृत्यों की भाव भंगिमाओं का चित्रांकन किया। एलिस 1931 में ही उदय शंकर के साथ काशी भी आई और तब यहाँ केसी घाट ने उन्हें फिर वापस कहीं और जाने नहीं दिया।
2: उस समय भारत या बनारस में नृत्य को अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था। इस कारण उदय शंकर को कहीं से भी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। तब एलिस बोनर ने बनारस से यूरोप, अमेरिका आदि देशों में उनके कार्यक्रम तथा वेशभूषाओं की व्यवस्था देखने का जिम्मा उठाया और इस तरह एलिस बोनर और उदय शंकर ने लगभग 30 साल तक एक साथ काम किया। एलिस बोनर भारतीय कला और संस्कृति से प्रभावित होकर भारत तो आई उन्हें देखने ही थी, लेकिन 80 घाट पर जहां वो रहने लगी उस जगह आज एलिस बोनर इंस्टीट्यूट है।
1: और इधर उदय शंकर के संगीत और नृत्य प्रेम से गाजीपुर स्थित बिरनो ब्लॉक नसरतपुर के लोग आज भी शिद्दत से उन्हें याद करते हैं। उनकी यादें आज भी गाँव के लोगों के मन में बसी हैं, जो उन्हें याद रखे हैं। नसरतपुर के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि गांव में उदय शंकर का परिवार बंगाली बाबू के नाम से मशहूर था और पूरा परिवार शुरू से ही व्यवहार कुशल और व्यक्तित्व का धनी था। उनके परिवार के सदस्य सदा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते थे। गांव वासियों के प्रति उनका उदार रवैया ग्रामवासी कभी भुला नहीं पाएंगे।
2: उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य का प्रणेता माना गया है, क्योंकि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सभी आयामों में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक के साथ अपने नए रंग भरकर 1920 से 1930 तक के दशक में उसे यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया भर के अनेक देशों में प्रतिष्ठित किया। अपने कुछ मित्रों की सलाह पर वर्ष 1938 में उदय शंकर ने भारत लौटकर हिमालय पर्वत की गोद में बसे प्रकृति की खूबसूरत नेमत से भरपूर अल्मोड़ा शहर को अपनी भावी योजनाओं को अंजाम देने के लिए चुना।
1: ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से उन्होंने अपना स्कूल भारत में संचालित करने का मन बनाया था और इसके लिए वर्ष 1939 में अल्मोड़ा शहर में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना की गई। इस काम में उनके साथ कथकली के प्रख्यात गुरु शंकरन नमूदरी, भरतनाट्यम के कंडप्पा पिल्लई, मणिपुरी के अम्बी सिंह और संगीत के मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान शामिल थे।
2: और इसमें उनके इस समूह में गुरुदत्त, मैडम सिमकी, अमला, नरेंद्र शर्मा, जोहरा सैगल, लक्ष्मी शंकर, विष्णु रास, मंगेश राव, प्रभात गांगुली, शिशिन भट्टाचार्य, माधवन नायर, कनकलता तथा उनके अपने भाई रविशंकर भी छात्र रूप में शामिल हो गए। लेकिन इतने गुणी व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने के बावजूद ये केंद्र मात्र 4 वर्ष ही अस्तित्व में रहा। उनके अभिनव प्रयोगों के बावजूद उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर धन की कमी के कारण 1942 में बंद हो गया। बड़े भारी मन से उदय शंकर ने अल्मोड़ा छोड़कर वापस जाने का फैसला कर लिया। तब उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर का सारा सामान लंबे समय तक अल्मोड़ा में ही पड़ा रहा।
1: हम यहाँ सामान का जिक्र श्रोताओं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें उदय शंकर के माने गए कथकली नृत्य गुरु पंडित शंकरन नंबूदरी का दिया हुआ उपहार भी शामिल है, जिसके बारे में उदय शंकर का कहना था कि इससे उनका अंतरंग जुड़ाव है। तो हुआ यूं कि अल्मोड़ा में बाकी पड़े सारे सामान के साथ उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में होने वाले कार्यक्रम से पहले एक विशाल और भव्य धातु निर्मित पानस यानी कि ऊंचा दीपक, जिसे हमारे यहाँ समई कहा जाता है और केरला में इसे पानस कहा जाता है, उसे प्रज्वलित किया जाता है। तो वो पानस अर्थात समई भी था और इस पानस अर्थात समय को भी उसी सामान के साथ रखा गया था जिसकी नीलामी होनी थी। पीतल धातु से बने एक क्विंटल वजन से भी ज्यादा वजनी इस पानस को उदय शंकर को उनके गुरु पंडित नंबूदरी ने उपहार में दिया था।
2: उदय शंकर ने अपने इन गुरु से केरल जाकर उनके गांव में ही रह रह कर नृत्य की भंगिमाओं एवं बारीकियों को सीखा था। ये पानस यानी समय 1 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसमें दीपक जलाने के लिए लगभग 2 लीटर तेल की आवश्यकता होती है और एक साथ 100 बत्तियां जलती हैं और बत्तियां जलाने वाले हिस्से की परिधि भी लगभग 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस पानस को 2 भागों में खोला जा सकता है और इस प्रयोग से पहले जोड़कर इसे पूरा किया जाता है, तब इसका उपयोग हो पाता है।
1: श्रोताओं, किसी विशेष अवसर पर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से पहले इसके सभी हिस्सों को खोलकर अलग कर लिया जा सकता है और दीप प्रज्वलन के लिए उसे पुनः जोड़ा जाता है। ये इतना भारी है कि इसकी ऊपरी चक्कर को खोलने के लिए 3-4 व्यक्ति पकड़कर घुमाते हैं, तब कहीं ये खुल पाता है। इस पानस की नीलामी के समय उदय शंकर मन से बहुत द्रवित थे। वे दुखी मन से बोले थे कि चाहे इस पानस का मूल्य कम भी मिले, लेकिन ये पानस केवल उस व्यक्ति को ही मिले जो कला का पारखी हो और इस अमूल्य धरोहर को संजो कर रख सके, क्योंकि इससे मेरा अंतरंग जुड़ाव है।
2: उदय शंकर की इच्छा के अनुसार ये पानस हरिकिशन लाल शाह गंगोला और उनके पुत्र जगदीश लाल शाह गंगोला ने खरीदा, जो गंगोला परिवार की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। यहाँ श्रोताओं, हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इस पानस को 1943-44 में नीलामी के बाद पहली बार 1954 में अल्मोड़ा में आयोजित शरद उत्सव में प्रज्वलित किया गया था।
1: जी, और तब से अल्मोड़ा नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों में इस पानस अर्थात समय के दीप प्रज्वलित कर अनेक शख्सियतों ने यहाँ आयोजित कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, जिनमें प्रमुख है मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान, प्रख्यात सितार वादक और उदय शंकर के छोटे भाई भारत रत्न पंडित रविशंकर, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी, जोरा सेगल, नृत्यांगना सोनल मानसिंह और उदय शंकर के पुत्र आनंद शंकर। गंगोला परिवार के सदस्यों का कहना है कि उदय शंकर जैसे कलाकार का ये पानस समय वर्तमान में भी अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उदय शंकर के योगदान का गवाह है और आज भी ये रंगकर्मी और संस्कृति प्रेमियों के लिए नृत्य सम्राट उदय शंकर के महान योगदान का एक प्रेरक स्तंभ बना हुआ है।
2: अब बात करें उदय शंकर के निजी जीवन की, तो उन्होंने अपने मित्र अक्षय नंदी की छोटी बहन और उनके ट्रुप में काम करने वाली 11 वर्ष छोटी खूबसूरत नृत्यांगना अमला नंदी से 1939 8 मार्च को विवाह कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अमला ने 1942 में उनके पुत्र आनंद शंकर को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक गायक और संगीतकार बने। जीवन में चले उतार चढ़ाव, ऊंच नीच को सुलझाते हुए जीवन की डगर पर चलते हुए अमला ने उदय शंकर की दूसरी संतान खूबसूरत पुत्री ममता शंकर को जन्म दिया, जो एक बेहतरीन अभिनेत्री, नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और कोलकाता में उदयन डांस कंपनी भी चलाती हैं।
1: और चलिए अब बात करते हैं भारतीय आधुनिक नृत्य कला के जन्मदाता उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट की। जी हाँ, उनका ये प्रोजेक्ट था नृत्य पर एक फिल्म निर्माण करने का। वो चाहते थे कि उनकी कला का प्रचार प्रसार हो, इसलिए एक संस्थान की स्थापना भी वो करना चाहते थे। इधर उनकी आयु भी बढ़ती जा रही थी, वो सोचते थे कि उनका नृत्य बना रहे, बचा रहे, बसा रहे। और सन 1965 में एक ऐसा संस्थान बनाया गया बंगाल के कोलकाता शहर में। इस संस्थान में अमला शंकर को निर्देशक बनाया गया।
2: अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी उनकी बनाई नृत्य विधा को संजोए रखने के लिए बनाई गई फिल्म कल्पना की। ये काम जोर शोर से चलने लगा। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट तैयार की गई। इस फिल्म का लेखन, निर्देशन, नृत्य निर्देशन स्वयं उदय शंकर ने किया और फिल्म में हीरो की भूमिका उदय शंकर और हीरोइन की भूमिका अमला शंकर ने निभाई। फिल्म की पटकथा अमृतलाल नागर ने लिखी और गीत सुमित्रा नंदन पंत और भील लोकगीत देवीलाल समर के थे और संगीत विष्णुदास शिराली ने रचा था।
1: श्रोता, 1948 में बनी फिल्म कल्पना एक नृत्य प्रधान फिल्म थी, जो एक युवा नर्तक के नृत्य अकादमी स्थापित करने के सपने के इर्द गिर्द घूमती है। ये पहली फिल्म थी जिसमें एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को प्रमुख भूमिका में प्रस्तुत किया गया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक नृत्य बैले और एक फैंटेसी के रूप में फिल्माया गया था। यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन 2008 में गोवा शहर में इसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के खजाने के अनुभाग के एक भाग के रूप में अभिलेखागार में अन्य दुर्लभ रत्नों के साथ दिखाया गया था।
2: उदय शंकर को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। हुआ ये कि फिल्म बनना शुरू हुई तो पैसों की कमी के कारण उदय शंकर को अपना अल्मोड़ा वाला उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर बंद कर देना पड़ा, जिसका उदय शंकर को बहुत गहरा धक्का लगा। और तब उनकी पत्नी अमला शंकर ने ही बड़े धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने पति उदय शंकर को संभाला और किसी तरह इस फिल्म को पूरा करने में सहयोग दिया।
1: लेकिन अमला शंकर और उदय शंकर की सारी मेहनत, हिम्मत और धैर्य सब जवाब दे गए जब रिलीज के बाद फिल्म कल्पना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि अब इस फिल्म की हिफाजत किसी बेशकीमती नगीने की तरह की जाती है और संघ 2010 में मार्टिन स्कॉर्सेसे, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं, उनकी कंपनी वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन ने इस फिल्म के डिजिटल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, उदय शंकर द्वारा बनाई गई कल्पना नामक फिल्म भारतीय सिनेमा की अनोखी, अनूठी प्रयोगात्मक कृति मानी जाती है। इस फिल्म में नृत्य कला, दृश्य कला और फिल्मांकन को एक साथ पिरोकर उदय शंकर ने दर्शकों को एक नई राह दिखाई है।
2: बिल्कुल, इसके साथ ही रचनात्मकता और भारतीय नृत्य कला में अमूल योगदान के लिए उदय शंकर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1960 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और उसके बाद सन 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी नवाजा गया। और पुरस्कारों का सिलसिला यहीं नहीं थमा, सन 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण यानी देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और सन 1975 में उन्हें देशी कोतम नामक विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया।
1: हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अशोक वाजपेयी का कहना है कि उदय शंकर का नृत्य कम से कम तीन विश्वासों से प्रेरित नृत्य था। एक, शास्त्रीयता में विश्वास, दो, आधुनिकता में विश्वास और तीसरा, आत्मविश्वास। जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। हम में से वे सभी जो भारतीय नृत्य के इतिहास और उसके आधुनिक काल से परिचित हैं, वो ये भी जानते हैं कि उदय शंकर ने एक तरह की शास्त्रीय आधुनिकता विकसित करने का प्रयास किया था।
2: एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव, सुषमा, ऊर्जा, लालित्य पश्चिम के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे जो तब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था। दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। पश्चिम में उस समय आधुनिकता के अंतर्गत उनकी अपनी परंपरा लगातार प्रश्नांकित की जा रही थी। कई बार उसे हाशिए पर डालकर कई कल्पनाशील और दुस्साहसी सृजनात्मकता का बोलबाला था। कलाओं में आख्यान को अपदस्थ कर अमूर्तन पर आग्रह बढ़ रहा था। उदय शंकर इन वृत्तियों को भी किसी हद तक अपने नृत्य में समाहित और संबोधित करना चाह रहे थे। वे भारतीय नृत्य के पारंपरिक रूपकारों को पुनः संयोजित कर एक नए किस्म के समावेशी और साहसिक शास्त्रीयता विकसित करना चाहते थे।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव सबके सामने रखना चाहते थे जो अब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था, तो दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। श्रोताओं, उस समय जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। उन्हें किसी भी तरह का शासकीय या सार्वजनिक समर्थन भी प्राप्त नहीं था। उस समय उनके वित्तीय साधन अल्प और सीमित थे। ये बात तो है, क्योंकि वो नृत्य के किसी पारंपरिक परिवार से नहीं आते थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का सामूहिक समर्थन भी नहीं मिला था। उनका प्रयत्न सदा एकांतिक रहा।
2: उनका दुस्साहस, उनकी नृत्य परिकल्पना और नृत्य के प्रति उनकी जिजीविषा का ही ये फल था कि इसी काम से उनकी सार्थकता प्रकट होती है। उस समय उनके अपने व्यक्तित्व का बड़ा मोहक आकर्षण था और उनके इसी व्यक्तित्व की सफलता और सार्थकता में बड़ी भूमिका रही। उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के नृत्य से उनके कई तत्वों को जोड़कर अपनी एक विशिष्ट और लगभग अद्वितीय शैली बनाई थी। यदि इन शैलियों की परंपराओं में हमेशा व्यक्तित्व का भी महत्व होता, उसका केंद्र बिंदु भी परंपरा के अंदर ही लेता है, बाहर नहीं।
1: पर उदय शंकर किसी पारंपरिक शैली के नृत्यकार नहीं बने। हालांकि नृत्य की प्रत्येक पारंपरिक शैली से उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिया, फिर चाहे वो कथक हो, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली, कोई भी नृत्य विधा क्यों ना हो, नृत्य की हर शैली का प्रभाव उनके नृत्य में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी किसी एक शैली में समाहित होता नजर नहीं आता। पर यह बात कहना गलत नहीं होगा कि उनकी थोड़ी बहुत परंपरा भी बनी, जिसमें नरेंद्र शर्मा और अमला शंकर, जो उनकी पत्नी भी थी, उन जैसे महत्वपूर्ण नर्तक भी हुए, पर कुल मिलाकर यह शैली बहुत आगे नहीं चल पाई। इसमें वे नृत्य में नवाचार के प्रतीक बने, मान्य और लोकप्रिय भी हुए, और इन्हीं नवाचारों के क्षेत्र में शास्त्रीयता में उदय शंकर से सभी ने प्रेरणा ली है।
2: नवाचार में दुस्साहस क्या और कैसे होता है, ये सब उदय शंकर के नृत्य को देखकर ही हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने अपने नृत्य में जो आत्मविश्वास दिया, अपनी नृत्य बैले शैली में आधुनिक शैली में जो प्रयोग किए, उन्हें भी उदय शंकर के पथ प्रदर्शक अपने नृत्य प्रयोग के विस्तार के रूप में जानते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के बीच लगातार संवाद का जो सिलसिला शुरू किया था, वो भी किसी न किसी रूप में चलता रहा। उदय शंकर को मंच पर नृत्य करते हुए देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। सुप्रसिद्ध रूसी बैले नर्तकी अन्ना पावलोवा ने जब उदय शंकर को पहली बार मंच पर नृत्य करते हुए देखा था, तो बोली थी कि लगा जैसे अजंता में चिन्हित किसी देवता ने मानव शरीर धारण कर लिया है।
1: इसी तरह इटली की मूर्तिकार एलिस बोनर ने ज्यूरिख में उनका नृत्य देखकर कहा कि उदय शंकर के शरीर में चित्र और पत्थर की प्रतिमाओं की थिरकन है। इसी तरह उदय शंकर की उंगलियां, हथेलियां, आंखें और देह की भंगिमाओं का अनूठा मेल देखकर ही उनकी पत्नी अमला ने उदय शंकर पर मोहित होकर उनसे विवाह किया था। वे लिखती हैं, शिव तांडव तथा अग्नि पूजा देखकर मैं पागल हो गई कि कोई इतना सुंदर नृत्य कैसे कर सकता है, ये बात मैंने पहली बार समझी। उदय शंकर के द्वारा बनाई गई फिल्म कल्पना, जो 154 मिनट की थी, दृश्यों की गतिशीलता में इस फिल्म में दृश्य और ध्वनि का अद्भुत मेल दिखाई और सुनाई देता है। इस फिल्म में लगभग 200 वाद्यों का प्रयोग किया गया है। लोगों ने इस फिल्म में प्रयुक्त तबला सुना तो दंग रह गए कि एक ही वाद्य यंत्र से कोई इतनी आवाजें कैसे निकाल सकता है भला।
2: इसी तरह एक बार पेरिस से जब उदय शंकर भारत आए, तो मंदिरों में घूमते हुए वो केरल में कथकली नृत्य को देख के भौचक्के रह गए। उन्होंने लिखा कि बिना जाने बिना देखे मैं अपने नृत्य में ये लाता रहा हूँ। उदय शंकर का नृत्य ऐसा ही था। नृत्य पर प्रयोग की गई भारतीय संस्कृति को समेटे उनकी ये दृष्टि सदा जीवंत रहेगी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक जामा पहनाकर भारतीय संस्कृति को विश्व के हर कोने तक पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया है।
1: जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में राजपूत चित्रकला और मुगल चित्रकला की शैलियों का भी गंभीर अध्ययन किया और भारतीय नृत्य को एक समकालीन रूप देकर विचार न केवल मजबूत हुआ, बल्कि उन्होंने ये कर दिखाया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वे भारतीय आधुनिक नृत्य के शिल्पी थे। यहाँ ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कला की दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमरत्व पा गए हैं। उदय शंकर भी उन्हीं महान हस्तियों में से एक नाम है, जिन्होंने नृत्य को केवल एक प्रदर्शन की कला नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सेतु का रूप दिया। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। 26 सितंबर 1977 को कोलकाता में वे हमारे बीच से सदा सदा के लिए विदा हो गए। कोलकाता में उदय शंकर सेंटर ऑफ डांस आज भी उनकी समूह नृत्य परंपरा को संरक्षित और जीवित रखे हुए है, जिन्होंने कला को सीमाओं से मुक्त कर दिया।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में अभी आपने सुना प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर जी के बारे में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इजाजत दीजिए मनीषा
1: और संदीप शर्मा। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का। तो फिर मिलेंगे कला कल्लोलिनी में एक और कला मनीषी के साथ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पिछली कुछ कड़ियों में आपने स्वामी जी से राजयोग, कर्मयोग, प्रेम योग तथा वेदांत की व्याख्या सुनी। अब हम फिर बेलूड़ मठ में लौट आते हैं और शिष्यों के साथ स्वामी जी के विभिन्न विषयों पर वार्तालाप के कुछ अंश सुनते हैं।
1: श्री सुरेंद्रनाथ सेन महाशय स्वामी जी के अनन्य भक्त थे। वे अक्सर स्वामी जी से प्रश्न पूछा करते थे और स्वामी जी भी बिना थके उनके संदेहों को दूर कर देते थे। अब हम सुरेंद्रनाथ के कुछ संस्मरण सुनेंगे।
2: सोमवार 24 फरवरी 1898 की बात है। दोपहर में मैं फिर स्वामी जी के पास आया। उनके चारों ओर काफी लोग बैठे थे। मधुर भाव पर चर्चा हो रही थी। ईश्वर को पतिरूप में भजना, जैसे कि चैतन्य संप्रदाय में प्रचलित है, मधुर भाव कहलाता है। स्वामी जी की उक्तियों से कभी कभी हंसी के फव्वारे छूट जाते। इसी बीच कोई बोला,
3: चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला में हास्यास्पद ऐसा क्या है? क्या आप सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु महात्मा नहीं थे और उनका जीवन सर्वभूत हिताय नहीं था?
4: कौन हो तुम? तो महाशय जी, मैं क्या फिर तुम्हारी हंसी उड़ाऊं? तुम तो केवल इसमें हंसी ही देखते हो। पर महाशय, तुम्हें यह नहीं दिखता कि चैतन्य महाप्रभु के ज्वलंत आदर्श कामिनी कांचन के त्याग के सांचे में अपने को ढालने के लिए मैंने आजीवन संघर्ष किया है और जन साधारण में वही आदर्श की भावना ठूंस ठूंस कर भर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु तो महान त्यागी थे। उनका कामिनी और इंद्रिय भोग से क्या नाता? पर बाद में उनके अनुयायियों ने स्त्रियों को भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर दिया। चैतन्य के नाम पर उनसे अनैतिक संबंध स्थापित किए और इस तरह उनके महान आदर्श मिट्टी में मिला दिए। प्रेम का जो आदर्श चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में प्रकट किया था, उसमें तो अहम भाव और वासना का लवलेश भी नहीं था। वह तीन्द्रिय प्रेम सर्वसाधारण के लिए कैसे सुलभ हो सकता था? उनके उत्तरकालीन वैष्णव गुरुओं ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन के त्याग और निस्पृहता के आदर्शों की ओर दुर्लक्ष्य कर सर्वसाधारण में उनके प्रेम के आदर्श का ही प्रचार किया। परिणाम यह हुआ कि सर्वसाधारण उस स्वर्गीय प्रेम के तत्व को तो समझ नहीं पाए और उस प्रेम को स्त्री पुरुष के निकृष्ट स्वरूप के प्रेम का रूप प्राप्त हो गया।
5: पर महाराज, कृष्ण के नाम के उपदेशों का अधिकार सर्वसाधारण को क्यों नहीं होना चाहिए?
4: मैं उनके उपदेशों को नहीं, उनके प्रेम के महान आदर्श राधा प्रेम की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें वे रात दिन मस्त रहते थे और अपने को राधा का ही स्वरूप समझते रहते थे।
5: ये सर्वसाधारण के लिए क्यों वर्जित है?
4: इस देश पर उसका क्या परिणाम हुआ ये तो देखो। उस प्रेम भाव का सर्वसाधारण में प्रचार किए जाने से सारा राष्ट्र अशक्त हो गया है, जाति का पौरुष नष्ट हो गया है, लोगों को बस रोना और आंसू बहाना मात्र आता है। यही उनका राष्ट्रीय गुण बन गया है। उनके साहित्य को देखो, जो कि राष्ट्र के विचारों और भावों का दर्पण होता है। इन 400 वर्षों के बंगाली साहित्य का ध्रुवपद यही कराहना और आंसू बहाना ही तो है। इन 400 वर्षों में वीर रस का एक काव्य तक तो नहीं रचा गया।
5: तो उस प्रेम के अधिकारी फिर कौन है?
4: जब तक हृदय में वासना के लिए तिल मात्र भी स्थान है, तब वो प्रेम संभव नहीं। केवल महान त्यागी, निष्प्रह और संन्यस्त व्यक्ति, केवल जो मानवों में अति मानव है, देव स्वरूप है, केवल उन्हें ही उस स्वर्गीय प्रेम का अधिकार है। यदि वो प्रेम का उच्चतम आदर्श सर्वसाधारण में प्रचलित कर दिया जाए, तो शनै शनै वो मनुष्य के हृदय में प्रबल सांसारिक प्रेम में ही विकृत हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का प्रिया भाव से ध्यान करते करते साधारण मनुष्य अधिकांश समय अपनी ही प्रिया के ध्यान में खोया रहेगा और इसका परिणाम क्या होगा यह स्पष्ट है।
5: ठीक है महाराज, नाम कीर्तन अत्यंत सहायक है और उसमें बहुत ही आनंद आता है। धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं और महाप्रभु चैतन्य ने भी जनता को यही उपदेश दिया है। जब मृदंग बजने लगता है तो हृदय आनंद से उछलने लगता है और आदमी नाचने लगता है।
4: ये ठीक है, पर ये मत समझना कि कीर्तन का अर्थ केवल नाचना ही है। कीर्तन का अर्थ है जैसे भी संभव हो ईश्वर का गुणगान। वैष्णवों का भावावेश में आकर नाचने लगना और मस्त हो जाना निस्संदेह अत्यंत मनोहारी है, पर उसमें एक धोखा भी है जिससे अपने को बचाना चाहिए। वो धोखा है उसकी प्रतिक्रिया में। एक ओर तो भावनाएं उच्चतम शिखर तक पहुंच जाती हैं, नैनों से अश्रु प्रवाह शुरू हो जाता है और फिर शरीर मस्ती में झूमने लगता है, पर दूसरी ओर जो ही संकीर्तन समाप्त होता है भावनाओं की इन प्रबल लहरों का उतना ही शीघ्रता से पतन होता है। समुद्र में लहरें जितनी ऊपर उठती हैं उतनी ही नीचे गिरती हैं। उस अवस्था में प्रतिक्रिया का आघात सह लेना सरल नहीं है। जब तक सद्विवेक बुद्धि का विकास नहीं हो जाता, साधारणतया व्यक्ति ऐसी अवस्था में वासना इत्यादि दुर्बलताओं का शिकार बन जाता है। अमेरिका में भी यही बात मेरे देखने में आई। कई लोग गिरजाघर जाते हैं, भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं, तन्मय होकर गाते हैं, धर्मोपदेश सुनते सुनते रोने भी लगते हैं, पर प्रार्थना समाप्त होने पर जो ही गिरजा के बाहर आते हैं इसकी प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है और वे इंद्रिय सुखों के शिकार हो जाते हैं।
3: महाराज, कृपा कर यह बताइए कि चैतन्य महाप्रभु के कौन कौन से विचार योग्य समझकर हम ग्रहण करें जिसमें कोई भूल ना हो।
4: ईश्वर की ज्ञान मिश्रित भक्ति से आराधना करो। भक्ति के साथ विवेक का लोप ना हो। इसके अतिरिक्त महाप्रभु से उनकी सहृदयता, प्राणी मात्र के प्रति उनकी प्रेममय दया, ईश्वर के प्रति उनका उत्कट प्रेम सीखो और उनकी निस्पृहता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ।
2: अब प्रश्नकर्ता ने दोनों हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, अब मैं समझ गया कि आपका कहना ठीक है। वे महाशय तब स्वामी जी को प्रणाम कर चले गए। मैंने ये पहले ही बता दिया है कि स्वामी जी कलकत्ते में आते थे तो इस प्रकार की गोष्ठियां रोज हुआ करती थी। प्रातः काल से रात्रि के 8-9 बजे तक हर घड़ी दर्शकों और श्रोताओं का तांता ही लगा रहता था। इससे उनका भोजन कभी समय पर नहीं हो पाता। इसीलिए कई लोगों ने स्वामी जी को सलाह दी कि वे आगंतुकों से निश्चित समय पर ही भेंट किया करें, किंतु स्वामी जी का हृदय तो प्रेम का सागर था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था और लोगों में धर्म के लिए जिज्ञासा और पिपासा देखकर तो उनमें करुणा उमड़ पड़ती थी। इसीलिए अस्वस्थ रहने पर भी उन्होंने ऐसी कोई सलाह नहीं मानी। उनका तो बस यही एक जवाब होता था,
4: वे अपने घरों से चलकर यहां तक आने में इतना कष्ट उठाते हैं तो क्या मैं सिर्फ अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाने की थोड़ी सी आशंका से ही उनसे दो शब्द भी नहीं बोलूं? ये कैसे संभव है?
2: करीब 4 बजे चर्चा समाप्त हुई, मंडली विसर्जित हो गई थी। केवल कुछ ही सज्जन बैठे रहे जिनसे स्वामी जी इंग्लैंड और अमेरिका आदि के संबंध में बातचीत करते रहे थे। इसी वार्तालाप के मध्य में उन्होंने कहा,
4: इंग्लैंड से लौटते समय मुझे एक अद्भुत स्वप्न हुआ था। जब हमारा जहाज भूमध्य सागर में चल रहा था, स्वप्नावस्था में मैंने देखा कि ऋषि तुल्य कोई वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम आओ हमारा उद्धार करो। मैं थेरा पुत्तम के प्राचीन पंथ का अनुयायी हूं जो प्राचीन भारतीय ऋषियों की शिक्षाओं पर आधारित है। जिस सत्य और जिन आदर्शों का हमने प्रचार किया, ईसाई लोग उनका ईसा मसीह द्वारा प्रचलित किया जाना बताते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए यहां खुदाई की जाए तो कई प्रमाण मिल सकेंगे। मैंने पूछा, कौन सी जगह खुदाई करने पर वे अवशेष और प्रमाण मिलेंगे? उस श्वेत केशी वृद्ध ने तुर्की के पास का एक द्वीप बताकर कहा, वहां। इतने में ही मैं जाग गया और डेक पर जाकर मैंने जहाज के कप्तान से पूछा कि जहाज अभी कहां है। जहाज के कप्तान ने हाथ से दिखाते हुए कहा, देखो वो तुर्किस्तान है और वो क्रीट द्वीप है।
2: क्या यह एक स्वप्न मात्र ही था या उस स्वप्न में कोई सत्य छिपा था, कौन जानता है।
0: स्वामी जी के एक और भक्त थे सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता महाशय। उनकी डायरी से भी हमें कुछ संस्मरण मिले हैं, लीजिए प्रस्तुत है।
2: एक दिन विभिन्न विद्यालयों के मेरे कुछ मित्रों के साथ मैं स्वामी जी का दर्शन करने बेलोड़ मठ गया। हम उनके पास बैठ गए, कई विषयों पर चर्चा हो रही थी। उनसे कोई भी प्रश्न पूछे जाते ही वे उसका संतोषप्रद उत्तर दे देते थे। मेरा एक मित्र धीमी आवाज में स्वामी जी की प्रशंसा कर रहा था।
4: मेरी प्रशंसा मत करो, हमारी इस दुनिया में प्रशंसा और निंदा का कोई मूल्य नहीं है। ये तो केवल झमले के समान मनुष्य को झोंके दिलाती रहती है। मुझे काफी प्रशंसा मिली, कटु आलोचना की बौछार भी मैंने सही है, पर उनकी याद से क्या लाभ। हर एक व्यक्ति निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य करता रहे, जब अंतिम घड़ी आएगी तो निंदा और प्रशंसा मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सबके लिए समान हो जाएगी। हम सब यहां काम करने आए हैं और जब पुकार होगी तब सब कुछ छोड़कर चल देना होगा।
2: पर हम सब इतने अधिक गरीब हैं स्वामी जी।
4: गरीबी के इन विचारों को छोड़ो, किस दृष्टि से तुम गरीब हो। क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि सोने के मुलायम गद्दे नहीं हैं और बुलाते ही हाजिर होने वाले नौकर चाकर नहीं है। उससे क्या होता है तुम नहीं जानते। यदि तुम रात दिन दूसरों की सेवा में अपना खून पसीना एक कर दो तो जीवन में तुम्हारे लिए असंभव और असाध्य कुछ नहीं रहेगा। और फिर तुम देखोगे तुम्हारी आंखों के सामने जीवन की प्रकाशमान सरिता का दूसरा छोर अनंत असीम फैला है।

0: थोड़े शब्द मैं तुम लोगों के सामने बोल रहा हूं, वे उन महात्माओं के सानिध्य से प्राप्त उस प्रबल धारा के किंचित बूंद मात्र हैं। ये मत सोचो कि मुझमें स्वयं में कोई महत्ता है।
1: पर स्वामी जी, हम तो आपको इसी भाव से देखते हैं कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई है। ये शब्द मेरे मुख से निकले ही थे कि उनके वे प्रकाशमान नेत्र अश्रु प्लावित हो गए, उनके हृदय से प्रेम उमड़ा जा रहा था और वे धीरे धीरे कोमल मृदुवाणी में बोले,
0: उन पुण्य चरणों में ही ज्ञानी के ज्ञान की पूर्णता समाई है, उन्हीं पुनीत चरणों में ही भक्तों की भक्ति और प्रेमियों के प्यार की पूर्णता समाई है। मुझे बताओ, उन श्री चरणों के सिवाय भवताप से दग्ध जीव और कहां शरण पाएंगे।
1: कुछ क्षण बाद वे फिर बोले,
0: हाय, मनुष्य कितना मूर्ख है जो अपना जीवन कल में बिता देता है, पर कब तक वे ज्ञानी बने रहेंगे। अनंत योनियों में भ्रमण करने के बाद जीवन चक्र के संध्या काल में मां की गोद में सबको आना ही होगा।

0: स्वामी जी के एक और प्यारे शिष्य थे श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती जी। उन्होंने स्वामी जी शिष्य संवाद नामक ग्रंथ में स्वामी जी के साथ उनके कई वार्तालापों का वर्णन किया है। यद्यपि वार्तालाप मुख्यतः आध्यात्मिक विषयों पर ही केंद्रित था, फिर भी इसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, शिल्पकला और राष्ट्र संबंधी अनेकानेक विषयों पर स्वामी जी के विचार व्यक्त हुए हैं।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान कैसे हो सकता है तथा हम अपनी खोई हुई मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी भलीभांति दर्शाया गया है। ये वार्तालाप सन 1898 ईस्वी में बेलूर मठ का है, जब मठ का निर्माण कार्य चल रहा था।
2: स्वामी जी, आजकल हमारे समाज और देश की इतनी बुरी दशा क्यों हो रही है?
3: तुम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हो।
2: महाराज, क्यों, किस प्रकार?
3: बहुत दिनों से देश के नीची जाति वालों से घृणा करते करते अब तुम लोग जगत में घृणा के पात्र बन गए हो।
2: हमने कब उनसे घृणा की?
3: क्यों, पुरोहितों, द्विजों के दलों ने ही तो वेद, वेदांत आदि सार युक्त शास्त्रों को द्विजों के अतिरिक्त अन्य जाति वालों को कभी पढ़ने नहीं दिया, उन्हें स्पर्श भी नहीं करने दिया, उन्हें केवल नीचे दबा कर रखा है। स्वार्थ की दृष्टि से तुम ही लोग तो चिरकाल से ऐसा करते आ रहे हो। द्विजों ने ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमा कर विधि निषेधों को अपने ही हाथ में रखा था और भारतवर्ष की दूसरी जातियों को निम्न कहकर उनके मन विश्वास में जमा दिया था कि वे वास्तव में निम्न हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते हर समय कोई कहता रहे कि तू निम्न है, तू निम्न है, तो कुछ समय के पश्चात उसकी यही धारणा हो जाती है कि मैं वास्तव में निम्न हूं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हिप्नोटाइज करना। द्विज जातियों का अब धीरे धीरे यह भ्रम मिट रहा है। द्विजों के तंत्र मंत्र में उनका विश्वास कम हो रहा है। प्रबल जल वेग से नदी का किनारा जिस प्रकार टूट जाता है, उसी प्रकार पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार से द्विजों की करतूतें अब लुप्त हो रही हैं। देख तो रहा है ना?
2: जी हां, छुआछूत आदि का बंधन आजकल धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है।
3: होगा नहीं, द्विजों ने धीरे धीरे घोर अनाचार, अत्याचार करना जो प्रारंभ कर दिया था। स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपनी प्रभुता को ही कायम रखने के लिए कितने ही विचित्र ढंग के अवैधिक, अनैतिक, युक्ति विरुद्ध मतों को चलाया था, उनका फल भी हाथों हाथ पा रहे हैं।
2: क्या फल पा रहे हैं महाराज?
3: क्या फल नहीं देख रहा है? तुम लोगों ने जो भारत के अन्य साधारण जाति वालों से घृणा की थी, इसलिए अब तुम लोगों को हजारों वर्षों से दास्तां सहनी पड़ रही है और तुम लोग अब विदेशियों की घृणा और स्वदेश निवासियों की उपेक्षा के पात्र बने हुए हो।
2: परंतु महाराज, अभी तो व्यवस्था आदि ब्राह्मणों के मत से ही चल रही है। गर्भाधान से लेकर सभी कर्मकांड की क्रियाएं जैसे द्विज बता रहे हैं वैसे ही लोग कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
3: कहां चल रहा है शास्त्रोक्त दशविध संस्कार? कहां चल रहा है? मैंने तो सारा भारतवर्ष घूमकर देखा है। सभी स्थानों में श्रुति और स्मृतियों द्वारा निंदित देशाचारों से समाज का शासन चल रहा है। लोक प्रथा, देश प्रथा और स्त्री प्रथा ही सर्वत्र स्मृति शास्त्र बन गए हैं। कौन किसकी बात सुनता है? धन दे सको तो पंडितों का दल जैसा चाहो विधि निषेध लिख देने को तैयार है। कितने पुरोहितों ने वैदिक कल्प, गुह्य और श्रौत सत्रों को पढ़ा है? उस पर देख, बंगाल में रघुनंदन का शासन है और जरा आगे जाकर देखेगा मिताक्षरा का शासन, और दूसरी ओर जाकर देख मनुस्मृति का शासन चल रहा है। तुम लोग समझते हो शायद सर्वत्र एक ही मत प्रचलित है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वेद के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े, सब लोग वेदों की चर्चा करें और इस प्रकार सर्वत्र वेद का शासन फैले।
2: महाराज, क्या अब ऐसा चलना संभव है?
3: वेद के सभी प्राचीन नियम चाहे ना चले, परंतु समय के अनुसार काट छांट कर, नियमों को सजाकर, नए सांचे में ढालकर समाज के सामने रखने से वे क्यों नहीं चलेंगे?
2: महाराज, मेरा विश्वास था कि कम से कम मनु का शासन भारत में सभी लोग अब मानते हैं।
3: कहां मान रहे हैं, तुम अपने ही देश में देखो ना, तंत्र का वामाचार तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट हो गया है। यहां तक कि आधुनिक वैष्णव धर्म में भी, जो मृत बौद्ध धर्म के कंकाल का शेष है, घोर वामाचार प्रविष्ट हो गया है। उस अवैधिक वामाचार के प्रभाव को घटना होगा।
2: महाराज, क्या अब इस कीचड़ को साफ करना संभव है?
3: तू क्या कह रहा है, डरपोक कायर पुरुष कहीं का? असंभव कह कहकर तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नहीं हो सकता?
2: परंतु महाराज, देश में मनु याज्ञवल्क्य आदि ऋषिगणों के फिर से पैदा हुए बिना ऐसा होना संभव नहीं जान पड़ता।
3: अरे, अपवित्रता और निस्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु याज्ञवल्क्य बने थे, या और कुछ? चेष्टा करने पर हम भी तो मनु या याज्ञवल्क्य से बड़े बन सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यों नहीं चलेगा? मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक प्रथाओं को समाज और समय के उपयुक्त बनाकर नए सांचे में गढ़कर नवीन रूप में देश में चलाना होगा। ऐसा नहीं है क्या?
2: जी हाँ।
3: फिर तुम ही लोग तो पूर्व काल में वैदिक ऋषि थे, अब केवल शरीर बदलकर आए हो। मैं दिव्य चक्षु से देख रहा हूं, तुम लोगों में अनंत शक्ति है। उस शक्ति को जगा दे, उठ उठ, लग जा कमर कस। क्या होगा दो दिन का धनमान लेकर? मेरा भाव जानता है, मैं मुक्ति आदि नहीं चाहता हूं। मेरा काम है तुम लोगों में इन्हीं भावों को जगा देना। एक मनुष्य तैयार करने में लाख जन्म भी लेने पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।
2: अच्छा महाराज, उस प्रकार काम में लगकर भी होगा? मृत्यु तो पीछे लगी ही है।
3: धत छोकरा, मरना हो तो एक बार मर जा। कायर पुरुष की तरह रात दिन मृत्यु की चिंता करके भी बार बार क्यों मरता है?
2: अच्छा महाराज, मृत्यु की चिंता यदि ना भी की, फिर भी इस अनित्य संसार में कर्म करके भी क्या लाभ है?
3: अरे, मृत्यु जब अवश्यम भावी है तो कीट पतंगों की तरह मरने के बजाय वीर की तरह मरना अच्छा है। इस अनित्य संसार में दो दिन अधिक जीवित रहकर भी क्या लाभ? जरा जीर्ण होकर थोड़ा क्षीण होते हुए मरने के बजाय दूसरों की तरह वीरों के अल्प कल्याण के लिए लड़कर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नहीं है?
2: जी हाँ, आपको आज मैंने बहुत कष्ट दिया।
3: यथार्थ जिज्ञासु के पास लगातार दो रात बोलते रहने से भी मुझे श्रम का बोध नहीं होता। मैं आहार निद्रा आदि छोड़कर लगातार बोल सकता हूं। चाहूं तो मैं हिमालय की गुफा में समाधि मग्न होकर बैठा रह सकता हूं। और देख तो रहा है, आजकल मां की इच्छा से मुझे खाने की भी कोई चिंता नहीं है, किसी ना किसी प्रकार जुट ही जाता है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करता? इस देश में भी रह रहा हूं, केवल देश की दशा देखकर और परिणाम का चिंतन करके फिर स्थिर नहीं रह सकता। समाधि फमाधि तुच्छ लगती है, तुच्छ ब्रह्म पदम हो जाता है। तुम लोगों के कल्याण की कामना ही मेरे जीवन का व्रत है। जिस दिन वो व्रत पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन छोड़कर सीधा भाग जाऊंगा।
2: मैं मंत्रमुग्ध की तरह स्वामी जी की इन सब बातों को सुनकर स्तंभित हृदय से चुपचाप उनके मुंह की ओर ताकता हुआ कुछ देर बैठा रहा। इसके पश्चात विदा लेने के उद्देश्य से भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज तो फिर आज आज्ञा दीजिए।
3: जाएगा क्यों रे, मठ में ही रह जाना। गृहस्थों में जाने पर मन फिर मलिन हो जाएगा। यहां देख कैसी सुंदर हवा है, गंगा जी का तट, साधुगण साधन भजन कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और कलकत्ते में जाकर फिर वही व्यर्थ की चिंता में लग जाएगा।
2: मैंने आनंदित होकर बोला, अच्छा महाराज तो आज यही रहूंगा।
3: आज ही क्यों रे, सदैव यही नहीं रह सकता? क्या होगा फिर संसार में जाकर?
2: स्वामी जी की यह बात सुनकर सिर झुका कर रह गया। मन में एक ही साथ अनेक चिंताओं का उदय होने के कारण कोई भी

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: तभी से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।